मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्ज पर और एफएम बैंड 103.5 मेगा हर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। आज सोमवार है, शक संवत 1948 की ज्येष्ठ माह की 15वीं तिथि यानी 1 जून सन 2026। सुबह के 5:58 और 40 सेकंड हुए हैं। अब हमारे आज के कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

0: ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। अब आप सुनेंगे हिंदी समाचार आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। इस दौरान सुरक्षा और संपर्क सुविधा सहित भारत और म्यांमार के समग्र संबंधों पर भी चर्चा होगी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने कल नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति से मुलाकात की। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान आरंभ करेंगे। एक महीने का यह अभियान 30 जून तक चलेगा। इस दौरान उर्वरकों के संतुलित और सही उपयोग, मौसम से जुड़ी चुनौतियों को देखते हुए किसानों को समय पर सलाह देने, पंचायत स्तर पर सक्रिय भागीदारी और विभिन्न योजनाओं का लाभ सीधे गांवों तक पहुंचाने पर बल दिया जाएगा। इससे पहले श्री चौहान ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत में इस अभियान में भागीदारी सुनिश्चित करने का आग्रह किया। पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिमंडल का पहला बड़ा विस्तार होगा। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद में 35 नए मंत्रियों को शामिल किया जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह दिन में 11 बजे लोकभवन में होगा। श्री अधिकारी ने ऐतिहासिक सत्ता परिवर्तन के बाद 9 मई को पदभार संभाला था। इस विस्तार के साथ राज्य में मंत्रियों की संख्या बढ़कर 41 हो जाएगी, जो पश्चिम बंगाल विधानसभा के 294 सदस्यों के लिए संवैधानिक रूप से तय 15% की सीमा के अनुरूप है। 10 राज्यों से राज्यसभा की 24 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4 सीटें, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3-3 सीटें, झारखंड में 2 सीटें और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम में 1-1 सीट पर चुनाव होंगे। महाराष्ट्र, तमिलनाडु और ओडिशा में 1-1 सीट के लिए राज्यसभा उपचुनाव की अधिसूचना भी आज जारी की जाएगी। आज से 8 जून तक नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकते हैं। मतदान और मतगणना 18 तारीख को होगी। महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ महायुति ने विधान परिषद चुनाव के लिए 17 सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया है। समझौते के अनुसार भाजपा 11, शिवसेना 4 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP 2 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। विपक्षी महाविकास अघाड़ी ने पहले ही 17 में से 15 सीटों के बंटवारे की घोषणा कर दी है, जिसमें कांग्रेस 8, शिवसेना UBT 4 और शरद पवार के नेतृत्व वाली NCP 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। नामांकन पत्र दाखिल करने का आज अंतिम दिन है। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर मंगोलिया के उलान बटार स्थित गंदतेग चेगलिंग मठ में अरहत सारिपुत्र और अरहत महामोगलन के पवित्र अवशेषों को पूरे विधि विधान के साथ स्थापित किया गया। ये दोनों भगवान बुद्ध के प्रमुख शिष्य थे। इन अवशेषों को भारत से 10 दिन की प्रदर्शनी के लिए लाया गया है, जो 10 जून तक चलेगी। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य और मंगोलिया में भारत के राजदूत अतुल मल्हारी गोत्सुर्वे की उपस्थिति में किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल अक्टूबर में मंगोलिया के राष्ट्रपति उखनागिन खुरेलसुख की भारत यात्रा के दौरान इस प्रदर्शनी की घोषणा की थी। प्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुर का मुंबई स्थित उनके आवास पर निधन हो गया। वे 89 वर्ष की थीं। महाराष्ट्र के राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सुनेत्रा पवार तथा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सुमन कल्याणपुर के निधन पर शोक व्यक्त किया है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर लगातार दूसरी बार IPL खिताब जीत लिया। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 155 रन बनाए। विराट कोहली की नाबाद 75 रन की पारी की बदौलत बेंगलुरु ने 18वें ओवर में ही मैच जीत लिया। विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। और इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से बोल रहे हैं। अब सुनते हैं आज का चिंतन। धैर्य वो शक्तिशाली गुण है जो मनुष्य को निराशा, तनाव, हताशा, असफलता, कुंठा, क्रोध आदि से बचाता है। धैर्य ही व्यक्ति को आत्मविश्लेषण सिखाता है। धैर्य ही हमें प्रगतिशीलता का मार्ग दिखाता है। जब हम जीवन के सुख दुख में धैर्य रूपी आभूषण को धारण करते हैं तो जीवन सफल और खुशहाल होता है। अभी आप सुन रहे थे चिंतन। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम वंदना।

हर हर महादेव। सच्चे मन से शंभू का करते हैं हम जाप, शिव की महिमा का सदा करते जो गुणगान, उनको मिलता सदा ही इस जग में सम्मान। गाते मगन हों शिव भजन देकर ढोल पे थाप, सच्चे मन से शंभू का करते हैं हम जाप, भांग धतूरा बेलपत्र भक्त चढ़ावत आन, धूप दीप चंदन अगर मेवा अरु मिष्ठान, भोले शंकर सब कहें मन के भोले आप, सच्चे मन से शंभू का करते हैं हम जाप।

इस धरा के कल्याणकर्ता स्वयं ईश्वर हैं, वही इस जग का पालन पोषण करते हैं। प्रभु की इच्छा से ही यहाँ सब कुछ होता है, वही देने वाले हैं, वही दाता हैं। ऐसे परोपकारी, दयावान और महाकल्याणकारी ईश्वर की हम आराधना करते हैं।

हे ईश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमारे मन में सदा आपका वास हो, जिह्वा पर बस ईश्वर का नाम हो, कर्ण सिर्फ प्रभु भजन को सुनना चाहें, नेत्र सिर्फ अच्छाई और सद्कर्म के दर्शन करें। हे प्रभु, हम आपके उपकार के अभिलाषी हैं।

अभी आप सुन रही थी ईश्वर स्तुति का कार्यक्रम वंदना। ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। अब प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस गान।

प्रयाग में भरद्वाज मुनि के आश्रम में रात्रि विश्राम के बाद श्री राम, सीता तथा लक्ष्मण ने प्रातःकाल स्नानादि करके मुनि चरणों में सिर नवाया। फिर सखा निषादराज के साथ प्रस्थान को तैयार होकर उन्होंने मुनिवर से मार्गदर्शन की याचना की। भरद्वाज जी ने मन ही मन हंसकर कहा, आपके लिए तो सभी मार्ग समान रूप से सुगम हैं। उन्होंने अपने चार शिष्यों को बुलाकर मार्ग दिखलाने के लिए साथ जाने का आदेश दिया। राह में मिलने वाले गांवों के नर नारी श्री राम, सीता और लक्ष्मण के रूप दर्शन कर अपना जीवन सफल कर रहे हैं। यमुना तीर पहुंचकर श्री राम ने आग्रह करके मुनि शिष्यों को वापस विदा किया और आप निषादराज के साथ वन की ओर प्रस्थान किया। एक स्थान पर छोटी आयु का एक तपस्वी न जाने किस दिशा से आकर श्री राम के चरणों में आ गिरा। अपने आराध्य को पहचानकर उस तेजस्वी का शरीर पुलक से भर गया था। उसकी आंखों में प्रेमाश्रु उमड़ आए थे। श्री राम ने उठाकर उसे हृदय से लगा लिया।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान। ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि की बातें।
1: किसान बहनों भाइयों, राम राम। कृषि के बात हम आज जिक्र करेंगे अनाज का सुरक्षित भंडारण, इसके बारे में। किसान भाइयों, कुछ भाइयों ने तो भंडारण कर लिया होगा, लेकिन कुछ भाई की करे हैं कि अनाज ने थोड़ा सा डाल ले हैं, उसके बाद जब दूसरे काम ने बट जाए हैं, उसके बाद फिर भंडारण की सोचे हैं। तो कुछ बात है ध्यान करने की कि भाई ये ध्यान करी जा तो जो भंडारण मारा हुआ है वो बढ़िया तरीके से उसके एक तो नमी को नियंत्रित करना है। धूप में सुखा लें, 10-12% तक नमी आम कम कर सका हां। 3-4 दिन अच्छा अपने अनाज ने सुखा लें, फिर नमी की पहचान की इस तरह होगी कि ठीक ठाक होगी कि नहीं। दांतों तले दाने ने काट के देख लें, जब कटक दही आवाज आओगी तो समझ

0: वो साफ सुथरा हो गया है। एक भंडारण का स्थान और फिर जिस टंकी में या फिर कोई ड्राम में वो डालना है वो भी साफ सुथरा कर ले, उसका भी 4-5 दिन तक कम से कम धूप लगानी बहुत जरूरी है। दीवार और जमीन ते दूरी भी बनाई रखनी है, जो बोरे हमने धरने है ना उसमें कदे कदे हम देखा हाँ कि सीधे जमीन पर धर दिया हमने, जमीन ते 1-2 फुट ऊपर लकड़ी का कोई तख्ता रख कर नीचे ईंट लगा के ऊंचाई पर ठा के दूरी दीवार तक कम 2 बिलां दूर हो जा तो बहुत बढ़िया बात। इतना के हमने फासला देख लेना है कि इतने फासले पे हमें वो बोरे रखा। कोई गोदाम हमने बना रखा है, भंडार कक्ष हमने बना रखा है, उसमें कोई छेद ना हो, कोई दरार ना हो, कोई चूहे ना हो, उसके अंदर कोई दूसरे जीव ना हो, इस तरह का हम पहले देख ले। हवा का आवागमन हमारा जो भंडार कक्ष है उसमें थोड़ा बहुत होना चाहिए, कती बिना हवा का भी भंडार कक्ष ठीक नहीं है। कीट और घुणते बचाने खातिर नीम की पत्ती हम डाल सका, सूखे नीम की पत्ती अनाज में मिला दें इससे कीड़े नहीं लगते, या फिर कोई टंकी है कोई बोरी है उसकी तली में भी आम नीम की पत्ती बिछा सका हाँ। राख का प्रयोग भी बताया गया है, साफ और सूखी राख ने जब अनाज में मिला दें हाँ तो 10-20% तक बहुत ज्यादा फर्क रहे, कीड़े नष्ट हो जाए हैं। कड़वा कोई तेल हो जो करे दाल या फिर कोई बीज है उसके भंडारण में आम कड़वे तेल जो करे सरसम का तेल भी हम कह सका हाँ, इसकी हल्की सी परत लगा दें तो फिर कीड़े नहीं लगेंगे। और रासायनिक विधि तो कुछ और हैं, वह बोरियां का भी उपचार कर सका हाँ, जिन बोरियां में हम गालना हाँ उसने कीटनाशक जो कर मेलाथियन दवाई है उसके 1% के घोल में काट सका हाँ, 10-15 मिनट डुबो के और फिर धूप में सुखा दें, जब उसमें बदबू हो जाएगी तो उसमें कोई कीड़े बीमारी कोई दिक्कत और नहीं आओगी। व्यवसायिक रूप से जमाले भंडारण करना चाहो हैं तो विशेषज्ञ की देख रेख में हुए एल्यूमिनियम फास्ट फाइट की हम गोली भी ले सका हाँ, वो भी हम डाल सका हाँ। लंबे समय तक जब मान लें हमने भंडारण करना है तो कई ये तरीके ही हमने अपनाने पड़ेंगे, गेहूँ है चावल है दाल है इनका जब हम भंडारण करा तो इस तरीके का हम अपना सका हाँ। और कुछ पारंपरिक तरीक़ों का जो जिक्र चला है वो अपना कर भी हमें जरूर अपना जो अनाज है उसने बचा सका हाँ। एक तो इसमें कड़वे तेल की बात आई थी, सरसों का तेल है भाइयों दूर पा जाए हरना तो बाजार में आ जाएगा कोई सी बड़ी बात नहीं है, उसकी एक तैसी चढ़ा के और वो भी हमें जब्ता कर सका हाँ। राख का प्रयोग तो जमा कति आसान है, कति फरी का काम है, राख मिला दें उसमें बहुत सारे कीड़े हैं जिनते फर्क रह जाएगा। नीम की पत्ती है ये कोई खरीद के लाने की जरूरत नहीं है, मोल नहीं आंदी है, नीम भाइयों तो रसाएं नीम की पत्ती उसमें बिछा कर नीचे एक तय बिछा दें। और जब ज्यादा ऊंचाई तक भंडारण करना है मान ले ठेका है बड़ा है तो बीच में भी 1-2 तय आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, और अनाज के साथ मिलकर भी वो पत्ती खाई जाएंगी तो भी नुकसान नहीं है। एक गोदाम का मरम्मत की बात आई थी, जो हमारा भंडार कक्ष है जीता में भंडारण करेंगे तो उस जगह पर कोई छेद ना हो कोई दरार ना हो चूहे उसके अंदर ना आ सके, इस चीज का हमने ध्यान करना है। और नमी उस भंडार कक्ष में नहीं होनी चाहिए, दीवार सूखी होनी चाहिए और दीवार से थोड़ी सी दूरी भी बोरियां की हमने बनानी है वो भी रखें, और साफ सुथरी जो टंकी है कोई बर्तन है जिसमें हमने करना है तो वो भी साफ सुथरा हो। और बोरिया ने मेलाथियन के घोल में काट के 1% के घोल में और फिर 1-2 घंटा 4 घंटे सुखा के उसके बाद भंडारण हम कर सका हाँ। धूप ते भी हम अनाज का सुखाने का काम कर सका हाँ, 3-4 दिन अपना अच्छा डाल सुखा के फिर भंडारण करें तो फिर कोई दिक्कत नहीं आओगी। तो ये कुछ बात थी ध्यान करने की, सुरक्षित भंडारण जब होगा जब इस तरह का कोई आम तरीका अपना लेंगे।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि की बातें, मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से बोल रहे हैं। अब आप सुनेंगे संस्कृत समाचार, उसके बाद आप सुनेंगे हिंदी समाचार और फिर आप सुनेंगे अंग्रेजी समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा।
2: EM आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य नवदिल्ल्यां म्यांमार देशस्य राष्ट्रपतिना यू मिन आंग लाइंग इत्यनेन सह चर्चां करिष्यति। उभयोः देशयोः मध्ये ऐतिहासिकानां सभ्यतानां च सम्बन्धान् इतोपि सुदृढीकरणाय वार्तालापः भविष्यति। वार्तालापावधौ म्यान्मार भारतयोः मध्ये सुरक्षा सम्पर्कौ च समेत्य सम्पूर्णेषु विभिन्नेषु विषयेषु चर्चाः भविष्यन्ति। राष्ट्रीय सुरक्षा परामर्शदः अजीत डोभालः गतरात्रौ दिल्ल्याम् अतिथिगणमान्यैः सह मेलनं विहितवान्। अवधेयं यत् म्यान्मार देशस्य राष्ट्रपतिः शनिवासरे भारतस्य पञ्चदिवसीय यात्रायां बिहारस्य गयानगरं सम्प्राप्तवान् आसीत्। म्यान्मार देशस्य राष्ट्रपतेः भारतस्य आधिकारिक यात्रायाः कारणात् उभयोः देशयोः मध्ये बहुपक्षीय सम्बन्धः इतोपि सुदृढः भविष्यति इत्यपेक्षास्ति। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना प्रकृतिसंरक्षणे स्थानीय समाह्वानानां निराकरणे अन्य सामाजिक कार्येषु च तेषां प्रेरक उपक्रमाणाम् उपलब्धीनां च विषये अनेकेषां नागरिकाणाम् उत्कृष्ट योगदानाय प्रशंसा कृता। आकाशवाण्याः स्वकीये मासिक कार्यक्रमे मन की बात इत्यनेन कार्यक्रमेण राष्ट्रम् अभिसंबोधयन् श्रीमोदी झारखण्ड राज्यस्य रांचीनगरे आयोजिते राष्ट्रिय वरिष्ठ एथलेटिक्स फेडरेशन स्पर्धायां उदयोन्मुख क्रीडकानां उत्कृष्ट प्रदर्शनस्य प्रशंसाम् अकरोत्। प्रवर्तमानायाः उष्णतरङ्गस्य स्थितिं प्रति चिन्तां प्रकटयन् प्रधानमन्त्रिणा जनान् अधिकृतान् उपदेशान् अनुसृत्य सुरक्षितं स्थातुं पूर्वसूचनानुसारं कार्यं च कर्तुम् उद्बुद्धवान्।
3: इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है। तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं।
2: पश्चिम बंगाल राज्यस्य मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी अद्य स्वमंत्रिमंडलस्य विस्तारं करिष्यति। पञ्चत्रिंशत् नूतनाः मन्त्रिणः मन्त्रिमंडले समाविष्टाः भविष्यन्ति। शपथ ग्रहणं प्रातः एकादशवादने लोकभवने भविष्यति। नूतनेन समावेशेन शुभेंदु प्रशासने महत्वपूर्णरूपेण संवर्धनं भविष्यति, येन मई मासस्य नवमे दिनांके पञ्चमन्त्रिभिः सह कार्यभारं स्वीकृतमासीत्। अनेन विस्तारेण राज्यमन्त्रिमण्डलस्य मन्त्रिणां कुलसंख्या एकचत्वारिंशत् यावत् वर्धिता भविष्यति। निर्वाचनायोगेन दश राज्यानां चतुर्विंशतिः राज्यसभासदस्यानां द्विवार्षिक निर्वाचनस्य कार्यक्रमस्य घोषणा अद्य क्रियते। भूतपूर्वः प्रधानमन्त्री एचडी देवगौड़ा, केन्द्रीयमन्त्रिणौ जॉर्ज कुरियन तथा रवनीत सिंहश्च तेषु सदस्येषु अन्तर्भवन्ति। आन्ध्रप्रदेशे, गुजराते तथा कर्णाटके प्रत्येकस्मिन् राज्ये चत्वारि चत्वारि आसनानि सन्ति। राजस्थाने तथा मध्यप्रदेशे प्रत्येकस्मिन् राज्ये त्रीणि त्रीणि आसनानि सन्ति। झारखण्डे द्वे आसने स्थः, मणिपुरे, मेघालये, अरुणाचलप्रदेशे च, मिजोरमे च प्रत्येकस्मिन् राज्ये एकैकम् आसनं रिक्तमस्ति। आयोगस्यानुसारं जूनमासस्य अष्टादशदिनाङ्के मतदानं भविष्यति। मतगणना अपि तस्मिन्नेव दिने भविष्यति। महाराष्ट्रस्य, तमिलनाडुराज्यस्य, ओडिशाराज्यस्य च प्रत्येकस्य एकस्य आसनस्य कृते राज्यसभायाः उपनिर्वाचनस्य कार्यक्रमस्य अपि आयोगेन घोषणा क्रियते। एतद् निर्वाचनमपि अग्रिममासस्य अष्टादशदिनाङ्के भविष्यति। एकोननवतिवर्षीया प्रख्यातगायिकायाः सुमनकल्याणपुरस्य मुम्बईनगरे स्वनिवासस्थाने मृत्युः अभवत्। 50-29 शततमाद् वर्षात् 70-29 शततमं वर्षं यावत् चलचित्रसङ्गीतस्य स्वर्णयुगे नैकासु भारतीयभाषासु कृतकार्याणां कृते एषा वयोवृद्धगायिका प्रसिद्धा आसीत्। अपि च आईपीएल क्रिकेट क्रीडायां गतरात्रौ अहमदाबादस्य नरेन्द्र मोदी क्रीडांगणे अन्तिमस्पर्धायां गुजरात टाइटन्स दलं 5 स्तोभैः पराजित्य गतविजेतृदलेन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु इत्यनेन अस्य वर्षस्य श्रृंखला अपि विजिता। इति वार्ताः।
4: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ओ मिन ऑनलाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। इस दौरान सुरक्षा, संपर्क सुविधा सहित भारत और म्यांमार के समग्र संबंधों पर चर्चा होगी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कल नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति से मुलाकात की। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान आरंभ करेंगे। एक महीने का ये अभियान 30 जून तक चलेगा। इस दौरान उर्वरकों के संतुलित और सही उपयोग, मौसम से जुड़ी चुनौतियों को देखते हुए किसानों को समय पर सलाह देने, पंचायत स्तर पर सक्रिय भागीदारी और विभिन्न योजनाओं का लाभ सीधे गांवों तक पहुंचाने पर बल दिया जाएगा। इससे पहले श्री चौहान ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत में इस अभियान में भागीदारी सुनिश्चित करने का आग्रह किया। पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद में 35 नए मंत्रियों को शामिल किया जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह दिन में 11 बजे लोकभवन में होगा। श्री अधिकारी ने ऐतिहासिक सत्ता परिवर्तन के बाद 9 मई को पदभार संभाला था। इस विस्तार के साथ राज्य में मंत्रियों की संख्या बढ़कर 41 हो जाएगी, जो पश्चिम बंगाल विधानसभा के 294 सदस्यों के लिए संवैधानिक रूप से तय 15% की सीमा के अनुरूप है। 10 राज्यों से राज्यसभा की 24 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4 सीटें, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3-3 सीटें, झारखंड में 2 सीटें और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम में 1-1 सीट पर चुनाव होंगे। महाराष्ट्र, तमिलनाडु और उड़ीसा में 1-1 सीट के लिए राज्यसभा उपचुनाव की अधिसूचना भी आज जारी की जाएगी। आज से 8 जून तक नामांकन दाखिल किए जा सकते हैं। मतदान 18 जून को होगा, उसी दिन मतगणना भी होगी। प्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुर का मुंबई स्थित उनके आवास पर निधन हो गया। वे 89 वर्ष की थी। सुमन 1950 से 1970 के दशक के फिल्मी संगीत में हिंदी, मराठी और कई अन्य भारतीय भाषाओं में मधुर गायकी के लिए लोकप्रिय रहीं। महाराष्ट्र के राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सुनीत्रा पवार तथा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सुमन कल्याणपुर के निधन पर शोक व्यक्त किया है। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर मंगोलिया के उलान बटार स्थित गंधन तेगचिनलिंग मठ में अहर्त सारिपुत्र और अहर्त महामोगलन के पवित्र अवशेषों को पूरे विधि विधान के साथ स्थापित किया गया। ये दोनों भगवान बुद्ध के प्रमुख शिष्य थे। इन अवशेषों को भारत से 10 दिन की प्रदर्शनी के लिए लाया गया है, जो 10 जून तक चलेगी। प्रदर्शनी का उद्घाटन असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य और मंगोलिया में भारत के राजदूत अतुल मल्हारी गोदसुर्वे की उपस्थिति में किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले वर्ष अक्टूबर में मंगोलिया के राष्ट्रपति उखनागिन खुरेलसुक की भारत यात्रा के दौरान इस प्रदर्शनी की घोषणा की थी। हांगकांग में एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत के मोगली वेंकटरामन ने पुरुषों की 800 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। ये इस वर्ष की प्रतियोगिता में भारत का पहला स्वर्ण पदक है। रिले स्पर्धाओं में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। भूमिका, ताहुरा, सेहनूर और नीरू की महिला टीम ने 4x400 मीटर में स्वर्ण पदक जीता। भारतीय टीम ने 3:38.07 के समय के साथ चैंपियनशिप का रिकॉर्ड भी बनाया। काजल, भावना, आरती और निपम ने 4x100 मीटर में 45.05 के समय के साथ रजत पदक जीता। पीयूष राज, सैयद सबीर, रंजीत कुमार और मोहम्मद अशफाक की पुरुष टीम ने 4x400 मीटर में कांस्य पदक हासिल किया। ये चैंपियनशिप विश्व अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाइंग इवेंट है। विश्व चैंपियनशिप 5-9 अगस्त तक अमरीका के ओरेगन में यूजीन में आयोजित होगी। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर लगातार दूसरा आईपीएल खिताब जीता। अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 155 रन बनाए। विराट कोहली ने नाबाद 75 रन की पारी के बदौलत बेंगलुरु ने 18वें ओवर में ही मैच जीत लिया। विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
5: This is Akashvani, the news read by Abhishek Mukhopadhyay. Prime Minister Narendra Modi will hold discussions with Myanmar President U Min Aung Hlaing in New Delhi today. The talks will be held on further strengthening the historical and civilizational ties between the two countries. The entire gamut of relations between Myanmar and India, including security and connectivity, will come up for discussions during the talks. National Security Advisor Ajit Doval called on the visiting dignitary in New Delhi last evening.

आज शाम 7:10 पर आप सुनेंगे सरकार के 12 वर्ष विषय पर समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रसारित एक विशेष श्रृंखला में गरीब कल्याण पर बातचीत, और रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे पब्लिक स्पीच। इन दोनों कार्यक्रमों का अनुप्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया जाएगा। शाम 6:30 पर आप सुनेंगे साप्ताहिक समीक्षा, जिसका अनुप्रसारण आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से किया जाएगा।

दैनिक आयोजन युवा संसार का समय रहेगा शाम 5:30 पर। विषय रहेंगे वैश्विक अभिभावक दिवस और विश्व दुग्ध दिवस। साथ ही आप सुनेंगे कार्यक्रम हेलो जीनियस। दोपहर 1:10 पर आनंद लीजिएगा चित्रपट संगीत का। शाम 7:45 पर हम आपके लिए पेश करेंगे फिल्म संगीत। रात्रि 8:25 पर सुनिएगा सुगम संगीत। रात्रि 9:15 पर समय रहेगा कार्यक्रम एक फिल्म से का। कार्यक्रम कृषि जगत सुनिएगा शाम 6:20 पर। विषय रहेगा विश्व दूध दिवस। साथ ही आप सुनेंगे बातचीत इस माह के कृषि कार्य। कार्यक्रम ग्रामीण संसार का समय रहेगा शाम 7:00। आज का विषय रहेगा वृक्षों का महत्व। आज आप सुनेंगे फोन इन कार्यक्रम चौपाल। कार्यक्रम खेत खलिहान का समय रहेगा दोपहर 2:30। आज का विषय रहेगा जैविक खादों का महत्व। दोपहर 12:30 पर आप सुनेंगे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम रूपरेखा, मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। अब प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत। कलाकार हैं सलीम कुमार, राग वैरागी, वादन सितार।

अभी आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत, कलाकार थे सलीम कुमार, राग वैरागी, आप सुन रहे थे सितार वादन। मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्स पर हम आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सुबह सवेरे।

अभिभावक बन मानव तुम सृष्टि संचालन करते हो, पालन पोषण करके जीवन की सबसे कठिन परीक्षा देते हो। शैशव के कोरे मन पर सुनहरे सपनों के पंख लगा दो, संस्कारों की ज्योति जगाकर पथ रोशन कर दो। विद्या बुद्धि का स्वाभिमान सिखा, कुछ नया करने दो। सब अलग अलग हैं, स्वेच्छा परिधि में मत बांधो। कदम कदम चलना सिखाकर आत्मनिर्भर बनने दो। स्वाभाविकता की हवा में उनको पूरा विकसित होने दो। जीवन पथ पर जो हार मिले तो उसका दुख सहने दो। मिली सफलता तो भी शांत चित से अवधारण करने दो। सुगंध बन फैल जाने दो नीले नभ के विस्तार में। बच्चों की क्षमता को आरोहण करने दो खुले गगन में। अभिभावक बन मानव तुम सृष्टि संचालन करते हो।

साथियों, आज है 1 जून। आप जानते हैं 2012 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने पहली बार वैश्विक माता पिता दिवस की घोषणा की थी। तब से आज तक ये दिवस विश्व भर में माता पिताओं को सम्मानित करने के लिए प्रतिवर्ष 1 जून को मनाया जाता है। साथियों, माता पिता बनना एक सर्वव्यापी अनुभव है, लेकिन ये आसान नहीं है। सबसे पहले बच्चे के जन्म से पहले ही कई चुनौतियां सामने आ जाती हैं। गर्भावस्था से उत्पन्न होने वाली कई जटिलताओं के कारण एक स्वस्थ माता पिता का होना भी कृतज्ञता का विषय है। साथियों, माता पिता बच्चे के जीवन में प्रकाश स्तंभ होते हैं। वे बच्चों की नींव रखते हैं और उन्हें जीवन भर आवश्यक कौशलों से परिपूर्ण बनाते हैं। माता पिता अपने बच्चों की रक्षा करते हैं और उनके विकास को सुनिश्चित करने के लिए अनगिनत निस्वार्थ अनकही बलिदान देते हैं। वैश्विक माता पिता दिवस पर बच्चे अपने माता पिता के प्रति उनके द्वारा किए गए सभी कार्यों के लिए आभार व्यक्त करते हैं। वास्तव में माता पिता के साथ हमारा रिश्ता सबसे महत्वपूर्ण और सच्चा बंधन होता है, और इस दिन हम उनके समर्पण का सम्मान करते हैं और उसे संजोते हैं। हम में से जो लोग माता पिता के साथ मित्रतापूर्ण संबंध रखते हैं और अधिकार या सख्त निगरानी के बजाय विश्वास और सम्मान पर आधारित स्वस्थ रिश्ता बनाए रखने में सक्षम हैं, वे भाग्यशाली हैं। अच्छे माता पिता का होना भी वास्तव में किसी आशीर्वाद से कम नहीं है।

0: साथियों, माता पिता अपने बच्चों के प्रति प्राथमिक जिम्मेदारी और उनके विकास में अपनी भूमिका के महत्व को समझते हैं और बच्चे का स्वस्थ वातावरण और उचित नियमों के साथ पालन पोषण करते हैं। इसके लिए माता पिता सबसे अच्छे आदर्श होते हैं। अध्ययनों से पता चलता है कि बच्चों को होने वाले आघात या भावनात्मक घाव उनके विकास और जीवन के प्रति दृष्टिकोण को काफ़ी हद तक बाधित करते हैं और संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में एक बड़ी बाधा है। देखने में ही भले ही बात मामूली लगे, लेकिन पालन पोषण का आर्थिक समृद्धि और सामाजिक विकास पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है। साथियों, 17 सितंबर 2012 को संयुक्त राष्ट्र ने 1 जून को वैश्विक अभिभावक दिवस के रूप में घोषित किया। ये दिवस इस उद्देश्य के साथ मनाया जाता है कि माता पिता को होने वाले महत्व और बच्चों के सकारात्मक विकास के लिए आवश्यक सुरक्षा और साधन प्रदान करने में उनकी भूमिका के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। आखिरकार माता पिता ही बच्चे के पहले शिक्षक और मानवीय संपर्क सूत्र होते हैं। समुदाय के नेता, माता पिता, बच्चे, शिक्षक और पारिवारिक संगठन इस दिवस को मनाने और प्रभावी पालन पोषण को बढ़ावा देने के लिए एकजुट होते हैं। साथियों, माता पिता के लिए और एकल परिवारों में स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए व्यापक रूप से अभियान और शैक्षिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। संबंधित संगठन भी इस दिन का उपयोग 2 माता पिता वाले एकल परिवारों के मॉडल को बढ़ावा देने के लिए करते हैं।
1: अच्छा गुनगुन, मुझे अपने पापा के बारे में कुछ बताओ।

वैश्विक अभिभावक दिवस पर सभी श्रोताओं को अपार शुभकामनाएं। सभी अभिभावक और बच्चे एक दूसरे को अच्छे से समझें, यही इस दिन का अर्थपूर्ण करता है।

साथियों, आज विश्व दुग्ध दिवस भी है जो 1 जून को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य वैश्विक खाद्य पदार्थ के रूप में दूध के महत्व को पहचानना, पोषण, आजीविका, कृषि और सतत विकास में दुग्ध उत्पादन क्षेत्र के योगदान को उजागर करना है। हर साल 1 जून को मनाया जाने वाला विश्व दुग्ध दिवस दूध के पोषण मूल्य के बारे में जागरूकता फैलाता है और विश्व भर में खाद्य प्रणालियों को सहयोग देने वाले दुग्ध उत्पादकों के प्रयासों को सम्मानित करता है। साथियों, विश्व दुग्ध दिवस 2026 का विषय महिला किसानों का सम्मान है। ये विषय दुग्ध उत्पादन में महिलाओं द्वारा निभाई जाने वाली महत्वपूर्ण भूमिका पर केंद्रित है और कृषि, ग्रामीण आजीविका और खाद्य सुरक्षा में महिलाओं के योगदान को मान्यता देने के वैश्विक प्रयास के अनुरूप है। साथियों, ये अभियान विश्व स्तर पर डेयरी क्षेत्र में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को मान्यता देता है। महिलाएं डेयरी फार्मिंग, पशुपालन, दूध उत्पादन, ग्रामीण उद्यमशीलता और पारिवारिक पोषण में गहराई से शामिल हैं। ये अभियान सतत कृषि, आर्थिक विकास और खाद्य प्रणालियों में उनके योगदान को उजागर करता है।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुबह सवेरे, मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। अब आप सुनेंगे हिंदी समाचार, उसके तुरंत बाद आप सुनेंगे अंग्रेजी समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा।
1: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ओ मिन आउलाइन से वार्ता करेंगे। 10 राज्यों से राज्यसभा की 24 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। केंद्र उर्वरकों के संतुलित और सही उपयोग को बढ़ावा देने के लिए आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान आरंभ करेगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज 35 नए मंत्रियों को शामिल कर मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। प्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुर का मुंबई में निधन। और क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटन्स को 5 विकेट से हराकर आईपीएल खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ओ मिन आउलाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। इस दौरान सुरक्षा, संपर्क सुविधा सहित भारत और म्यांमार के समग्र संबंधों पर चर्चा होगी।
5: म्यांमार के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। सांस्कृतिक परिसर में आयोजित लाइट एंड द लोटस रेलिक्स ऑफ द अवेकेंड वन प्रदर्शनी का भी दौरा करेंगे। इस प्रदर्शनी में भगवान बुद्ध से संबंधित पिप्रहवा पवित्र अवशेषों तथा उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण प्राचीन धरोहरों का प्रदर्शन किया जा रहा है। म्यांमार भारत की नेबरहुड फर्स्ट, एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों के संगम पर स्थित है। म्यांमार के राष्ट्रपति की भारत की यह आधिकारिक यात्रा से दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंधों को और गहराई मिलेगी तथा दोनों देशों के बीच साझेदारी के नए अवसर खुलने की आशा है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
4: 10 राज्यों से राज्यसभा की 24 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4 सीटें, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3-3 सीटें, झारखंड में 2 सीटें और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम में 1-1 सीट पर चुनाव होंगे। महाराष्ट्र, तमिलनाडु और ओडिशा में 1-1 सीट के लिए राज्यसभा उपचुनाव की अधिसूचना भी आज जारी की जाएगी। 8 जून तक नामांकन दाखिल किए जा सकते हैं। मतदान 18 जून को होगा, उसी दिन मतगणना भी होगी। महाराष्ट्र में सत्ताधारी महायुति गठबंधन ने आगामी विधान परिषद चुनावों के लिए 17 सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया है। समझौते के अनुसार भाजपा 11 सीट पर, शिवसेना 4 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी 2 सीट पर चुनाव लड़ेगी। विपक्षी महाविकास आघाड़ी ने पहले ही 17 में से 15 सीटों के लिए अपने बंटवारे की घोषणा कर दी है, जिसमें कांग्रेस 8 सीट पर, शिवसेना यूबीटी 4 और शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी 3 सीट पर चुनाव लड़ेगी। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान आरंभ करेंगे। उर्वरकों के संतुलित और सही उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 1 महीने का ये अभियान 30 जून तक चलेगा।
6: यह अभियान देश की कृषि भूमि को बचाने और किसानों को वैज्ञानिक खेती के लिए की दिशा में एक बड़ी पहल है। इस अभियान में कृषि विश्वविद्यालय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि विज्ञान केंद्र और जन प्रतिनिधि सभी मिलकर भाग लेंगे। अभियान के तहत किसानों को मिट्टी परीक्षण, सोयल हेल्थ कार्ड, प्राकृतिक खेती, संतुलित उर्वरक उपयोग और जल संरक्षण जैसे विषयों पर जानकारी दी जाएगी। साथ ही नकली खाद, बीज और कीटनाशकों की पहचान करने के बारे में भी किसानों को सजग किया जाएगा। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों से प्रेरित भारत में पिछले 12 वर्ष में अभूतपूर्व बदलाव आया है। इस दौरान मोदी सरकार ने गरीबों किसानों महिलाओं और युवाओं के कल्याण तथा सशक्तिकरण के लिए कई प्रमुख पहल की। आकाशवाणी समाचार विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष प्रस्तुति लेकर आया है। आज बात किसानों के कल्याण की दिशा में सरकार के कदमों की।
7: नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा पिछले 12 वर्षों में किसानों के कल्याण और उनकी आय बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। इनमें सबसे प्रमुख योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, जो देश की सबसे बड़ी किसान कल्याण योजनाओं में से एक है। इस योजना के तहत किसानों को हर साल 6,000 रूपए सीधे उनके बैंक खातों में दिए जाते हैं और अब तक लगभग 9,50,00,000 किसान परिवारों के खातों में 4,28,000 करोड़ रूपए से अधिक की राशि भेजी जा चुकी है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या के रहने वाले किसान दिनेश कुमार जायसवाल ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि किसान सम्मान निधि योजना किसानों के लिए बहुत लाभकारी है।
8: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाई जा रही किसान सम्मान निधि योजना का मुझे भरपूर लाभ मिल रहा है। इससे मुझे काफी सहायता मिलती है। हम समय पर अपने खाद और बीज की खरीदारी कर लेते हैं।
7: वहीं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से सिंचाई व्यवस्था मजबूत हुई है और मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के माध्यम से किसानों को मिट्टी की पोषक तत्वों की जानकारी दी जा रही है। साल 2014-15 से लेकर अब तक 26 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं। वहीं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत करीब 23 करोड़ किसानों को 1,92,000 करोड़ रुपए के फसल बीमा दावों का लाभ मिला है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को 60 वर्ष की आयु के बाद हर महीने 3,000 रुपए की पेंशन सुनिश्चित की जा रही है। उत्तर प्रदेश के एक लाभार्थी गौरव त्यागी ने इस योजना की सराहना करते हुए कहा कि यह किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है।
9: मानधन योजना चल रही है, बहुत ही लाभदायक है। प्रधानमंत्री की तो जितनी भी योजनाएं रही हैं वो सारी बड़ी महत्वपूर्ण रही हैं, किसान के हित में रही हैं। और ये बुढ़ापे में जो 3,000 रुपए की इसके मिलेंगे, ये जो बहुत ही बढ़िया टाइम की जो एज के हिसाब से।
7: वही न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों के लिए एक मजबूत सहारा बना है, जिसके तहत किसानों को उनके उत्पादन लागत का 1.5 गुना मूल्य मिल रहा है। सरकार के द्वारा उठाए गए ठोस नीतियों के कारण देश का कुल खाद्यान्न उत्पादन 2013-14 के 265 मिलियन टन से बढ़कर 2024-25 में लगभग 358 मिलियन टन हो गया है। इसके अलावा भारत ने रिकॉर्ड 154 मिलियन टन से अधिक चावल का उत्पादन कर चीन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है। आज भारत का किसान केवल अन्नदाता ही नहीं बल्कि देश की आर्थिक प्रगति और विकास का एक महत्वपूर्ण आधार भी बन चुका है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
4: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिमंडल का पहला बड़ा विस्तार होगा। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद में 35 नए मंत्रियों को शामिल किया जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह दिन में 11 बजे लोकभवन में होगा। श्री अधिकारी ने ऐतिहासिक सत्ता परिवर्तन के बाद 9 मई को पदभार संभाला था। इस विस्तार के साथ राज्य में मंत्रियों की संख्या बढ़कर 41 हो जाएगी, जो पश्चिम बंगाल विधानसभा के 294 सदस्यों के लिए संवैधानिक रूप से तय 15% की सीमा के अनुरूप है। प्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुर का कल मुंबई स्थित उनके आवास पर निधन हो गया। वे 89 वर्ष की थी। एक श्रद्धांजलि।
10: कल्याणपुर का जन्म 28 जनवरी 1937 को ढाका में हुआ था। सुमन कल्याणपुर ने 1950 के दशक के मध्य में हिंदी फिल्मों में अपने करियर की शुरुआत की और आगे चलकर उन्होंने महान संगीतकारों और गायकों विशेष रूप से मोहम्मद रफी के साथ सैकड़ों गीत रिकॉर्ड किए। उनके सबसे लोकप्रिय गीतों में आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे, नाना करते प्यार शामिल है। नाना करते प्यार, सुमन कल्याणपुर के करियर की एक विशेषता ये थी कि उनकी आवाज महान गायिका लता मंगेशकर से काफी मिलती जुलती थी। इस तुलना के बावजूद सुमन कल्याणपुर ने अपनी एक अलग पहचान बनाई और अपनी मधुर तथा सधी हुई गायकी के लिए वो हमेशा याद की जाएंगी। उनके निधन से भारतीय फिल्म संगीत का एक और स्वर्णिम अध्याय समाप्त हो गया है।

0: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में लू के दौरान सुरक्षा, सावधानियां और बचाव विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। इस चर्चा में सफदरजंग अस्पताल के चिकित्सा विभाग के डॉक्टर रूपाली मलिक भाग लेंगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई जिलों में आंधी, बारिश और खराब मौसम की घटनाओं के मद्देनजर जिला प्रशासन, राहत आयुक्त कार्यालय और संबंधित विभागों को निरंतर निगरानी बनाए रखने और किसी भी आपदा की स्थिति में तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर लगातार दूसरी बार आईपीएल का खिताब जीता। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 155 रन बनाए। विराट कोहली के नाबाद 75 रन की पारी के बदौलत बेंगलुरु ने 18वें ओवर में ही मैच जीत लिया। विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। राजस्थान के खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी को आईपीएल क्रिकेट में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। उन्होंने सर्वाधिक 776 रन बनाकर ऑरेंज कैप जीती। वो 15 साल 65 दिन की उम्र में ऑरेंज कैप जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए। कागिसुर अबाडा ने सत्र में सबसे ज्यादा 29 विकेट लेकर पर्पल कैप हासिल की। मनीष पांडे को बैकवर्ड पॉइंट पर टिम डेविड का शानदार कैच लेने के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला। मोहम्मद सिराज को सबसे ज्यादा डॉट बॉल फेंकने का पुरस्कार मिला। उन्होंने 172 डॉट बॉल फेंकी। साई सुदर्शन को सबसे ज्यादा चौके लगाने का पुरस्कार मिला। उन्होंने 75 चौके लगाए। वैभव सूर्यवंशी को सर्वश्रेष्ठ उभरता खिलाड़ी, 237.3 के स्ट्राइक रेट के साथ सर्वश्रेष्ठ स्ट्राइकर और 72 छक्कों के साथ सर्वाधिक छक्के लगाने का पुरस्कार भी मिला। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है मुनीश शर्मा।
1: धन्यवाद लवलीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में अपील की कि गर्मी और लू से बचने के लिए खूब पिए देसी पेय। ये खबर जनसत्ता समेत सभी अखबारों में है। पत्र आगे लिखता है कि प्रधानमंत्री ने एथलेटिक्स में बने कीर्तिमानों की सराहना की है। भारत ओमान व्यापार समझौता आज से लागू, भारतीय उत्पादों को शुल्क मुक्त बाजार। अमर उजाला ने इसे प्रमुखता से देते हुए लिखा है, मोदी सरकार के कार्यकाल में 5वां FTA, पश्चिम एशिया संकट के बीच 2 गुना होगा द्विपक्षीय कारोबार। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण द्वारा 30 जरूरी दवाओं के दाम निर्धारित करने पर हिंदुस्तान लिखता है कि इससे हड्डी, हृदय रोग और मधुमेह के रोगियों को राहत मिलेगी। सुरक्षित सोशल मीडिया शीर्षक से हिंदुस्तान ने संपादकीय में लिखा है कि भारत ने 9 से 17 वर्ष के करीब 76% बच्चे सोशल मीडिया मंच का इस्तेमाल समय बिताने के लिए करने लगे हैं, जिससे उनकी सोचने समझने की क्षमता प्रभावित हो रही है और ध्यान केंद्रित करने की उनकी क्षमता भी काफी घटती जा रही है। रोहतांग में बर्फबारी, मैदानी इलाकों में बारिश से उत्तर भारत में प्रचंड गर्मी से राहत मिलने और हवा में सुधार पर अमर उजाला ने सचित्र देते हुए लिखा है कि उत्तर पश्चिम में भारत में आंधी तूफान और बारिश के आसार। जबकि नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, दिल्ली वालों की राहत वाली हवा, 2018 के बाद तीसरी बार सबसे साफ हवा दर्ज की गई। प्रसिद्ध पार्श्व गायिका सुमन कल्याणपुर के निधन पर स्मृति शेष विशेष में राजस्थान पत्रिका लिखता है, 3000 से ज्यादा फिल्मी और गैर फिल्मी गीत उन्होंने गाए। पत्र ने इसे शीर्षक दिया है, रहे ना रहे हम महका करेंगे। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लगातार दूसरी बार आईपीएल चैंपियन बनने को सभी अखबारों ने सचित्र प्रकाशित किया है।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ओ मिन आउ लाइन के साथ वार्ता करेंगे। 10 राज्यों से राज्यसभा की 24 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। केंद्र उर्वरकों के संतुलित और सही उपयोग को बढ़ावा देने के लिए आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान आरंभ करेगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज 35 नए मंत्रियों को शामिल कर मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। प्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुर का मुंबई में निधन। और क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर आईपीएल खिताब जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

छत्तीस को मतने मन से, छत्तीस को मतने मन से, घर घर के मजाई रीत ऐसा है पर का।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम लोक संगीत, कलाकार थे चंद्रलाल। मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। अब प्रस्तुत है पत्रों पर आधारित कार्यक्रम आपकी फरमाइश।

कार्यक्रम में आपका स्वागत है, अभिनंदन है और साथ ही स्वीकार कीजिए अपने दोस्त हितेश का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज हम हाजिर हैं लेकर आपके प्यारे प्यारे पत्र, इनको पढ़ेंगे और सुनवाएंगे आपके चाहत भरे नगमे। पहला पत्र हमें लिख भेजा है मॉडल टाउन करनाल से। लिखने वाले हमारे साथी हैं सुधीर नूतन, संदीप गुगलानी, सुनीता जैन, सुनीता शर्मा और नरेंद्र तनेजा। गोला बाजार बक्सर से लिखते हैं श्रद्धानंद आर्य, अभ्यानंद, परमानंद, पंकज, प्रमोद, रोहित, मोहित और इनका समस्त परिवार। मुक्तसर से आप हैं बाबू सिंह धीमान, बलजिंदर कौर धीमान, नवनीत और निशु। पुणे से ये पत्र आया है, लिखने वाले हमारे साथी हैं पंकज वाड़ोदे, आर्य आदि। जरूर वरुण से लिखते हैं बाबा साहेब वाड़ोदे, मीनाक्षी चरपे और रजनी कानीरे। और ये पत्र आया

है मेहर नगर उमरेखेड़ महाराष्ट्र से, आप हैं अभिजीत गवहानकर, सरिता गवहानकर, प्रिंस एकांश, बदलापुर मुंबई से लिखते हैं सिद्धांत गवहानकर और प्रणीता, आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से आप हैं शैलेश गवहानकर, श्रीमती वैशाली गवहानकर, श्वेता सुमित गवहानकर, ध्वनि और परी, जामरून से आप हैं दुर्गादास जोशी, गंगाधर जोशी, गजानन, संजय, आशीष, पृथ्वीराज, साध्वी और गणेश। सुनते हैं आप सभी की पसंद पर कार्यक्रम का पहला नगमा।

सत्यम शिवम सुंदरम का ये टाइटल ट्रैक आपने सुना लता मंगेशकर और सखियों की आवाज़ों में। और अब उठाते हैं कार्यक्रम का अगला पत्र जो हमें लिख भेजा है बठिंडा रोड डब्बाली से। आप हैं राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग और ये पत्र आया है आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से। आप हैं ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेहराज जहां। संबलपुर कांकेर से लिखते हैं फागुराम यादव, ज्योति, ओजस्वी, ईशिका और तेजल। गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से लिखते हैं बबलेश पवार, डैनी और मनीष। लच्छनपुर छत्तीसगढ़ से लिखने वाले हमारे साथी हैं विश्वनाथ साहू, पंकज, तिरुपति, अक्षय और आरो साहू। कनेरा मोहल्ला पटियाला से लिखते हैं मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन, पलक, करण, गीतू, निहारिका, हार्दिक और वंश। और ये पत्र आया है चंडीगढ़ से। आप हैं सतीश अनेजा और विमला अनेजा। सुनते हैं आप सभी की पसंद पर ये गीत।

जिधर से खुशियों की मत मस्त घटा है आज तो खुल कर बरसे। ओ धूम मचाते गाते निकलो निकलो आज जिधर से खुशियों की मत मस्त घटा है आज तो खुल कर बरसे। खुशियों की मत मस्त घटा है आज तो खुल कर बरसे।

0: जब से हमने दिल बदले हैं सारा जग बदला।
1: ये गीत आपने सुना मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में और फिल्म का नाम था एन इवनिंग इन पेरिस। और अब उठाते हैं कार्यक्रम का अगला पत्र जो हमें लिख भेजा है कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से। आप हैं ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार, हैप्पी राय। दुबिहा नेवादा गाजीपुर से लिखते हैं प्रतीक राय, रोशनी राय और प्रांजल राय। शेरपुरा कला गाजीपुर से आप हैं अवधेश राय, प्रीति राय और नवनीत। और ये पत्र आया है गौतम नगर ज़िला नांदेड़ से, आप हैं प्रभाकर जोंधले और आरती। दतरंगी से आप हैं भागवत वर्मा। सूर्यवाड़ी औरंगाबाद से लिखते हैं प्रकाश बोरगांवकर, सुषमा प्रकाश, प्राजक्ता, प्रांजलि, सोहम बोरगांवकर। और ये पत्र आया है राजनगर मधुबनी से, आप हैं कुशेश्वर प्रसाद गुप्ता, शारदा गुप्ता, रंका रानी, मौसम, संगीता, रुद्र, रिद्धि। ऐशबाग पीली कॉलोनी लखनऊ से लिखते हैं मुकेश गुप्ता, रानी, कुसुम, पलक, पंखुरी। राजनगर गांधी चौक कांति निकेतन से आप हैं मंजीत गुप्ता, सोनाली गुप्ता, सूर्यांशी, कोमल, मेनका, माधवी, साध्वी, तन्मय, राज और गुनगुन। और ये पत्र है महाराष्ट्र हिंगोली से, आप हैं शाहजी बोड़खे, नंदा, हनुमान, उत्तम जगदाड़े और स्वराज जगदाड़े। सुनते हैं आप सभी की पसंद पर कार्यक्रम का अगला गीत।

महेंद्र कपूर को आपने सुना फिल्म हमराज से, और ये पत्र हमें लिख भेजा है पंजाब से पटेल नगर मलोट से। आप हैं डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी, गगनदीप और आरजू। फ्रेंड्स कॉलोनी करनाल से हमारे श्रोता हैं गुरविंदर सिंह पांधा, इंद्रजीत कौर, मनमीत और मनविंदर सिंह पांधा। अलका डब्वाली से लिखते हैं बसंत सिंह चंद, राजकुमार, सुनीता और कुलदीप गांधी। और ये पत्र आया है बेरडी से, लिखने वाले हमारे साथी हैं हुकुम करमरकर, सुनीता करमरकर, हार्दिक, प्राची और तनु। और इसी कड़ी में ये पत्र है नया पारा भिरई से, आप हैं बसंत कुमार सूर्यवंशी, सरोज सूर्यवंशी, ईश्वर राज, चंद्रकांत, प्राची और टीयूषी। सुनते हैं आप सभी की पसंद पर ये गीत।

ये गीत आपने सुना फिल्म चिराग से, आवाज़ थी मोहम्मद रफ़ी की। और अब उठाते हैं कार्यक्रम का ये पत्र जो हमें लिख भेजा है बलियाली भिवानी हरियाणा से दर्शनलाल बंसल, सुदेश रानी बंसल, प्रवीण कुमार, ममता रानी, कमल कुमार, गर्विश और तमन्ना। धामणी मानोरा से लिखते हैं तुलसीराम पेंटर, डेरे माया डेरे संदेश, आदेश, किरण, प्रज्वल और हारदुल्या। और सोमढाणा से लिखते हैं डॉक्टर विशाल, तुलसीराम, चंद्रकांत पाटिल, नीलू पाटिल, शेखर, सोमोने, नितिन, किशन और आकाश ढोले। आदर्श नगर मलोट से ये पत्र आया है। लिखने वाले हमारे साथी हैं राज शर्मा, मीना, योगेश, मैंडी, सौरव, शाइना और निवान शर्मा। मलोट कैंप पंजाब से लिखते हैं सतीश मिगलानी, सीमा, अनमोल, धर्मपाल, वीर सिंह लाठी, लखविंदर संधू, महावीर संधू, गुरचरण ग्रोवर और रमेश मिगलानी।

शम्मी कपूर पर फिल्माया गया ये बेहतरीन नगमा आपने सुना मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर के युगल स्वरों में। साथियों, सुमन कल्याणपुर एक भारतीय पार्श्व गायिका थी। भारत में सबसे प्रसिद्ध और सबसे प्रतिष्ठित पार्श्व गायिकाओं में से एक। सुमन ने हिंदी, मराठी, असमिया, गुजराती, कन्नड़, मैथिली, भोजपुरी, राजस्थानी, बंगाली, ओड़िया और पंजाबी के अलावा अन्य कई भाषाओं में गीत गाए। सुमन कल्याणपुर का जन्म 28 जनवरी 1937 को हुआ था, लेकिन उम्र संबंधी समस्याओं के कारण उनका निधन 31 मई 2026 को 89 वर्ष की आयु में मुंबई स्थित उनके आवास पर हुआ। उन्हीं की आवाज़ में ये गीत आपने सुना। और अब आपको बताते हैं कि कार्यक्रम के लिए हमें पत्र लिख भेजा है बठिंडा रोड रब्बाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग और मोहित नारंग ने। और ये पत्र आया है जलगांव सोमनाथ जालाना से। आप हैं नामदेव भुतेकर, अभिषेक, गणेश, कार्तिक, अश्वनी। और जलगांव से आप हैं वैष्णवी, हर्षुल, औरंगाबाद, वैभव, गौरव, मेघराज, युवराज, रिधोरा, रुद्र और इनका समस्त परिवार। छत्तीसगढ़ भाटापारी दतरेंगी से लिखते हैं द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार और झाविंद्र कुमार। गांधी चौक रोपड़ पंजाब से ये पत्र आया है। लिखने वाले हमारे साथी हैं हरदेव मीका, बलविंदर बीरक, जयतेक बीरक और मीका बीरक। आप सभी ने सुनना चाहा है ये गीत।

0: सब इसलिए नहीं, जो कुछ भी नहीं वो कैसी कही।
1: एक बात कहूँ वल्ला, ये हुस्न सुभान अल्लाह, जब नाम लिया जी दिल थाम लिया, तो कैसी कही।
0: बस तुमने कदर की है, क्या खूब नजर की है, दिलदार मिले तो ऐसा मिले, क्या बात कही।
2: श्रीमान सत्यवादी फिल्म से ये नगमा आपने सुना सुमन कल्याणपुर और साथियों की आवाज़ों में। और अब उठाते हैं कार्यक्रम का ये अगला पत्र जो हमें लिख भेजा है डोंगरगांव से। आप हैं राष्ट्रपाल गजबिये, राधिका गजबिये, अनिका और तन्मय, डव्वाली हरियाणा से लिखते हैं जेके बकोलिया, सुनीता बकोलिया, संजय, अनिल और मीनू बकोलिया। और ये पत्र आया है प्रमीलागंज आलोट रतलाम मध्य प्रदेश से। लिखने वाले हमारे साथी हैं बलवंत कुमार वर्मा, राजूभाई, माया, शोभा, राहुल, ज्योति, अतुल, पायल, प्रियांश और ऋषि वर्मा। और ये अगला पत्र है गांव पांडुपिंडारा से। लिखने वाले हमारे श्रोता हैं बादल सिंह गिल। आप सभी की पसंद पर सुनेंगे ये गीत।

0: गैम्बलर फिल्म से आपने सुना किशोर कुमार की आवाज़ में ये गीत। और अब उठाते हैं कार्यक्रम का अगला पत्र जो हमें लिख भेजा है अनारकली बाज़ार जगराव से। आप हैं सुनील पाठक, कमल, दीपिका मल्होत्रा, आशीष मल्होत्रा, गव्या और सूचा पाठक। और ये पत्र आया है महादेव घाट अमलेश्वर से। लिखने वाले हमारे साथी हैं डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश, तारणी, सूरज, सुजला, ज्योति और रेयांश। गांव कैरा, ज़िला तरन तारण, पंजाब से लिखते हैं गुरदर्शन लाल चलोत्रा, सुनीता, शमी, रजनी, आकाशदीप, अनहद और इनका समस्त परिवार। चकला बाजार सामाना से लिखते हैं पप्पू राजा खुशदिल, संगीता जिंदल, हसमुख और इनका पूरा परिवार। डीएलएफ कॉलोनी रोहतक से हमारे नियमित श्रोता है महेंद्र शाह, हरिंद्र शाह, जितेंद्र, मानसी, हर्षित, हिमांशु, वंशिका, ज्योति, मयंक, कार्तिक और गौतम। आप सभी की पसंद पर सुनवाएंगे कार्यक्रम का अगला नगमा, लेकिन पहले सुनते हैं ये संदेश।
1: जब व्यापार के प्रचार की हो बात तो अपनाएं आकाशवाणी का साथ। हर दिल, हर घर और हर जन, हर वर्ग को जोड़ने का है साधन। विश्वसनीय, असरदार और हम सब का हम सफर आकाशवाणी रोहतक है सदा तत्पर। हमारी आवाज आपका प्रचार, हो जाएं समृद्ध होने को तैयार। अपने ब्रांड को विज्ञापन के जरिए जन जन पहुंचाने के लिए आज ही संपर्क करें आकाशवाणी रोहतक।

ये गीत आपने सुना फिल्म हम आपके हैं कौन से, आवाज़ थी एसपी बाला सुब्रमण्यम की। और अब उठाते हैं कार्यक्रम का अगला पत्र जो हमें लिख भेजा है सागर और आम्रपाली ने। आप लिखते हैं मदुरई से, और ये पत्र आया है गांव गोविंदगढ़ माझीवाला श्रीकरणपुर राजस्थान से। आप हैं राजू टुटेजा, खुशदिल, उर्मिला, गुड्डू, जीनू, मनु, आदित्य, राखी, अमृत, शिवसेठी, करणपुरी और इनका समस्त परिवार। गांव नथाना पंजाब से लिखते हैं हरजिंदर छिंदा, जसवीर, रेखा, गगन, सोनी, सीता और गीता। मलोट पंजाब से हमारे साथी हैं राजकुमार इंदौरा, बिमला।

गैरी, विकास, प्रियंका, रमन, ऋतु, भविष्य, मिशेल, किंशुक और दीपांशी इंदौरा। रेलवे कॉलोनी हनुमानगढ़ से ये पत्र आया है। लिखने वाले हमारे साथी हैं जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जेएस नायक, शोभा और इनका समस्त परिवार। सुनते हैं आप सभी की पसंद पर कार्यक्रम का ये गीत।

ये नगमा आपने सुना फिल्म आशिक से, आवाज़ थी मुकेश कुमार की। इसी गीत को सुनना चाहते थे वैष्णव कॉलोनी सदानंद से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश खत्री, रमेश गोड़, मोहम्मद शादाब खत्री। छत्तीसगढ़ बेमेतरा से लिखते हैं पूर्णिमा सारथी, पूजा आरती भव्या श्रीमती सुषमा सारथी। नवागढ़ कटई से आप हैं नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत, सीमा, शारदा, दामिनी। और छत्रपति संभाजी नगर से आप हैं राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और शीतल राजेश। इसी के साथ आज का कार्यक्रम आपकी फरमाइश यहीं संपन्न होता है। पत्र भेजने वाले हमारे सभी श्रोताओं का हम धन्यवाद करते हैं। आप सभी स्वस्थ रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और सुनते रहिएगा आकाशवाणी रोहतक।

अभी आप सुन रहे थे पत्रों पर आधारित कार्यक्रम आपकी फरमाइश। मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से बोल रहे हैं। अब आप सुनेंगे हिंदी समाचार, उसके तुरंत बाद आप सुनेंगे अंग्रेजी समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। इस दौरान सुरक्षा और संपर्क सुविधा सहित भारत और म्यांमार के समग्र संबंधों पर चर्चा होगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि म्यांमार के राष्ट्रपति का काफी व्यस्त कार्यक्रम है।
1: म्यांमार के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। सांस्कृतिक परिसर में आयोजित लाइट एंड द लोटस रेलिक्स ऑफ द अवेकेंड वन प्रदर्शनी का भी दौरा करेंगे। इस प्रदर्शनी में भगवान बुद्ध से संबंधित पिप्रहवा पवित्र अवशेषों तथा उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण प्राचीन धरोहरों का प्रदर्शन किया जा रहा है। म्यांमार भारत की नेबरहुड फर्स्ट एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों के संगम पर स्थित है। म्यांमार के राष्ट्रपति की भारत की यह आधिकारिक यात्रा से दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंधों को और गहराई मिलेगी तथा दोनों देशों के बीच साझेदारी के नए अवसर खुलने की आशा है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: 10 राज्यों से राज्यसभा की 24 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4 सीटें, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3-3 सीटें, झारखंड में 2 सीटें और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम में 1-1 सीट पर चुनाव होंगे। महाराष्ट्र, तमिलनाडु और ओडिशा में 1-1 सीट के लिए राज्यसभा उपचुनाव की अधिसूचना भी आज जारी की जाएगी। 8 जून तक नामांकन दाखिल किए जा सकते हैं। मतदान 18 जून को होगा और मतगणना भी उसी दिन की जाएगी। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान आरंभ करेंगे। उर्वरकों के संतुलित और सही इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए 1 महीने का यह अभियान 30 जून तक चलेगा और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: यह अभियान देश की कृषि भूमि को बचाने और किसानों को वैज्ञानिक खेती के लिए जागरूक करने की दिशा में एक बड़ी पहल है। इस अभियान में कृषि विश्वविद्यालय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि विज्ञान केंद्र और जनप्रतिनिधि सभी मिलकर भाग लेंगे। अभियान के तहत किसानों को मिट्टी परीक्षण, सोयल हेल्थ कार्ड, प्राकृतिक खेती, संतुलित उर्वरक उपयोग और जल संरक्षण जैसे विषयों पर जानकारी दी जाएगी। साथ ही नकली खाद, बीज और कीटनाशकों की पहचान करने के बारे में भी किसानों को सजग किया जाएगा। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
0: पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिमंडल का पहला बड़ा विस्तार होगा। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद में 35 नए मंत्रियों को शामिल किया जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह दिन में 11 बजे लोक भवन में होगा। श्री अधिकारी ने ऐतिहासिक सत्ता परिवर्तन के बाद 9 मई को पदभार संभाला था और इस विस्तार के साथ ही राज्य में मंत्रियों की संख्या बढ़कर 41 हो जाएगी, जो पश्चिम बंगाल विधानसभा के 294 सदस्यों के लिए संवैधानिक रूप से तय 15% की सीमा के अनुरूप है। प्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुर का मुंबई स्थित उनके आवास पर निधन हो गया। वे 89 वर्ष की थीं। सुमन 1950 से 1970 के दशक की फिल्म संगीत में हिंदी, मराठी और कई अन्य भारतीय भाषाओं में अपनी मधुर गायकी के लिए लोकप्रिय रहीं। उनके कुछ सबसे प्रसिद्ध गीतों में आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे, नाना करते प्यार तथा तुमने पुकारा और हम चले आए शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई जिलों में आंधी, बारिश और खराब मौसम की घटनाओं के मद्देनजर जिला प्रशासन, राहत आयुक्त कार्यालय और संबंधित विभागों को निरंतर निगरानी बनाए रखने और किसी भी आपदा की स्थिति में तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर लगातार दूसरी बार आईपीएल का खिताब जीत लिया है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 155 रन बनाए। विराट कोहली की नाबाद 75 रन की पारी की बदौलत बेंगलुरु ने 18वें ओवर में ही मैच जीत लिया। विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। Prime Minister Narendra Modi will hold discussions with Myanmar President U Min Aung Hlaing in New Delhi today. The talks will be held on further strengthening the historical and civilizational ties between the two countries. The entire gamut of relations between Myanmar and India, including security and connectivity, will come up for discussions during the talks. The President of Myanmar will also meet President Draupadi Murmu this evening at Rashtrapati Bhavan. National Security Advisor Ajit Doval called on the visiting dignitary in New Delhi last evening. President U Min Aung Hlaing also addressed Myanmar-India Business Forum. The Myanmar President arrived in Gaya, Bihar on Saturday on a five-day visit to India. The notification for biennial elections to 24 seats of the Rajya Sabha from 10 states will be issued today. 4 seats each in Andhra Pradesh, Gujarat and Karnataka, 3 seats each in Rajasthan and Madhya Pradesh, 2 seats in Jharkhand and 1 seat each in Manipur, Meghalaya, Arunachal Pradesh and Mizoram will go to polls. Former Prime Minister and JDS leader H.D. Devegowda, Union Ministers and BJP leaders George Kurian and Ravneet Singh, Leader of Opposition in Rajya Sabha and Congress President Mallikarjun Kharge are among the members who are completing their terms this month. The prices of 19-kilogram commercial LPG cylinder used by hotels, restaurants and other businesses has been hiked ranging from 42 rupees to 53.50 rupees across 4 major cities. There has been no change in the rates of domestic cooking gas used by household. The price of commercial LPG cylinder has been hiked 42 rupees in Delhi and it will now cost 3,113.50 rupees. In Mumbai, it has been hiked 43.5 rupees and commercial cylinder will now cost 3,067.50. With a hike of 53.5 rupees, commercial cylinder will now cost 3,255.50 in Kolkata. There has been a hike of 42 rupees in the prices of commercial cylinder in Chennai and it will now cost 3,283 rupees. The latest increase in commercial LPG prices came in the backdrop of rising global energy costs triggered by escalation of tensions in West Asia amid conflict between USA and Iran. West Bengal Chief Minister Suvendu Adhikari will expand his cabinet today. 35 new ministers will be inducted into the Council of Ministers. The swearing-in ceremony will take place at Lok Bhavan at 11 a.m. The fresh inductions will significantly scale up the Adhikari administration, which took charge on 9th of May with a core team of 5 cabinet members. With this expansion, the total strength of the state cabinet will rise to 41. Health Agency of African Union Africa Centers for Disease Control and Prevention, CDC, has welcomed the emergency diagnostics, therapeutics and medical supplies provided by the Government of India to support the ongoing Ebola response. CDC has thanked the government and the people of India for their solidarity with Africa. Nepal's ruling Rashtriya Swatantra Party President Rabi Lamichhane is embarking on a five-day visit to India beginning today. Mr. Lamichhane is visiting India at the invitation of BJP President Nitin Naveen and will hold high-level political and diplomatic meetings in New Delhi, including with the top leadership of the BJP. Union Agriculture and Farmers Welfare Minister Shivraj Singh Chauhan will launch the Khet Bachao Abhiyan from Raisen District in Madhya Pradesh today. The month-long campaign aims to protect farmland and make farmers aware of scientific farming. Defence Minister Rajnath Singh and Australian Deputy Prime Minister and Minister for Defence Richard Marles will co-chair the second India-Australia Defence Ministers' Dialogue in New Delhi today. The Ministry of Defence said that during the dialogue, discussions will focus on strengthening defence and security cooperation, enhancing military interoperability and industry collaboration, including co-development and co-production opportunities. In IPL cricket, Royal Challengers Bengaluru won their second consecutive IPL title, beating Gujarat Titans by 5 wickets in the final match in Ahmedabad last night. Put into bat first, Gujarat Titans posted 155/8 in the stipulated 20 overs. In reply, RCB comfortably chased down the target, scoring 161/5 in 18 overs. And that is the end of this news bulletin.
4: मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। सुबह के 10:10 और 11 सेकंड हो चुके हैं। अब हमारी पहली सभा यहीं संपन्न होती है। दोपहर 12:30 पर हम फिर उपस्थित होंगे अपनी दूसरी सभा में। FM बैंड 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर सुनते रहिएगा विविध भारती के कार्यक्रम। अब अनुमति दीजिए।

सोमनाथ मंदिर की बातें कर रहे हैं आज हम, सोमनाथ की बातें कर रहे हैं आज हम तस्वीर में। नीतू है आपके साथ आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर। सोमनाथ मंदिर गिर सोमनाथ जिले में है। गिर के सुविख्यात जंगल और दुनिया भर में मशहूर सोमनाथ मंदिर से मिलकर गिर सोमनाथ जिले का नाम पड़ा। यहाँ आप प्रभास पाटन संग्रहालय भी देख सकते हैं जो कि 1951 में स्थापित किया गया था। ये पत्थर की मूर्तियों और पत्थर के शिलालेखों के लिए लोकप्रिय है। सोमनाथ बीच पर आप कई तरह की गतिविधियों का आनंद ले सकते हैं। सोमनाथ में एक त्रिवेणी घाट है जहां हिरण, कपिला और सरस्वती नदियों का संगम मिलता है। इसी घाट के उत्तरी किनारे पर है सूर्य मंदिर जो कि सूरज देवता को समर्पित है। ये खासतौर पर अपनी वास्तुकला के लिए मशहूर है। इसकी दीवारों पर हाथी और शेर जैसे जानवरों की बेहतरीन मूर्ति सात घोड़े और दो पत्नियां हैं।

केदारनाथ एक तीर्थ है और तीर्थ यात्रा के लिए तो यूं भी कोई भी समय उपयुक्त होता है, मगर मौसम अच्छा होना तो यात्रा का जो मजा है और आनंद है वो बहुत ही आरामदायक हो जाता है, दुगना हो जाता है। और इसीलिए सोमनाथ जाने का सही समय अक्टूबर से मार्च माना जाता है, जब मौसम ठंडक की तरफ बढ़ने लगता है। हवाई यात्रा करना चाहें तो निकटतम हवाई अड्डे हैं जूनागढ़, दीव और राजकोट में। सोमनाथ में रेलवे स्टेशन तो है, तो आप ट्रेन से जा सकते हैं। देश के सभी प्रमुख शहरों से बस सुविधा भी है। आप जो चाहें तरीका अपनाएं और उस तरीके को अपनाकर आप पहुंच सकते हैं सोमनाथ मंदिर। तस्वीर में आज पूरी तस्वीर में आज हमने सोमनाथ मंदिर की बातें की, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। और इसी तरह आप जुड़े रहिए आकाशवाणी दिल्ली के साथ। अब बढ़ते हैं हम तस्वीर में अगले गाने की तरफ।

बिल्कुल, चलते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, यही तो जीवन है। और इसी के साथ नीतू को इजाजत दीजिए, आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन के बीच नई दिल्ली में द्विपक्षीय बैठक हो रही है। दोनों नेताओं के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और सुदृढ़ करने के लिए ये चर्चा हो रही है। म्यांमार और भारत के बीच सुरक्षा और संपर्क सहित दोनों देशों के संबंधों के सभी पहलुओं पर बातचीत की संभावना है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि म्यांमार के राष्ट्रपति का काफी व्यस्त कार्यक्रम है।
1: म्यांमार के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। सांस्कृतिक परिसर में आयोजित लाइट एंड द लोटस रेलिक्स ऑफ द अवेकेंड वन प्रदर्शनी का भी दौरा करेंगे। इस प्रदर्शनी में भगवान बुद्ध से संबंधित पिप्रहवा पवित्र अवशेषों तथा उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण प्राचीन धरोहरों का प्रदर्शन किया जा रहा है। म्यांमार भारत की नेबरहुड फर्स्ट एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों के संगम पर स्थित है। म्यांमार के राष्ट्रपति की भारत की यह आधिकारिक यात्रा से दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंधों को और गहराई मिलेगी तथा दोनों देशों के बीच साझेदारी के नए अवसर खुलने की आशा है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिमंडल का पहला बड़ा विस्तार किया गया। राज्यपाल आर एन रवि ने मंत्रिपरिषद के 35 नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। समारोह का आयोजन कोलकाता के लोक भवन में हुआ। समारोह में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। नवनियुक्त मंत्रियों को विभागों का आवंटन बाद में घोषित किए जाने की संभावना है। सर्वोच्च न्यायालय में 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है। इसके साथ ही मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की कुल संख्या 37 हो गई है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि राष्ट्रपति ने मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद सर्वोच्च न्यायालय में 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की है। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA आज से लागू हो गया है। वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि यह समझौता दोनों देशों के आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को और मजबूत करेगा। 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के द्विवार्षिक चुनाव के लिए अधिसूचना आज जारी कर दी गई है। इस चुनाव के अंतर्गत आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4 सीट,

मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्स पर डीटीएच और न्यूज़ ओने आईआर पर यह आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। दिन के 12:30 और 23 सेकंड हुए हैं। हमारे दूसरी सभा के कार्यक्रम अब शुरू होते हैं। आरंभ में सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार। साथ ही साथ नए महीने जून की आप सबको उमंग कार्यक्रम की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं।
3: और अजीत का भी नमस्कार। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे आपके सबके चहेते कार्यक्रम उमंग में। आइए करते हैं शुरुआत हमेशा की तरह एक सुंदर विचार से, जिसे हमें भेजा है आर्यनगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी ने। लिखते हैं,
2: मौसम चाहे जैसा हो, मन में उम्मीद की धूप हमेशा खिली रहनी चाहिए। बहुत खूबसूरत विचार है, आप सबको उमंग कार्यक्रम की ओर से धन्यवाद।
3: और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है केंद्रपाड़ा ओडिशा से देशदीप दास, कोटकुटिया नायक, पद्मलोचन मोहंती, अभिराम साहू, सत्यजीत नायक और साई प्रसाद नायक जी का।
2: रिंग रोड नर्मदा नगर से सूरज वर्मा, ऋषभ कनक और भावना वर्मा।
3: और ग्राम खैगांव तहसील महेश्वर से प्रेमलाल वर्मा, निकेश, धर्मेंद्र और ममता बाई वर्मा जी ने लिखा है। बड़ा खूबसूरत लिखा है।
2: प्रिय अजीत जी और विमलेश जी, आपको हमारा प्यार भरा नमस्कार। गुड मॉर्निंग, आप कैसे हैं जी? आशा करते हैं आप सकुशल होंगे। आज बहुत दिनों बाद आपके उमंग कार्यक्रम में पत्र भेज रहे हैं। काम की कुछ व्यस्तताओं के कारण आपके उमंग कार्यक्रम में पत्र नहीं भेज पा रहे थे, लेकिन हम लोग नियमित रूप से आपका उमंग कार्यक्रम सुन रहे थे। उमंग कार्यक्रम में इन दिनों राग रस बरसे कार्यक्रम बेहद पसंद आ रहा है। धन्यवाद इस कार्यक्रम को उमंग कार्यक्रम में शामिल करने के लिए। आपने संगीत प्रेमियों की खुशी को दोगुना बढ़ा दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद।
3: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इतने खूबसूरत संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है जेल रोड कानपुर से फातिमा वली बेलदार, सरफुद्दीन वली बेलदार, वसीम अकरम बेलदार और डब्ल्यू सोनम बेलदार जी का।
2: खेरागढ़ राजलालपुर छत्तीसगढ़ से मोतीलाल भीमटे और सुशीला भीमटे।
3: और हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोर्डखे, नंदा बोर्डखे, हनुमान बोर्डखे और उत्तम जामदाड़े जी।
2: आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद संदेशों के लिए।
3: और अब बारी है श्रोताओं पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की। तो हमारा पहला प्रश्न था, दुनिया का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कहाँ है?
2: इसका उत्तर जान लेते हैं साथियों। दुनिया का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है अंटार्कटिका का शीत मरुस्थल।
3: और अब सुनिए हमारा दूसरा प्रश्न। हमारा दूसरा प्रश्न था, चेरी ब्लॉसम के फूलों को जापानी भाषा में क्या कहते हैं?
2: चेरी ब्लॉसम के फूलों को जापानी भाषा में सकुरा कहते हैं।
3: और अब हमारा पूछा गया अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न था, मूल रूप से ट्यूलिप फूल किस देश का है?
2: ट्यूलिप फूल मूल रूप से कजाकिस्तान का है। यहाँ से ये तुर्की पहुँचा और धीरे धीरे पूरे यूरोप में फैल गया।
3: और फिर हमने आपसे पूछा था श्रोताओं, रजनीगंधा फूल रात में ही अधिक खुशबू क्यों देता है?
2: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। प्रकृति ने रजनीगंधा फूलों को रात्रि परागण या नाइट पॉलिनेशन के लिए बनाया है। रात को इस फूल के अंदर का सुगंधित तेल बहुत अधिक सक्रिय हो जाता है, जिसके कारण रात्रि बेला के कीट पतंगे इस फूल की ओर आकृष्ट होते हैं।
3: हमारा अंतिम प्रश्न था, गुलाब फूल की दुनिया भर में लगभग कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं?
2: इसका उत्तर है, गुलाब फूल की दुनिया भर में लगभग 100 प्रजातियां पाई जाती हैं।
3: तो श्रोताओं, ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। अब सुनिए आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, किन दो देशों के बीच की दीवार को गिरा दिया गया था और उस दीवार का क्या नाम था? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
2: किन दो देशों के बीच की दीवार को गिरा दिया गया था और उस दीवार का क्या नाम था?
3: आप हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर या हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं। और हाँ, इंस्टा, एक्स, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
2: और अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आज का हमारा पहला कार्यक्रम है श्रोता संवाद। चर्चा का विषय है समावेशी शिक्षा।
3: ये कार्यक्रम उमंग प्रसारण का मासिक संस्करण है, जिसे हम CIET NCERT और शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संयुक्त रूप से की जाने वाली डिजिटल व अन्य पहलों के बारे में जानकारी देते हैं। आज की चर्चा की विषय विशेषज्ञ हैं प्रोफेसर भारती कौशिक। श्रोता संवाद।
2: उमंग कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि हर महीने हमारा विशेष मासिक रेडियो संस्करण श्रोता संवाद प्रसारित होता है, जिसमें हम जानकारी देते हैं शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार और CIET NCERT द्वारा संयुक्त रूप से की जा रही विभिन्न पहलों पर। इस क्रम में आज हमारे साथ हैं प्रोफेसर भारती कौशिक। आप CIET के मीडिया निर्माण प्रभाग की अध्यक्ष हैं। तो प्रोफेसर कौशिक, आपका हमारे स्टूडियो में हार्दिक स्वागत है।
4: धन्यवाद।
2: हमारे श्रोता ये जानने के लिए हमेशा बहुत उत्सुक रहते हैं कि श्रोता संवाद में हमारी चर्चा का विषय क्या रहेगा। तो आज हम किस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं?
4: आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय पर जो अक्सर आपको और मुझको छूता तो है, हम देखते तो हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम झिझक जाते हैं इस पर बातचीत करने में। आज हम बातचीत करेंगे समावेशी कक्षाओं की, समावेशी शिक्षा की।
2: क्या बात है। तो मेरा पहला प्रश्न श्रोताओं की ओर से ये है कि समावेशी शिक्षा से क्या तात्पर्य है? क्या इसे हम समतामूलक शिक्षा भी कह सकते हैं?
4: इसको हम समतामूलक शिक्षा तो शायद नहीं कह पाएंगे। क्यों? क्योंकि समावेशी शिक्षा का अर्थ है सभी को सम दृष्टि से देखना।
2: जी,
4: तभी तो वो समावेशी शिक्षा है, सबको साथ लेकर के चलना। लेकिन जहां हम बात करते हैं समतामूलक, मतलब हर एक की विशिष्टता को, हर एक की आवश्यकता को पहचान देना, हर एक की आवश्यकता को समझना और उसके अनुरूप उसकी पूर्ति करना।
2: जी,
4: अब ये विद्यालयों में, हमारे कक्षा कक्ष में कैसे हो सकती है, इसको एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं।
2: जी,
4: आप ये समझिए कि समावेशी कक्षा के या समावेशी शिक्षा के प्रावधानों में आता है कि सबको समान तरह की पुस्तकें देना, सबको समान तरह का खाना देना मिड डे मील के अंतर्गत, या सबको समान तरह की आप यूनिफॉर्म देते हैं। ठीक है
2: जी।
4: अब अगर कोई विद्यार्थी मेरी कक्षा में ऐसा है जो देख नहीं सकता या जिसको देखने में दिक्कत है, तो क्या होगा? लेकिन मैं तो समावेशी शिक्षा के अंतर्गत काम कर रही हूँ, तो मुझे तो उसको मुद्रित या प्रकाशित या छपी हुई किताबें ही देनी है।
2: जी,
4: लेकिन वो विद्यार्थी जो नहीं देख पा रहा, उसका क्या? उसके लिए तो वो किताबें किसी काम की नहीं है। यहाँ पर मुझे क्या करना है? यहाँ मुझे समतामूलक शिक्षा के सिद्धांतों का पालन करते हुए मैं उनके लिए ऐसी किताबें दूं जो या तो वो सुन ले, यानी ध्वनि के रूप में हो किताबें, रिकॉर्डेड हो,
2: जी,
4: या मैं उन्हें ऐसी किताबें दूं जो ब्रेल में हो, जिनको वो छू करके पढ़ सकें, या एक तीसरा स्वरूप हो सकता है कि मैं उन्हें डेजी में भी किताबें दूं, जो भी ध्वनि आधारित किताबें होती।
2: जी,
4: समतामूलक शिक्षा में हम क्या करते हैं? हम प्रत्येक विद्यार्थी की व्यक्तिगत आवश्यकता को ध्यान में रख करके हम तब उसको पूर्ति करते हैं। और समावेशी शिक्षा में हम क्या करते हैं? सबको सम दृष्टि, एक समान दृष्टि से देखते हैं। यानी अगर हम एक को अगर हम मुद्रित किताबें दे रहे हैं, तो पूरी कक्षा को हम मुद्रित किताबें दे रहे हैं, तो वहां व्यक्तिगत आवश्यकताओं का उतना ज्यादा ध्यान हम नहीं दे पाते हैं।
2: जी, आपने बहुत ही विस्तार से हमें बताया कि समावेशी शिक्षा और समतामूलक शिक्षा में क्या अंतर है। अब थोड़ी सी बात करते हैं इसके इतिहास की। प्रोफेसर भारती, हमें अब ये बताएं कि भारत में समावेशी शिक्षा की शुरुआत कब हुई?
4: सबसे पहला जिक्र विकलांग विद्यार्थियों की शिक्षा का आता है हमारे कोठारी कमीशन में, जो 1964 का जो शिक्षा आयोग है, जिसको हम कोठारी कमीशन के नाम से भी जानते हैं।
2: जी,
4: इस कमीशन में बातचीत तो की गई थी कि हमें दिव्यांगजन, विकलांगजनों को हमें शिक्षा देनी है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं किया गया था कि इनकी शिक्षा दीक्षा कैसे होगी।
2: जी,
4: क्या इन्हें सामान्य विद्यालयों में, मुख्य धारा विद्यालयों में बिठा करके पढ़ाना है, या इनके लिए अलग से कुछ हमें एक विद्यालय खोलने होंगे। लेकिन हाँ, जिक्र जरूर किया गया था। तो शुरुआत हमने किया कि ठीक है, इनके लिए हम कुछ अलग से विद्यालय बनाते हैं, वहां हम इनको पढ़ाएंगे। फिर धीरे धीरे समझ में आया कि ये विद्यार्थी भी अंततः हिस्सा तो हमारे ही समाज का बनेंगे। तो एक पहल छोटी सी ये की गई कि इन विद्यार्थियों को विशेष विद्यालयों से निकाल करके कुछ समय के लिए मुख्य धारा विद्यालयों में लाया गया, ताकि दोनों तरह के विद्यालयों के बच्चे आपस में बातचीत कर सकें और घुल मिल सकें और एक दूसरे को अजूबा न समझे। विशेष विद्यालयों में पाठ्यचर्या भी विशेष थी, शिक्षक भी विशेष थे, और बच्चे भी हमारे विशेष आवश्यकता वाले थे। तो जब ये हम मुख्य धारा में इनको कुछ समय के लिए लेके आए, तो ये हमारा एक प्रयोग कुछ आंशिक रूप से सफल हुआ।
2: जी,
4: उसके बाद धीरे धीरे हमने क्या किया, कुछ विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को हमने विद्यालय से पूर्व उनकी पूर्ति करने की कोशिश की, और फिर उन्हें मुख्य धारा विद्यालयों में प्रारंभिक कक्षाओं से समावेश करना उनका शुरू किया। इसमें भी कुछ सफलताएं मिली, कुछ विफलताएं मिली, लेकिन सफलताओं से सीख करके आगे बढ़े, और आज हम एक ऐसी स्थिति में हैं जहां हम कहते हैं कि हर बच्चे को मुख्य धारा विद्यालय में दाखिला दे। इसीलिए हम जीरो रिजेक्शन पॉलिसी अपनाते हैं कि एडमिशन में हमें सभी को दाखिला देना ही है। इसीलिए आज हमारा हर एक विद्यालय समावेशी विद्यालय है।
2: जी प्रोफेसर भारती, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया कि दिव्यांगजनों को मुख्यधारा में पढ़ाने की बात की है। जैसा कि हम सभी ये जानते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने देश की शिक्षा के पूरे परिदृश्य को बदल दिया है।
4: बिल्कुल।
2: आज हम विशेष रूप से आपसे ये जानना चाहेंगे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में समावेशी शिक्षा के मौलिक सिद्धांत क्या क्या हैं।
4: हाँ, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने हमारे शिक्षा के परिदृश्य को बहुत अच्छी तरह से परिवर्तित किया
2: जी
4: है। ठीक है, इसने मुख्य धारा की शिक्षा व्यवस्था में तो बहुत परिवर्तन किए ही हैं, साथ ही साथ जो समावेशी शिक्षा की हमारी परिकल्पना है
2: जी,
4: उसमें भी बहुत बदलाव किए हैं। जैसे अभी तक हम समझते थे कि समावेशी शिक्षा का मतलब एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था जो सिर्फ और सिर्फ दिव्यांगजन या विकलांग शिक्षार्थियों से जुड़ी हुई है या उन विद्यार्थियों से जुड़ी हुई है जो अलाभान्वित वर्गों या क्षेत्रों से आते हैं
2: जी।
4: राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने हमारी इस अवधारणा को और व्यापक और विस्तृत स्वरूप दिया है
2: जी।
4: इसने सामाजिक आर्थिक रूप से अलाभान्वित समूहों की पहचान की है, जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स। तो इसमें 5 उपसमूह आते हैं
2: जी।
4: सबसे पहला उपसमूह इसमें लिंग के आधार पर है, जिसमें हम जेंडर आधारित आवश्यकताओं को पहचानते हैं और उनकी पूर्ति विद्यालयों में कैसे की जाए इस पर सोच विचार करते हैं
2: जी।
4: दूसरा जो हमारा उपसमूह है वो ऐसा उपसमूह है जो विषम भौगोलिक परिस्थितियों से आता है या वहां से संबंधित रखता है। विषम भौगोलिक परिस्थितियां जैसे पहाड़ी क्षेत्रों से आता है, मरुभूमि से आता है या ऐसी जगहों से आता है जहां बहुत ज्यादा बारिश होती है, विद्यार्थियों को अपने विद्यालयों तक पहुंचने में अतिरिक्त कठिनाई का सामना करना पड़ता है
2: जी।
4: तो वहां पर विद्यालय कैसे सकारात्मक भूमिका निभा सकते हैं, ये हमारा दूसरा उपसमूह है
2: जी।
4: तीसरा उपसमूह हमारा सांस्कृतिक परिवेश को लेकर के है
2: जी।
4: सांस्कृतिक परिवेश कैसे, इसमें हमारे ऐसे उपसमूह में लोग आते हैं जो जनजातीय क्षेत्रों से हैं, आदिवासी क्षेत्रों से हैं या अल्पसंख्यक समूहों से संबंधित हैं
2: जी।
4: इन उपसमूहों के छात्रों को भी विशेष आवश्यकताएं हैं उनकी पाठ्यचर्या से संबंधित, उनके दिनों दिन की आवश्यकताओं और रहन सहन से संबंधित, जिनका पाठ्यचर्या से जुड़ाव होना बहुत जरूरी है, तो इन पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। इसके अलावा एक चौथा उपसमूह है जो है हमारा
2: जी।
4: आर्थिक रूप से कमजोर समूह हमें दोनों ही जगहों पे मिलता है, ग्रामीण क्षेत्रों में भी मिलता है और शहरी क्षेत्रों।

0: में भी मिलता है, तो इस पर भी विशेष रूप से ध्यान देना जरूरी है।
1: जी
0: पांचवा उपसमूह इसमें आता है जो है विकलांगताओं का या विशेष आवश्यकताओं का, जिनको हम पहले से भी पहचानते हैं।
1: जी
0: इसमें एनईपी 2020 या राष्ट्रीय शिक्षा नीति विकलांग जन अधिकार अधिनियम 2016 को पूर्ण रूप से अपना समर्थन देती है, और इस 2016 के अधिनियम में 21 तरह की विकलांगताओं या दिव्यांगताओं को पहचाना जाता है। तो हम इन पूरी 21 तरह की दिव्यांगताओं के सकारात्मक शैक्षिक समावेशन पे हम बात करते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में।
1: जी
0: इसके अलावा राष्ट्रीय शैक्षिक नीति 2020 ने जो एक बहुत महत्वपूर्ण बात उठाई है वो है भारतीय सांकेतिक भाषा।
1: जी
0: पहली बार एक सरकारी दस्तावेज में भारतीय सांकेतिक भाषा को भाषा का एक औपचारिक दर्जा दिया गया, और ये भी कहा गया कि जो भी हमारे शिक्षण अधिगम सामग्री है, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पर हो या राजकीय स्तर पर हो, दोनों ही स्तरों पर यह सामग्री सांकेतिक भाषा में भी उपलब्ध कराई जाए। तो ये बहुत दो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने समावेशी शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में हमारी दृष्टि को बहुत व्यापक किया है।
1: जी, आपने अभी सांकेतिक भाषा की बात की, तो हमारे श्रोता जरूर ये जानना चाहेंगे कि सांकेतिक भाषा क्या है और समावेशी शिक्षा में इसकी क्या भूमिका है।
0: सांकेतिक भाषा एक ऐसी भाषा जहां आप बोल करके नहीं बातचीत करते हैं,
1: जी।
0: एक ऐसी भाषा जहां आप देख करके हाव भावों से संकेतों से पहचानते
1: जी।
0: हैं। जैसे आपको प्यास लगी है लेकिन आप एक ऐसी जगह पर हैं जहां बहुत शोर शराबा हो रहा है, आप चाहे जितना मर्जी चिल्ला करके बोले क्या होगा, कोई आपकी बात नहीं समझ पाएगा। लेकिन अगर आपने पानी पीने का इशारा किया
1: जी,
0: तो जो देख रहा है वो समझ जाएगा ना कि भाई आपको पानी पीना है।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन ये तो बात हुई एक विशेष स्थिति की
1: जी।
0: आप सोचिए, आपके हमारे बीच में ऐसे लोग भी तो हैं जिनको सुनाई कम देता है
1: जी,
0: या जिनको बिल्कुल ही सुनाई नहीं देता, और ये स्थिति शायद उनकी जन्म से है
1: जी।
0: अच्छा, अब ये लोग क्या करेंगे? ऐसा तो नहीं है कि सुनाई नहीं देता तो वो बात नहीं करना चाहते, अपने विचार नहीं रखना चाहते, उनको समझ नहीं आ रहा है। तो उनके लिए जो भाषा है वो है संकेतों की भाषा
1: जी।
0: अब ये संकेत हर जगह के अलग हो सकते हैं। भारत में अगर सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो वो है भारतीय सांकेतिक भाषा
1: जी।
0: अगर आप अमेरिका में जाकर के कुछ सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो वो अमेरिकन सांकेतिक भाषा हो जाती है
1: जी।
0: दोनों भाषाओं में अंतर है, और ये अंतर उस तरीके से है जिस तरीके से आप अपने हाथों का, अपनी उंगलियों का या अपने हाव भावों का इस्तेमाल करते हैं। तो हर देश की अपनी एक सांकेतिक भाषा है, और आपको यहाँ ये जानकर आश्चर्य होगा, जैसे संज्ञा शब्द होते हैं हमारी बोलचाल की भाषा में, मौखिक भाषा में, बिल्कुल उसी तरह से उदाहरण के लिए लेते हैं गणपति का संकेत
1: जी।
0: गणपति का संकेत मंगलवार को दर्शाता है महाराष्ट्र में
1: जी,
0: ठीक है, लेकिन मंगलवार को दर्शाएगा हनुमान जी की गदा का संकेत कहां? उत्तरी भारत में।
1: बिल्कुल।
0: तो ये संकेत भी हमारे अलग अलग जगह पे अलग अलग आते हैं
1: जी।
0: तो इसीलिए भारतीय सांकेतिक भाषा की जब हम बात करते हैं तो उसमें भी उतनी ही विविधता है जितनी की किसी और मौखिक भाषा में है
1: जी। ये तो हुई हमारी सांकेतिक भाषा के बारे में जानकारी और समावेशी शिक्षा के बारे में जानकारी। तो अब हमारे श्रोता विशेष रूप से ये जानना चाहेंगे कि समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हमारी यानी CIET NCERT द्वारा क्या क्या पहलें की गई हैं।
0: जी देखो, सांकेतिक भाषा में भी हम बहुत काम कर रहे हैं
1: जी।
0: जैसा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर भी अधिगम सामग्री बनेगी, तो हमारी जितनी भी पाठ्य पुस्तकें हैं उनको हम सांकेतिक भाषा के वीडियोज में हम परिवर्तित कर रहे हैं
1: जी।
0: लेकिन इन वीडियोज में ऑडियो भी है
1: जी,
0: और इन वीडियोज में सांकेतिक भाषा तो है ही है, साथ के साथ आपकी पाठ्य पुस्तक का पेज भी है
1: जी,
0: ताकि कोई भी छात्र चाहे उसे सांकेतिक भाषा आती हो या नहीं आती हो, अपने साथी के साथ बैठ करके वो वीडियो देख सके। इसके अलावा CIET NCERT सभी पाठ्य पुस्तकों का ध्वनि रूप भी बना रही है जो बहुत सरलता से CIET की वेबसाइट पर उपलब्ध है
1: जी।
0: इसके अलावा समावेशी कक्षाओं को प्रोत्साहित करने के लिए हर रोज दोपहर 12 बजे से 12:30 बजे तक हमारा एक विशेष लाइव सत्र हर DTH चैनल पर प्रसारित होता है। इस लाइव सत्र में हम क्या करते हैं? इस लाइव सत्र में हम एक कक्षा, एक विषय, एक पाठ्य पुस्तक

0: विद्यालयों को किस तरह से अवरोध मुक्त बना सकते हैं,
1: जी
0: उसके लिए हमारे पास है प्रिया सुगम्यता योद्धा। अब ये
1: जी
0: प्रिया सुगम्यता योद्धा क्या है, ये एक छोटी सी कॉमिक बुक है जो बहुत सरलता से समझाती है कि सुगम्यता का मतलब केवल इतना ही नहीं है कि आप सीढ़ियां हटा करके रैंप बना लें।
1: जी
0: सुगम्यता का मतलब यह भी है कि आपकी जो कक्षा है उसका दरवाजा थोड़ा सा बड़ा हो,
1: जी
0: आपका जो सभागार है उसके मंच तक पहुंचने के लिए सीढ़ियों के साथ रैंप हो, व्हीलचेयर आसानी से पहुंच जाए,
1: जी
0: आपके विद्यालय में कौन सी कक्षा कहाँ है, कौन सी प्रयोगशाला कहाँ है उसका एक मानचित्र भी कहीं उपलब्ध हो,
1: जी
0: आपकी विद्यालय में टेक्टाइल पाथ हो। टेक्टाइल पाथ क्या, आपने मेट्रो में सफर तो किया ही होगा,
1: जी जी
0: जब आप मेट्रो स्टेशन पर होते हैं तो आपने देखा होगा वो पीली टाइलें।
1: बिल्कुल,
0: पीली टाइलें कैसी हैं, उनकी विशेषता यह है कि आप अपने जूते पहने हुए भी उनको महसूस कर सकते हैं,
1: जी
0: उनके उभारों को महसूस
1: बिल्कुल
0: कर सकते हैं, मतलब वो स्पर्शनीय टाइल हैं।
1: जी
0: ये स्पर्शनीय टाइल बताती हैं कि कहाँ रास्ता है, कहाँ इकट्ठा होना है हमें।
1: जी
0: तो उस तरह की टाइलें हमारे विद्यालयों की संरचना को भी बहुत सुगम्य बनाती हैं।
1: जी
0: इसके अलावा एक और बहुत महत्वपूर्ण पहल हमारी CIT NCERT की है, वो है दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 में पहचानी गई सभी 21 तरह की दिव्यांगताओं को विद्यालयी स्तर पर पहचानने के लिए एक जांच सूची बनाना,
1: जी
0: जिसको हम कहते हैं प्रशस्त। प्रशस्त हिंदुस्तान की पहली स्टैटिस्टिकली स्टैंडर्डाइज्ड मानकीकृत जांच सूची है
1: जी
0: जो 21 तरह की सभी दिव्यांगताओं को शिक्षकों, विशेष शिक्षकों की मदद से पहचानती है, और इसके लिए शिक्षकों का दिव्यांगताओं के बारे में विशेषज्ञ होना भी जरूरी नहीं है।
1: जी
0: तो ये भी एक हमारी पहल है।
1: जी प्रोफेसर भारती, अभी आपने ये जानकारी दी कि NCERT की बुक्स ऑडियो बुक्स के रूप में उपलब्ध हैं, तो ये किताबें हमें कहाँ से मिल सकती हैं?
0: ये किताबें आपको बहुत सरलता से CIET के वेब पेज से मिल सकती हैं। आप CIET के वेब पेज पे जाइए, वहां पे ऑडियो बुक्स लिखिए तो आपको वो मिल जाएंगी।
1: जी
0: और एक और सरल उपाय है,
1: जी
0: आजकल तो गूगल हम सबकी मदद के लिए है ही है, गूगल पर जाइए, लिखिए ऑडियो बुक्स CIET NCERT, आपको सीधा वहां उसी पेज पे ले जाएगा
1: जी
0: और आप वहां से ले सकते हैं।
1: जी
0: एक चीज और भी, अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये किताबों के लिए आपको कुछ शुल्क देना पड़ेगा, तो ये बिल्कुल निःशुल्क उपलब्ध हैं, और CIT वेब पेज के साथ साथ आपको ये दीक्षा पर भी आराम से मिल सकती हैं।
1: जी
0: और यह किताबें आपको NCERT ऑफिशियल YouTube चैनल पर भी आपको मिल जाएंगी। तो सरलता से आप हमारी ऑडियो बुक्स को CIT की वेबसाइट से, NCERT ऑफिशियल YouTube से, और साथ ही साथ दीक्षा से बिल्कुल निशुल्क, बिना किसी शुल्क के प्राप्त कर सकते हैं।
1: जी आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी। अब मेरा अगला प्रश्न ये है कि समावेशी शिक्षा की प्रक्रिया में आदिवासी समूहों और समाज के अन्य पिछड़े समूहों को भी शामिल करने की दिशा में NCERT की क्या पहल है?
0: बिल्कुल, आदिवासी जाति या अन्य पिछड़े समूहों को शिक्षा से जोड़ने के लिए NCERT की पहलों में सबसे मुख्य जो है वो यह है कि हमारी जो पाठ्य पुस्तकें हैं,
1: जी
0: अगर आप ध्यान से देखें तो वो पाठ्य पुस्तकें पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करती हैं।
1: जी
0: उनकी कहानियां, उनके पाठों की विषय वस्तु जनजाति समूहों, हमारे आदिवासी समूहों और अन्य पिछड़े वर्गों के परिवेश को भी दर्शाती हैं।
1: जी
0: जिससे ये पाठ्य पुस्तकें हर बच्चे को अपनी सी लगती हैं, उससे उनमें कोई अलगाव की भावना विकसित नहीं होती
1: जी
0: है। तो सबसे बड़ी बात तो यही है, और जब आप पाठ्य पुस्तकों से जुड़ते हैं तो फिर आप अपने विद्यालयों से भी जुड़ते हैं।
1: जी
0: ये पहल हमारी यहाँ से शुरू होती है, लेकिन अंत यहाँ पर नहीं है।
1: जी बिल्कुल। तो अब आज का अंतिम प्रश्न, ये भी प्रश्न मेरा दिव्यांगों से ही जुड़ा हुआ है। मेरा प्रश्न है, दिव्यांगों के लिए शिक्षा सुनिश्चित करने हेतु क्या कुछ विशेष प्रयास किए जा रहे हैं?
0: दिव्यांगों की शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए, जैसा हमने बीच में भी बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने तो बहुत सारे प्रावधानों की बात की है। उसके दो प्रावधानों पर हमने चर्चा की कि सामाजिक आर्थिक रूप से अलाभान्वित समूह कौन से हैं, उसमें कौन से बच्चे आते हैं, और भारतीय सांकेतिक भाषा की। इसके अलावा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कहती है कि प्रत्येक बच्चे की भागीदारी और उसको अपनापन या जुड़ाव महसूस हो, इस पर बहुत ज्यादा काम करना

0: जरूरी है। दूसरा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति ये भी कहती है कि व्यक्तिगत सहयोग और समर्थन दिया जाए प्रत्येक बच्चों को, तभी हम समतामूलक शिक्षा की बात करते हैं समावेशी कक्षाओं या शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत। तीसरी चीज, राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहती है कि आपको तकनीक और सहायक उपकरणों का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। इसका अर्थ यह भी है बहुत सरल से शब्दों में कि आप दीक्षा प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कीजिए, आप ध्वनि पुस्तकों का इस्तेमाल कीजिए। साथ ही साथ अगर कोई बच्चा आकर के शिक्षक को कहता है कि जी मुझे आज की कक्षा रिकॉर्ड करनी है क्योंकि मैं सही से लिख नहीं पाता हूँ या समझ नहीं पाता हूँ या ज्यादा देर तक याद नहीं रख पाता हूँ, तो शिक्षकों को डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि यह भी समावेशी कक्षा प्रणाली का ही एक भाग है और सहायक उपकरणों का प्रयोग है। एक और चीज भी है इसी कड़ी में जुड़ता है, शिक्षकों का संवेदीकरण और उनकी तैयारी। मतलब शिक्षकों को आपको सेंसिटाइज करना भी जरूरी है विशेष आवश्यकताओं के प्रति, ताकि वो अपनी कक्षाओं को समतामूलक और समावेशी कक्षाओं में परिवर्तित कर सके।
1: जी,
0: यह काम लेकिन सिर्फ और सिर्फ शिक्षा, शिक्षक और विद्यालय नहीं कर पाएगा। इस काम के लिए आपको परिवार और समुदाय का सहयोग भी लेना होगा। जब परिवार और समुदाय शिक्षा व्यवस्था प्रणाली से जुड़ते हैं तभी तो विद्यार्थियों का समग्र विकास हो पाएगा। तो बहुत सारी चीजें हम एक साथ शुरू कर रहे हैं।
1: जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर भारती इस उपयोगी जानकारी के लिए। इस आशा के साथ कि देश की शिक्षा व्यवस्था में समावेशी शिक्षा का भविष्य दिन प्रतिदिन उज्जवल होता जाएगा, हम आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। आप हमारे श्रोताओं को कोई विशेष संदेश देना चाहेंगी?
0: मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि आप विशेष आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील रहिए, ये आपके और हमारे आसपास ही हैं। कई बार हम इन्हें देख करके भी अनदेखा कर देते हैं, तो ऐसा ना करें। याद रखिए, बूंद बूंद से ही सागर भरता है।
1: आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: नमस्कार।
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम श्रोता संवाद। हमें इस कार्यक्रम पर आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा।

0: तो हमारा आज का प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है, इसलिए मुझे यानी अजीत को
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: आपने सुना प्रायोजित कार्यक्रम।

0: आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। एक बजने वाला है, कुछ ही पलों के बाद आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। इसके बाद 1:05 पर प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से। फिलहाल हिंदी समाचारों का वक्त है, तो चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन के बीच नई दिल्ली में द्विपक्षीय बैठक हो रही है। दोनों नेताओं के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और सुदृढ़ करने के लिए ये चर्चा हो रही है। म्यांमार और भारत के बीच सुरक्षा और संपर्क सहित दोनों देशों के संबंधों के सभी पहलुओं पर बातचीत की संभावना है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि म्यांमार के राष्ट्रपति का काफी व्यस्त कार्यक्रम है।
2: म्यांमार के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। सांस्कृतिक परिसर में आयोजित लाइट एंड द लोटस रेलिक्स ऑफ द अवेकेंड वन प्रदर्शनी का भी दौरा करेंगे। इस प्रदर्शनी में भगवान बुद्ध से संबंधित पिप्रहवा पवित्र अवशेषों तथा उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण प्राचीन धरोहरों का प्रदर्शन किया जा रहा है। म्यांमार भारत की नेबरहुड फर्स्ट एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों के संगम पर स्थित है। म्यांमार के राष्ट्रपति की भारत की यह आधिकारिक यात्रा से दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंधों को और गहराई मिलेगी तथा दोनों देशों के बीच साझेदारी के नए अवसर खुलने की आशा है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के लोकभवन में आयोजित समारोह में 35 नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। समारोह में मुख्यमंत्री और अन्य वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। नवनियुक्त मंत्रियों को विभाग बाद में आवंटित किए जाएंगे। 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के द्विवार्षिक चुनाव के लिए अधिसूचना आज जारी कर दी गई है। इस चुनाव के अंतर्गत आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4 सीट, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3-3 सीट, झारखंड में 2 सीट और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम में 1-1 सीट पर मतदान होगा। नामांकन 8 जून तक दाखिल किए जा सकते हैं। 18 जून को मतदान होगा। मतगणना भी उसी दिन होगी। सर्वोच्च न्यायालय में 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है। इसके साथ ही मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की कुल संख्या 37 हो गई है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि राष्ट्रपति ने मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद सर्वोच्च न्यायालय में 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के 6 वर्ष पूरे हो गए हैं। पिछले 6 वर्षों में इस योजना से लाखों रेहड़ी पटरी वालों को आसान ऋण मिला है। इसके माध्यम से अब तक 1,12,00,000 से अधिक ऋण वितरित किए गए हैं। शहरों और कस्बों में इस पहल के माध्यम से 75,00,000 से अधिक लोग लाभान्वित हुए। योजना के अंतर्गत अब तक 17,800 करोड़ रुपये से अधिक के ऋण प्रदान किए गए हैं। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA आज से लागू हो गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि ये समझौता दोनों देशों के आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को और मजबूत करेगा। होटल, रेस्तरां और अन्य व्यवसायों द्वारा उपयोग किए जाने वाले 19 किलोग्राम के व्यावसायिक LPG सिलेंडर की कीमतों में 4 प्रमुख शहरों में 42 रुपये से लेकर 53 रुपये 50 पैसे तक की वृद्धि की गई है। घरेलू उपयोग में आने वाली गैस की दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT रुड़की ने JEE एडवांस्ड परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। कुल 56,880 उम्मीदवार परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं। इनमें से 10,107 छात्राएं हैं। मलेशिया ने 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट पर रोक लगाने वाले नियमों को आज से लागू कर दिया है। इसके अंतर्गत कम से कम 80 लाख उपयोगकर्ताओं वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को आयु सत्यापन प्रणाली लागू करनी होगी। बॉम्बे एक्सचेंज का संवेदी सूचकांक दोपहर तक 84 अंक गिरकर 74,692 पर और निफ्टी 32 अंक गिरकर 23,516 पर आ गया। बिजली, पूंजीगत वस्तुएं, उपयोगिता और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के शेयरों में भी भारी गिरावट देखी गई। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर लगातार दूसरी बार आईपीएल का खिताब जीता। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 155 रन बनाए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Prime Minister Narendra Modi and Myanmar President U May Aung Hlaing are holding bilateral talks in New Delhi.
4: सुनिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज गुरुग्राम के लेजर वैली पार्क में राज्य पुलिस के लिए 312 इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल्स ईआरवी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इन वाहनों में 310 मोटरसाइकिल और 2 गाड़ियां शामिल हैं, जिन्हें होंडा इंडिया फाउंडेशन ने कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत करीब 5 करोड़ रूपये की लागत से उपलब्ध कराया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पहल प्रदेश में जन सुरक्षा को और मजबूत बनाने के साथ साथ आपात स्थिति में लोगों तक शीघ्र सहायता पहुंचाने में अहम भूमिका निभाएगी।
5: जब भी कोई महिला संकट में होगी ईवीआर पहले पहुंचेगी। जब किसी नागरिक को तत्काल सहायता की आवश्यकता होगी तो ईवीआर सबसे पहले पहुंचेगी। हमने इसको 112 से जोड़ा है। हमारी 112 की गाड़ी है, तुरंत पहुंचती है। कई स्थान ऐसे हैं वो गाड़ी वहां नहीं पहुंच पाती थी, तो अब वहां पर ये ईवीआर समयबद्ध तरीके पर उनके पास पहुंचेगी और उनको एक सुरक्षा देने का काम करेगी।
4: मुख्यमंत्री ने कहा कि नई ईआरवी के माध्यम से पुलिस की पहुंच बढ़ेगी। उन्होंने बताया कि गुरुग्राम को 60 मोटरसाइकिल और 1 गाड़ी, फरीदाबाद को 40 मोटरसाइकिलें और 1 गाड़ी उपलब्ध करवाई गई है। इसके अतिरिक्त प्रदेश के अन्य जिलों को 210 मोटरसाइकिल दी गई हैं। इन वाहनों को विभिन्न संवेदनशील और प्रमुख क्षेत्रों में तैनात किया जाएगा, ताकि आवश्यकता पड़ने पर पुलिस सहायता कम से कम समय में उपलब्ध हो सके। मुख्यमंत्री ने हरियाणा पुलिस की सराहना करते हुए कहा कि देश में पुलिस का औसत प्रतिक्रिया समय लगभग 18 मिनट है, जबकि हरियाणा पुलिस ने इसे घटाकर मात्र 7 मिनट 3 सेकंड तक पहुंचा दिया है। यह उपलब्धि पुलिस विभाग की प्रतिबद्धता, बेहतर प्रबंधन और आधुनिक कार्यप्रणाली का परिणाम है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुग्राम के सेक्टर 29 स्थित महाराणा प्रताप स्वर्ण जयंती पार्क में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 के उपलक्ष्य में आयोजित राज्यव्यापी योग अभ्यास अभियान का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा सरकार ने इस वर्ष 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को भव्य और व्यापक स्तर पर मनाने का निर्णय लिया है। आज से 21 जून तक हर स्तर पर योग अभ्यास शिविर आयोजित किए जाएंगे।
5: बड़े स्तर के ऊपर योग को मनाने के लिए इस पखवाड़े में हर जिला, ब्लॉक, पंचायत, गांव, वार्ड, हर स्तर के ऊपर योग को हर रोज अपने जीवन का दैनिक हिस्सा बनाएंगे। योग की जो थीम रखी गई है वो वृद्धावस्था से योग, और हमने हरियाणा के अंदर योग युक्त हरियाणा, नशा मुक्त हरियाणा थीम रखी है। युवाओं में योग के साथ जुड़ करके एक नई ऊर्जा का संचार, शरीर में स्फूर्ति आती है और शरीर ज्यादा काम करने के लिए तैयार होता है।
4: मुख्यमंत्री ने कहा कि योग किसी धर्म या संप्रदाय से जुड़ा विषय नहीं, बल्कि भारत की महान सांस्कृतिक विरासत है, जिसने हजारों वर्षों से मानवता को संतुलित, स्वस्थ और आध्यात्मिक जीवन की राह दिखाई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने योग को विश्व पटल पर स्थापित किया और आज पूरी दुनिया इसे अपना रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि खेलेगा भारत तो खिलेगा भारत, और योग की डोज आधा घंटा रोज जैसे संदेश आज के समय की आवश्यकता है। योग को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाकर हम स्वस्थ, ऊर्जावान और सकारात्मक जीवन जी सकते हैं। उन्होंने युवाओं से विशेष रूप से योग को अपनाने और नशे से दूर रहने का आह्वान भी किया। कुरुक्षेत्र के लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल में नाबालिग से कथित यौन उत्पीड़न मामले के आरोपी कंसल्टेंट डॉक्टर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसे निशानदेही के लिए लेकर अस्पताल लाया गया। कंसल्टेंट डॉक्टर पर आरोप है कि इसी डॉक्टर ने पहले नाबालिग को अस्पताल में दाखिल किया और उसके साथ अपने ओपीडी के कमरे में कई बार दुष्कर्म किया। हमारी संवाददाता संगीता ने बताया है कि रिपोर्ट में अस्पताल की गायनोकोलॉजिस्ट की ओर से कई बार यौन उत्पीड़न की पुष्टि की गई है। संवाददाता के अनुसार आरोपी डॉक्टर प्राथमिक चिकित्सा अधिकारी के पद से सेवामुक्त है और फिलहाल अस्पताल में कंसल्टेंट फिजिशियन के तौर पर सेवाएं दे रहे हैं। वो पहले भी महिला से दुष्कर्म के मामले में जेल जा चुके हैं। पलवल में कल लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर की 301वीं जयंती मनाई गई। समारोह में कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल एवं खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने शिरकत की। समारोह के दौरान हुड्डा सेक्टर 2 से लेकर इंडोर स्टेडियम तक विशाल शोभा यात्रा भी निकाली गई। इसी के साथ ही प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।
0: ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। आइए सुनते हैं फिल्मी गाने।

ऊंचे लोग फिल्म का ये गीत आपने सुना, सलमा आगा, किशोर कुमार और साथियों की आवाज़ें थीं। अनजान के बोल थे, संगीत था राहुल देव बर्मन का। अगला गीत आइए सुनते हैं बेमिसाल फिल्म से, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ें आप सुनेंगे। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीत आर डी बर्मन का।

बेमिसाल फिल्म का ये बेमिसाल गीत आपने सुना। लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ें थीं, आनंद बख्शी के बोल थे, संगीत था आरडी बर्मन का। अगला गीत सुनाते हैं आपको पति पत्नी और वो फिल्म से, सलमा आगा और मोहम्मद अजीज़ की आवाज़ें आप सुनेंगे। आनंद बख्शी के बोल हैं, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

पति पत्नी और तवायफ़ फिल्म का गीत आपने सुना, सलमा आगा और मोहम्मद अजीज़ की आवाज़ें थी, आनंद बख्शी के बोल थे, संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। गीत से पहले थोड़ा सा व्यवधान आया था, छोटा सा, जिसके लिए हमें खेद है। बढ़ते हैं आगे और आपको सुनवाते हैं पलकों की छाँव में फिल्म का गीत। किशोर कुमार की आवाज़, वंदना शास्त्री की भी थोड़ी थोड़ी आवाज़ आप इस गीत में सुनेंगे। गुलजार के बोल हैं, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

पलकों की छाँव में। इस फिल्म का यह गीत आपने किशोर कुमार की आवाज़ में सुना और थोड़ी सी आवाज़ वंदना शास्त्री की थी। गुलजार के बोल थे, संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। फिल्मी गाने आप तक पहुंच रहे हैं आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से। अगला गीत हमने आपके लिए चुना है मौसम फिल्म से। लता मंगेशकर और भूपेंद्र सिंह की आवाज़ें आप सुनेंगे। बोल गुलजार के हैं, संगीत है मदन मोहन का।

लता मंगेशकर और भूपेंद्र सिंह की आवाज़ों में मौसम फिल्म का ये गीत था। गुलजार ने रचा था, संगीतबद्ध किया था मदन मोहन ने। अगला गीत आइए सुनते हैं अखियों के झरोखों से। इस फिल्म से हेमलता की आवाज़ है, गीतकार संगीतकार हैं रविंद्र जैन।

ये था आँखियों के झरोखों से फिल्म का गीत, हेमलता की आवाज़ थी। गीतकार संगीतकार थे रविंद्र जैन। श्रोताओं, इसी कार्यक्रम के दौरान हमने बेमिसाल फिल्म का गीत आपको सुनवाया था। बेमिसाल फिल्म का गीत जो गाया था वो लता मंगेशकर, किशोर कुमार और सुरेश वाडकर ने था। आनंद बख्शी के बोल थे, संगीत था आरडी बर्मन का। ये शुद्धि हमें इसलिए करनी पड़ी कि अभी कुछ पल पहले ही हमें ये ध्यान दिलवाया गया है, हमने अपडेट भी कर दिया है अपने डेटाबेस में, और गलती हुई इसके लिए हम खेद प्रकट करते हैं और खुशी इस बात की है कि हम इसी कार्यक्रम के दौरान इसे ठीक कर पाए। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, लव मैरिज फिल्म का गीत आपको सुनवाते हैं। शब्बीर कुमार और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ें आप सुनेंगे। हसरत जयपुरी के बोल हैं, अनु मलिक का संगीत है, फिल्म का नाम है लव मैरिज।

अनुराधा पौडवाल और शब्बीर कुमार की आवाज़ों में था ये लव मैरिज फिल्म का गीत। हसरत जयपुरी के बोल थे, संगीत था अन्नू मलिक का। और अब कार्यक्रम का आखिरी गाना लावा फिल्म से हम आपको सुनवाएंगे। आशा भोसले और मनमोहन सिंह की आवाज़ें हैं, आनंद बख्शी के बोल हैं, संगीत है आर डी बर्मन का।

0: संग्रह पिछले महीने 3.2% बढ़कर 1,94,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया। पिछले वर्ष मई में ये 1,88,000 करोड़ रुपए था। पिछले महीने केंद्रीय जीएसटी का सकल संग्रह 37,397 करोड़, राज्य जीएसटी का 45,143 करोड़ और एकीकृत जीएसटी का 51,990 करोड़ रुपए रहा। इस अवधि के दौरान वस्तुओं की कर योग्य आपूर्ति में 26.9% की वृद्धि हुई। सेवा क्षेत्र में इसमें 22.2% की बढ़त दर्ज की गई। जीएसटी रिफंड में 2.6% की वृद्धि हुई और यह आंकड़ा 27,281 करोड़ रुपए रहा। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के 6 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना की सराहना करते हुए कहा कि पीएम स्वनिधि ने बिना गारंटी के ऋण, वित्तीय समावेशन और विकास के नए अवसर खोलकर लाखों रेहड़ी पटरी वालों के जीवन स्तर में सुधार किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये योजना विश्वास, सम्मान और सशक्तिकरण पर आधारित है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वर्ष 2020 में योजना शुरू होने के बाद से अब तक 1,12,00,000 से अधिक ऋण दिए गए हैं।
1: देश के लाखों रेहड़ी पटरी वालों को पिछले 6 साल से पीएम स्वनिधि स्कीम के जरिए आसानी से कर्ज मिल रहा है। इससे उनके लिए अस्थायी आजीविका सुनिश्चित हो पाई है। इस योजना के तहत बिना किसी गारंटी के 3 चरणों में क्रमशः 15,000, 25,000 और 50,000 रुपए तक के कर्ज उपलब्ध कराए जाते हैं। इन कर्जों पर ब्याज सब्सिडी तथा ऋण गारंटी सहायता भी प्रदान की जाती है। इस पहल से देश भर के शहरों और कस्बों में 75,00,000 से अधिक लाभार्थियों को फायदा हुआ है। पीएम स्वनिधि योजना के तहत अब तक 17,800 करोड़ रुपए से अधिक के कर्ज वितरित किए जा चुके हैं। इसके अलावा 55,00,000 से अधिक लाभार्थियों को इस स्कीम से डिजिटल रूप से जोड़ा गया है। सुपर्णा सैकिया के साथ अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के रामसिया गांव से राष्ट्रव्यापी खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये अभियान 1 महीने तक चलेगा।
2: 1 महीने तक चलने वाला यह अभियान देश की कृषि भूमि को बचाने और किसानों को वैज्ञानिक खेती के लिए जागरूक करने की दिशा में एक बड़ी पहल है। कार्यक्रम में किसानों को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा,
3: ये खेत बचाओ कार्यक्रम इसलिए कि हमारी माटी बर्बाद ना हो जाए, हमारे खेत बर्बाद ना हो जाए। धरती कहे पुकार के इतना खाद मत डालो, इतना कीटनाशक मत डालो।
2: इस अभियान में कृषि विश्वविद्यालय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि विज्ञान केंद्र और जनप्रतिनिधि मिलकर भाग रहे हैं। अभियान के तहत किसानों को मिट्टी परीक्षण, सोइल हेल्थ कार्ड, प्राकृतिक खेती, संतुलित उर्वरक उपयोग और जल संरक्षण जैसे विषयों पर जानकारी दी जाएगी। अभियान के दौरान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, फसल बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड जैसी सरकारी योजनाओं का लाभ भी किसानों तक पहुँचाया जाएगा। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
0: सर्वोच्च न्यायालय में 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है। इसके साथ ही मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की कुल संख्या 37 हो गई है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रपति ने मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद सर्वोच्च न्यायालय में 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की।
4: विधि मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति शील नागू, बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री चंद्रशेखर, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरुण पल्ली को पदोन्नत किया गया है। वरिष्ठ अधिवक्ता वेंकिता सुब्रमणि मोहना को भी सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। केंद्र सरकार ने पिछले महीने एक अध्यादेश जारी कर कानून में संशोधन किया था। इसके अंतर्गत मुख्य न्यायाधीश के अलावा सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 33 से बढ़कर 37 कर दी गई थी। अंकित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
0: होटल, रेस्तरां और अन्य व्यवसायों द्वारा उपयोग किए जाने वाले 19 किलोग्राम के वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में देश भर में वृद्धि की गई है। हालांकि घरों में उपयोग होने वाली घरेलू खाना पकाने की गैस की दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। दिल्ली में व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 42 रुपये की वृद्धि हुई है और अब इसकी कीमत 3,113 रुपये 50 पैसे होगी। मुंबई में 43.50 रुपए की वृद्धि के साथ नई कीमत 3,067.50 रुपए होगी। कोलकाता में 53.50 रुपए की वृद्धि के साथ व्यावसायिक सिलेंडर की कीमत अब 3,255.50 रुपए होगी। चेन्नई में कीमतों में 42 रुपए की वृद्धि हुई है और अब नई कीमत 3,283 रुपए होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ईरान ने अमेरिका के एक ड्रोन को मार गिराया है। अमेरिका के ईरान में रडार और ड्रोन नियंत्रण स्थलों पर हमले के बाद पश्चिम एशिया में तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। ईरान ने जवाबी हमले की बात स्वीकार की, जबकि कुवैत ने कहा कि वो आने वाले ड्रोन और मिसाइल हमलों को रोक रहा है। कुवैत की सेना ने कहा है कि उसकी वायु रक्षा प्रणाली मिसाइल और ड्रोन हमलों का सामना कर रही है। इसराइल द्वारा लिटानी नदी के पार लेबनान पर अपना कब्जा बढ़ाने के कारण तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। एक रिपोर्ट।
5: सैन्य टकरावों के बीच राजनयिक बातचीत जारी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वे ईरान के साथ एक अच्छे समझौते के करीब हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्जी ने पुष्टि की है कि दोनों पक्षों के बीच बातचीत जारी है, लेकिन उन्होंने स्पष्ट किया कि औपचारिक रूप से समझौता होने तक किसी भी निर्णय को अंतिम नहीं माना जा सकता। दूसरी ओर लेबनान पर इसराइल के बढ़ते जमीनी हमलों की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कड़ी आलोचना हो रही है। फ्रांस ने स्थिति पर विचार करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपातकालीन बैठक बुलाने का अनुरोध किया है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा मंत्रियों की दूसरी संवाद बैठक नई दिल्ली में हो रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री तथा रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स बैठक की सह अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक के दौरान श्री सिंह ने कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रक्षा संबंध काफी मजबूत हुए हैं।
6: मैं आपकी सरकार को 2026 की राष्ट्रीय रक्षा रणनीति और एकीकृत निवेश कार्यक्रम की पहल के लिए बधाई देना चाहता हूं। चर्चा के दौरान मैं इन नीतिगत दस्तावेजों और भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा संबंधों में विकास के संभावित अवसरों पर आपके विचारों को सुनने के लिए उत्सुक हूं।
0: श्री माल्स ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया और भारत ने अपनी रक्षा साझेदारी को और मजबूत किया है और दोनों पक्ष समुद्री क्षेत्र में मिलकर काम कर रहे हैं। वार्ता में द्विपक्षीय रक्षा सहयोग में हुई प्रगति की समीक्षा और सहयोग के नए रास्ते तलाशे जाएंगे। म्यांमा के नामकाम शहर में भीषण विस्फोट में 55 लोगों की मौत हो गई है। कल हुए इस विस्फोट में 70 से अधिक लोग घायल हुए हैं। ये घटना खनन के लिए रखे गए सामान में हुए विस्फोट के कारण हुई। स्थानीय अधिकारी प्रभावित निवासियों को राहत, चिकित्सा देखभाल और पुनर्वास सहायता प्रदान कर रहे हैं। स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार विस्फोट में 100 से अधिक घर क्षतिग्रस्त हुए हैं। मलेशिया ने 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट पर रोक लगाने वाले नियमों को आज से लागू कर दिया है। इसके अंतर्गत कम से कम 80 लाख उपयोगकर्ताओं वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को आयु सत्यापन प्रणाली लागू करनी होगी। नियमों का पालन न करने वाली कंपनियों पर 100 लाख रिंगिट तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। सरकार ने कहा कि इन उपायों का उद्देश्य बच्चों को हानिकारक सामग्री, साइबर बुलिंग और जैसी चीजों से बचाना है। ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील और इंडोनेशिया सहित अन्य देशों ने भी बच्चों के सोशल मीडिया तक पहुंच पर आयु आधारित प्रतिबंधों की घोषणा की है। हांगकांग में 22वीं एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने 10 स्वर्ण, 5 रजत और 4 कांस्य सहित 19 पदक जीते हैं। पदक तालिका में भारत दूसरे स्थान पर रहा। घरेलू मोगली वेंकटराम ने कल पुरुषों की 800 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को बधाई दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउलाइन ने नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता लागू। भारतीय निर्यातकों को ओमान में 98% उत्पाद समूहों पर शुल्क मुक्त बाजार पहुँच मिलेगी। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। 35 नए मंत्रियों ने ली शपथ। पीएम स्वनिधि योजना के 6 साल पूरे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा योजना ने रेहड़ी पटरी वालों के लिए विकास के नए अवसर खोले हैं। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम खेत खलिहान।

0: वो भी ऐप से। वाह,
1: अनजान ऐप से बचें।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: कार्यक्रम सुनने वाले सारे वन भाइयों ने अशोक भाई की राम राम। भाइयों, गर्मी खूब तेज पड़न लग रही है और ईव हमें अपना एक तो न्यू मान के चला कि वह ठाली हो रहा फरी हो रहा, काम हमारी शुरुआत होगी जिस तरह ये दाना ही प्योद का है भाई, आज तो शुरुआत होगी उसकी प्योद बिजाई करने की। साथ में एक चीज़ और थी भैया ने ये कर रखा, अगर जमाने कुछ रह रहे भाई तो अपना कर लें, बताया भाई गहरी जुताई जरूर करवा लें अपने खेतों की, अच्छी गहरी जुताई करने तर जो ये लू लग गई लू तो ये बताया तो जो सूत्र कर्मी है अब तो बताया बार बार कि भाई इसका खात्मा सिर्फ इस गर्मी के कारण उसका गहरी जुताई के कारण उसके वैसे नहीं होता इसका। और फिर ये बता दें कि भाई जिस तरह ये अपना है मिट्टी पानी की जांच करवाई जा सके इसका सही है, कुछ भैया ले चलो करवा ले और जब कुछ रह रहे तो जल्दी जल्दी उसमें करवा ले। वो बताया वो जगह थी कि भाई एक तो इसके डोड़ा सारा ना ले कितने पाड़ उसके सारा ना ले किसी पेड़ के नीचे तो ना ले, और जिस खेत में हमने गोबर की कुंडी की खाद डाल रखी हो उसमें का ना करें, क्योंकि जो गोबर की गली छड़ी खाद है या देसी खाद है इससे लगभग सारे के सारे पोषक तत्व तो पूरे हो जाए उसमें पता नहीं चल रहे, तो उस आधार पर अपना कर लें। और भाई सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमने जो देसी खादों के ऊपर जोर देना पड़े, ज़्यादा से ज़्यादा देसी खादों का प्रयोग करना पड़ा तभी जाकर बात बढ़ेगी, जो हमारी ज़मीन की सेहत है वह सुधर जाएगी। अगर जो हमें यूं ही लगते रहे रासायनिक खादों की तरफ चलते रहे बार बार अपना उत्पादन बढ़ाने के लिए तो एक दिन यह ज़मीन जवाब दे जाएगी, कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि कितने दिन तक उसका सारा चला होगा उसको। ये देसी खाद देना ज़रूरी है, चाहे हरी खाद है जैविक खाद है केचुआ खाद है जितने भी हो सके अपने उसमें उनको देसी खाद देना जरूरी है, रासायनिक खादों से कुछ भी हो नहीं। एक बार हो जाएगा अर्चू कुछ दिन तक, अब देखो हम कितने दिन से लग रहे हैं और कुछ दिन और चल रहे हैं, फिर उसके बाद ये जवाब दी जाएगी और जवाब देने के बाद में फिर हमें मुश्किल हो जाएगी, जो पुरानी स्थिति में है हमें आयात करार देना आज उसी स्थिति में आ जाना, तो उन चीज़ों से हमने बचना है। और ये किसान भाइयों खुद का फर्ज बनता है कि वह अपनी ज़मीन की सुरक्षा करनी और सदियों तक आगे तक ये चलती रहे अपनी पीढ़ियों के लिए, तो उसको सुरक्षित रखना है। और सुरक्षित किस तरह रहेगी, उसकी सेहत संवारेंगे उसका स्वास्थ्य संवारेंगे और उसने हर तरह का पोषक तत्व देंगे। एक ये ज़मीन ज़मीन नहीं है भाई, इसमें हमें इसकी सेहत संवारनी इसको बचाए रखना भी हमारा फर्ज बनता है। तो इसमें जिस तरह बताया था कि वह अपना एक तो देसी खादा प्रयोग करो, ज़्यादा से ज़्यादा देसी खादा प्रयोग करें, बल्कि देखो अबे साथ के साथ है कि भाई कि भाई जोत कम होगी, जोत कम होगी तो क्या हुआ तो भाई खाद डालने में तो और भी ज़्यादा हो जाएगा, जल्दी जल्दी डाल सकें सारे भाई डाल सकें उसमें। हाँ यूँ ज़रूर ध्यान रखें कि भाई जो गोबर की खाद है ना अच्छी गड़ा सड़ाकर तभी जाकर उसमें डालें, पक रही हो उसी टाइम, कच्ची खाद का कोई फ़ायदा नहीं, उससे दीमक होगी ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। साथ में कई भैया ने तो कर भी रखा और लगा भी रखे जो ये हरी खाद है इस तरह ये बता दा ढेचा है शनी है या मूंग है, ऐसा कि मूंग की बजाई कर रखी हुई वो हमें, और साथ में जो केचुआ खाद है उसका भी है। फिर हम बिजाई करा हाँ भाई उस टाइम पर हमने ये ध्यान रखना है कि वह जो जैविक खाद है जैविक खादों का प्रयोग करें। देखो हरी खाद देसी खाद की जिस तरह बताऊँ सारे के सारे पोषक तत्व उसमें आ जाए, और जो हरी खाद है हरी खाद तो भी एक अलग जो हमारी फसल है उसमें चमक आ जाए, और जो रासायनिक खाद हैं आगे हमने वो कम देने पड़े फिर यूं ही केचुआ खाद में और यूं ही जैविक खादों में, और जिस तरह फसल अवशेष है वो भी अगर हम ज़मीन में अपनी में मिला दें हाँ तो उसका भी बहुत ज़्यादा फायदा है। यानी हर तरह से जो रासायनिक खाद है उनको छोड़कर दूसरी चीज़ें हम ज़मीन के साथ जो परम्परागत तरीके तारे वो करा उसमें मिलावा हाँ तो ज़मीन की सेहत सुधर है और वो हमने ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन देगी और सदियों तक चलती रहेगी। एक न्यू मान के नहीं चलना क्यों ज़मीन है कोई बात नहीं भैया तो हो जाएगी करती रहेगी पैदावार देती रहेगी, ना ऐसा नहीं है। तो इसमें हमने गोबर की गली छड़ी खाद और हरी खाद केचुआ खाद और जैविक खादों का प्रयोग हमने करना चाहिए। और आज का भाई हमारा विषय भी ये है जैविक खादों का महत्व। जैविक खाद क्यों, एक तो ये है भाई जो वायुमंडल में है ना कि बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन है, उसने नाइट्रोजन ने अपना उसमें पौधे जड़ा मिला कर ये छोड़ दें जवान, इनकी ये खासियत है और ये हमें बहुत ज़्यादा इसमें फ़ायदा दे दे। राइजोबियम है राइजो टीका है और बायोटिका, ये दो तरीके के हैं, दो टीके हैं और ये अलग अलग फसलों के लिए हैं। जिस तरह राइजोबियम का टीका, ये तो दलहनी फसलों के लिए है, और एजो टीका है ये अपनी जो जैसे गेहूँ, जौ, ज्वार, बाजरा, मक्का, धान, इनके लिए है। तो आज इस बारे में पूरे विस्तार से बात करा, लेकिन उससे पहले आपने रागनी सुनवा दिया, गायक कलाकार रहेंगे धर्मेंद्र कतलूपुरिया और उनके साथी।

एक फोटो में है बरमा जी, एक फोटो में है बरमा जी, है सृष्टि का करते विस्तारे, और एक फोटो में है लक्ष्मी माता, है विष्णु जी की पाटन हार, और एक फोटो

देख्या एक फोटू में ठाके देख्या रावण था अहंकारी और एक फोटू में रामचंद्र जी संग में सीता प्यारी फिर एक फोटू में राज तलक के भरत ने ठोकर थी मारी और एक

और एक फोटू में है मदनावत को होतियार देवता है देवरदान है। एक फोटू में है हरिचंद।

एक फोटू में कैरसन छलिया उसे कंस को कुर्मी को मार रहा। एक फोटू में है भगत सुदामा भूखा वर्ण वेचा।

भैया नहीं, ये तो रागनी सुनी, गायक कलाकार थे धर्मेंद्र कतलूपुरी और उनके साथी, और जिक्र कर रहे थे जैविक खादों का महत्व। भाइयों इसमें जैविक खाद हम दो तरह बताए थे, एक तो दाल वाले हैं और एक बिना दाल वाले यानी खाद्य फसलों के लिए। दाल वालों के लिए राइजो टिक्का है या राइजो बीम का नाम तो जाना इसने। इसमें एक खासियत ये रहेगी भाइयों इनकी कि वह जो इस फसल के लिए हमने लेना है उससे फसल का उस पर टिक्का पर लिखा पाओगे, और उससे फसल पर हमने लगाना। जैसे मूंग का है वो अलग टिक्का, उड़द का है वो अलग टिक्का, और वो उससे में लगाना है। ये नहीं करना कि वह दाल वाला तो दाल वाला ही लगा लें, और तिलन में लग गया है यूरिया जो भी का टिक्का, मूंगफली है, सोयाबीन है, और चारा फसलों में भी जैसे गवार है, बरसीम और रिचका, ये तो इसमें राइजो टिक्का। और फिर बात है भाइयों इसमें एजो टिक्का है ये जो खाद्य फसलें अपने उसमें लाग गए ज़्यादातर, जैसे गेहूं है, जौ है, ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, धान है, और नकदी फसलों में भी लाग गए हैं कपास है, गन्ना है और जूट है। तिलनी फसलों में भी लाग गए, सरसों और सूरजमुखी में भी इनमें लाग गए। तो एक इनके बाद और है भाइयों जो फास्फो टिक्का है, यू भी बहुत वो है जरूरी है पौधों के विकास के लिए, और दाना बढ़ने लग गया उस टाइम पर उन्हें मोटा और सुंदर ज़्यादा पैदावार देने के लिए फास्फोरस का टीका लगाया जाए। ये भी वैसे हमने बहुत मतलब महत्वपूर्ण है, जरूरी है इसको लगाना, जरूरी है, उसमें ज़्यादा पैदावार हमारी बढ़ जाएगी। जिस तरह कपास में है भाई ये सूत्रकृमि है, इसकी जड़ गांठ की है रोग देखने में आया, जो इसकी रोकथाम कर जो जो बायोटिका है ना इसकी सहायता ली जा सके।

तो ये जवानु है उसने जो पहले भी जिक्र कर रहे थे कि वह जो सूत्र कर्मी है उससे छुटकारा दिलवास के। और टीके का उपचार का तो भाई जिस तरह आपने पता होगा, वह बीज का उपचार खातर हमने 500 मिलीलीटर जो तरल है बायो फर्टिलाइजर है उससे, जिस तरह पहले बताया था 50 मिलीलीटर का आओ है, 1 cc में आओ है, और उसमें हमने जिस फसल के लिए लेना उसी के लिए लगाना है वो कर लेना है। और हाँ इसमें ये है एक बात है कि 10 किलो के लिए 1 लाख है, और जिस तरह मान लिया धान है भाई सरसों है उसमें कम लग गएगा तो उसमें भी एक टिक्का हमने लेना है लेना है, क्योंकि उसमें तो 1.5 किलो बीज लग गए तो हमने एक टिक्का तो उसमें लेना ही लेना है। और जिस तरह हमारा गेहूं का है, गेहूं में हमने 4-5 टिक्के लेने पड़ेंगे भाई, तो ये टिक्के लगा कर ने। और उसके बाद जो जिस तरह आपने ये बताया कि जो लगान का तरीका है 250 लीटर इसमें पानी लेना है, मिली लीटर लेकर ने, और उसमें 50 ग्राम गुड़ वो अच्छी तरह मिला ले, और फिर उसके बाद अपने जो बीज है वो कहीं फर्श पर तरपाल पर या कितने पक्की जगह पर रख कर ने, और उसके ऊपर कहीं इसने छिड़क लें जो, और अच्छी तरह मिला कर ने, फिर जो ये अपना बीज जो ये टिक्का है चाहे राइजोबियम का है चाहे एजेक्टोबैक्टर का है, उसने जो सा भी टिक्का आप लगा रहे जो सी फसल के लिए उसने उसके ऊपर छिड़क कर ने 50 ml का, या मान लिया गेहूँ के लिए तो 4 बोतल हमने लेनी पड़ेंगी तो वह हमने छिड़क के अंदर फिर आराम तो उसको मिला देना है, मिला के अंदर फिर छाया में सुखाना है, फिर उसकी बात यह है बिजाई करनी है। हाँ ये कई बार ऐसा होता है हम दूसरे उपचार कराएं इसके लिए, जैसे डिमक का है और दूसरे, पहले वो सारे उपचार कर ले उसके बाद सबसे आखिर में हमने ये टीका लगाना है। और इसमें ज़्यादा ये भी ध्यान रखना भाइयों हमने कि ज़्यादा उसमें नहीं, बिजाई थे आध घंटा 1 घंटे पहले हमने ये कर लेना लगाना है, ज़्यादा पहले लगा गया तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। और शीशी को भी जो उसमें ले आए हैं जो ले रहे हैं ज़्यादा समय तक नहीं रखना कि वह हमने उस ले आए तो और छाया में ठंडी जगह पर उसमें रखे, फिर उसके बाद उसको लगा और सबसे आखिर में इसको लगा कर ने, और फिर हमने उसकी बिजाई कर देनी है। तो इसमें ये देखा गया एक तो जो रासायनिक खाद हम बार बार देवा हैं जो ज़्यादा देवा हैं उन तो हमने ज़्यादा उसका हो जाए कि वह छुटकारा मिल जाए, कम देने पड़े फसल हमारी वो अलगता हो, क्योंकि उसमें लगभग पोषक तत्व तो आ जाए, एक तो चमक भी अलगते हैं और पैदावार भी अलग हो जाए, जिस तरह ये बता फास्फोटिक का हम लगा जाए तो उसमें वो पैदावार मोर मरी बढ़ जाए, दाने मोटे हो जाए हैं और उनमें एक अलग तरह से यूँ दिखाई दे कि वह दूर से जिस तरह मान लिया हम किसी रेडी पर कोई चीज़ ले फल फ्रूट ले तो दूर से हमें पसंद आओ तो उस तरह हमारी जो फसल है वो भी पसंद आओ, फिर आराम तो उसको देखा जाए। तो इस तरह हमने ये करना है भाई, और ये जैविक टीकों का हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें, चाहे देसी खाद है चाहे हरी खाद है चाहे केचुआ खाद है चाहे जैविक है चाहे फसल अवशेष, यानी हमने रासायनिक खादों से छोड़ के दूर हटना पड़ेगा और इन देसी खादों की तरफ चलना पड़ेगा, तभी जाकर हमारी ज़मीन की जो सेहत है वो सुधरती रहेगी। और वो ज़मीन की जो सेहत है वह संवारनी हमने बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए। हाँ और भाइयों आज एक सूचना और दे दें आपने, जो अपना शाम में 7 बजे प्रोग्राम आ रहा है चौपाल लाइव फोन इन प्रोग्राम, आज उसका प्रसारण नहीं होगा, कारण ये है उसका दिल्ली से है कोई विशेष प्रोग्राम आ रहा है, इस वजह से आपने पहले सूचना दे दें भाई, कदे फिर बाद में बुलाना दे तो वो प्रोग्राम आज नहीं होगा, तो इस बात का और ध्यान रखें भाई। तो और बात ये भाई उसका जो टीका है अपना टीका जरूर लगाओ ये, और ये आदत डाल लें चाहे देसी खाद है चाहे केचुआ खाद है चाहे ये अपना हरी खाद है और चाहे जैविक खाद है, इनकी अब एक हमने आदत बना लेनी है, जिस तरह हम रासायनिक खाद बना रहे हैं उसी तरह हमने ये आदत बना लिया और अपनी फसलों में ये देव अलग थे उसमें चमकाओ। और समय रहेगा तो और बात बतलाऊँ भाइयों, लेकिन एक रागनी आपने और सुनवा दिया गायक कलाकार एक बार फिर धर्मेंद्र कतलूपुरिया और उनके साथी।

छोटे यो धन्य जोड़ा जावेगा और बांध रकम ने।

तो भाइयों, ये तो आपने रागनी सुनी। गायक कलाकार थे धर्मेंद्र कथलूपुरिया और उनके साथी, और जिक्र कर रहे थे जैविक खादों का महत्व। तो भाइयों, इसमें जैविक खादों एक तो ये देखना टिक्का है ना, जो उससे फसल के लिए लेना है खासकर। वैसे तो ये उसके ऊपर शीशी व बोतल पर लिखा पावा कि फलानी फसल के लिए, उसके फसल का नाम लिखा पावा, वो ही लेना है। और उसमें एक चीज़ ये भी हो, 3 महीने तक ये वैलिड है। वह 3 महीने तक मतलब इसमें कृषि का बात ये रखने ध्यान, आपने उसको शीशी को छाया में और ठंडी जगह पे रखना है। ये नहीं है कि वह कितने धूप में रख दिया, रो कर दिया, और घना सा फ्रिज में भी नहीं, लेकिन छाया में रखना है, ठंडी जगह में रखना है। और हाँ, एक महत्वपूर्ण तो बात इसमें यह भी है, जब हमें बीज का उपचार करना, बोतल उसे टाइम पर खोलना है। ये ना हो कि मैं पहले कई दिन पहले खोल के धर लिया, हमने 2 घंटे 3 घंटे पहले खोल के धरनी। अपना पहले जिस तरह वो कराया कि वह 250 मिलीलीटर ये पानी लेकर ना, उसमें 50 ग्राम गुड़ मिला के ना, पहले तो अपने बीज ने सारा उसमें रखकर फर्श पर या तरपाल पर, और सारा ऊपर के हमने ये छिड़क देना है गुड़ का पानी, वो सारा चिपड़ा हो जाए। फिर उसके बाद हमने बोतल खोलनी है, बोतल खोल कर उसका छिट्टा दे के सारे के सारे का, जितनी भी बोतल है आपकी, तो उसको फिर अच्छी तरह मिला कर, और फिर मतलब 15-20 मिनट बाद आप उसकी बिजाई कर दें इसकी। ये अपने ध्यान रखना है। और जो दूसरे जिस तरह बताया था उपचार करना दूसरे बीज उनका, दवाइयाँ का बीमारियाँ का, वो हमने सबसे पहले कर लेना। ये जो हमने जैविक खाद का जो उपचार करना है, ये सबसे बाद में करना है। ये उसमें अपना पूरा हमने ध्यान रखना है। ये ना है कि मैं मान लिया हम पहले से वो कर दिया, पहले ये कर दिया और फिर वो करेंगे ना, सबसे बाद में करना है। और फिर जिस भी फसल के लिए आपने लेना है, वो ध्यान रखें कि मैं वहाँ जाकर ना पहले फसल का नाम बता दें कि जी मैंने ये फसल है, दिलहनी है, दलहनी है, तलहनी है, जो सी भी है, आपने वो लेकर उसका फसल का नाम बताना है। यानी जैसे मूंग, उड़द, लोबिया, अरहर, चना, मटर, मसर है, जो इसका मतलब दलहनी फसल है, उनका नाम बताना है। तिलनिया में मूंगफली में लगाना है, सोयाबीन में लगाना है, उसका नाम बताना है। और चारा फसलों में जैसे गवार है, बरसे में रिज़ का है, उनका अपना नाम बताना, यानी फसल फसल उसके बाद ही होगा। तो इस तरह में ये जैविक खाद का प्रयोग कराएं तो बहुत बढ़िया फसल ले लें। और भाइयों, घड़ी कहना देख लो, कार्यक्रम का समय और असमात, सारे बहन भाइयों ने राम राम।

आपने सुना खेत खलिहान कार्यक्रम, मीडियम वेव 262.67 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज़ पर, DTH और न्यूज़ ओन AIR पर। ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। 3 बजे हैं, हमारे दूसरी सभा के कार्यक्रम अब खत्म होते हैं। FM बैंड 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुनते रहेंगे विविध भारती मुंबई के कार्यक्रमों का रिले। तीसरी सभा में शाम 5:30 पर मीडियम वेव 262.67 मीटर, DTH और न्यूज़ ओन AIR पर आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे।

मीडियम वेव 262.4 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। इस समय शाम के 5:30 हुए हैं। अब हमारी आज की शाम की सभा के प्रसारण आरंभ होते हैं। प्रस्तुत है युवाओं का दैनिक कार्यक्रम युवा संसार।

0: माँ की दुआओं में जो उजाला है वो किसी दीपक का मोहताज नहीं, और पिता के संघर्षों की धूप हर तूफान से लड़ना सिखा देती है। अभिभावक केवल रिश्ते नहीं होते, बल्कि वो समय की वो छांव है जो कठिन समय में भी सुकून देते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं महिमा आपका आज के इस कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। साथियों, परिवार समाज की सबसे महत्वपूर्ण इकाई होती है और अभिभावक उसके आधार स्तंभ। माता पिता हमें संस्कार देते हैं, शिक्षा और जीवन के मूल्यों से भी परिचित कराते हैं। इसी महत्व को सम्मान देने के लिए हर साल 1 जून की तारीख को विश्व अभिभावक दिवस हम मनाते हैं। अभिभावकों की भूमिका हमारे जीवन में अहम होती है। वो हर परिस्थिति में हमारा मार्गदर्शन करते हैं, हमें सही राह दिखाते हैं, और उनके त्याग, समर्पण और परिश्रम के कारण ही हम आगे जीवन में बढ़ पाते हैं। आज की इस भागदौड़ भरी हुई जिंदगी में हम अक्सर अपने परिवार और अपने माता पिता को पर्याप्त समय नहीं दे पाते, लेकिन हमें अपने जो बड़े हैं उनका सम्मान करना चाहिए, उनकी भावनाओं को समझना चाहिए और उनके साथ समय बिताना चाहिए। परिवार में प्रेम, सहयोग और विश्वास बनाए रखने के लिए जो अभिभावक हैं उनकी भूमिका अहम होती है, और हमें उनके आदर्शों का पालन करते हुए उनके प्रति हमेशा ही कृतज्ञ रहना चाहिए। इसी के साथ दोस्तों, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आज के एक और विशेष दिवस के बारे में बात करते हैं, जो कि है विश्व दूध दिवस। दूध हमारे जीवन के लिए ज़रूरी है, क्योंकि इससे हमें संपूर्ण आहार मिल सकता है। हम इसमें शरीर के विकास और स्वास्थ्य के लिए आवश्यक लगभग सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं। दूध में कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन्स और खनिज प्रचुर मात्रा में होते हैं, जो कि शरीर को स्वस्थ और मजबूत बनाए रखने के लिए भी सहायक साबित होते हैं। वहीं बात करते हैं बच्चों की, युवाओं की, तो ऐसे जो लाइफ की स्टेज होती है वहाँ पर शारीरिक और मानसिक विकास के लिए भी इसका सेवन जो है वो ज़रूरी हो जाता है। इसमें जो उपस्थित प्रोटीन होते हैं वो शरीर की मांसपेशियों को मजबूत करते हैं और साथ ही हमें ऊर्जा भी प्रदान करते हैं। दूध में पाए जाने वाले विटामिन्स जो होते हैं, विटामिन डी, विटामिन ए और B12, ये हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में, आँखों की रोशनी को बनाए रखने में और मस्तिष्क के विकास में भी सहायक होते हैं। वहीं विद्यार्थियों की बात करते हैं तो ऐसे में दूध का सेवन तो और भी अधिक लाभकारी हो जाता है, क्योंकि ये हमारी स्मरण शक्ति को, हमारी एकाग्रता को बढ़ाने में सहायक होता है। वृद्ध लोगों के लिए भी दूध का जो सेवन है वो उपयोगी है, क्योंकि वो हमारी हड्डियों को कमज़ोर होने से बचाता है और शरीर को आवश्यक जो पोषण है वो प्रदान करता है। और हम सभी जानते हैं कि दूध से हम बहुत सारे पौष्टिक पदार्थ भी बना सकते हैं और उनका सेवन कर सकते हैं, जैसे कि दही, मक्खन, पनीर, घी इत्यादि। ये सभी हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और शरीर को अतिरिक्त पोषण प्रदान करते हैं। हमारे देश में दूध का आर्थिक महत्व भी बहुत है। जो डेयरी उद्योग है वो कई लोगों को रोज़गार प्रदान करते हैं और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी सशक्त बनाते हैं। तो ये कहा जा सकता है कि दूध सिर्फ एक पीने योग्य पदार्थ ही नहीं, बल्कि हमारे स्वास्थ्य, शक्ति और समृद्धि का एक प्रतीक है, और नियमित रूप से अगर हम इसका सेवन करते हैं तो हम स्वस्थ बने रह सकते हैं, ऊर्जावान बने रह सकते हैं और अपने आप को सशक्त बना सकते हैं। और बात सिर्फ अगर दूध की ही है तो हमें अन्य पदार्थ भी जो है वो हमारे रोज़ाना की डाइट में ऐसे शामिल करने चाहिए, जिससे कि प्रचुर मात्रा में हमारे शरीर को सभी प्रकार के विटामिन्स, मिनरल्स मिल सकें, ताकि हर प्रकार के जो रोग हैं आज के समय में हम देखते हैं, उनसे हमारा शरीर बचा रहे और हम अपने आप को स्वस्थ महसूस करें। इसी के साथ अब बढ़ते हैं आगे, और आज सोमवार का दिन है और नए महीने की आज की पहली तारीख है। पहली तारीख और सोमवार का दिन आज के इस दिवस को और भी खास बना देता है, और इसे और ख़ास हम बनाते हैं आज के इस कार्यक्रम से हेलो जीनियस के। शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ नियम आप सभी को बता दें कि हेलो जीनियस कार्यक्रम में तीन सवालों के सही जवाब आपको बनाएंगे इस कार्यक्रम का जीनियस। यदि किसी एक प्रश्न पर हमारे दो श्रोता अटक जाते हैं और सही उत्तर उसका नहीं देते हैं तो सवाल का सही जवाब हम आपको बताएंगे। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, संपर्क नंबर है हमारे 012-55-446, 255-447 और 255-448। और साथियों, इस बात का भी विशेष रूप से ख्याल रखें कि किसी भी प्रश्न को लेकर आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो उस पर यदि आप उसका सही उत्तर जानते हैं तो आप हमसे आगे बातचीत करें, और अगर नहीं जानते हैं तो आप वहीं पर ही स्पष्ट कर दें कि आप इस प्रश्न का सही जवाब नहीं जानते। तो अब इस कार्यक्रम की गरिमा को बनाए रखते हुए पहला सवाल आप सभी से पूछ लेते हैं हम। भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी?
1: हेलो,
0: नमस्कार जी, नाम बताएं।
1: मैं रामधारी बात कर रहा हूँ, गांव ढाणी के तुपुर जिला।
0: आपका बहुत बहुत स्वागत है रामधारी जी आज के इस कार्यक्रम में। सवाल आपके लिए है कि
1: डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की
0: जी, एक बार सवाल सुनिएगा। भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी?
1: डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद
0: जी। नहीं, ये सही उत्तर नहीं है।
1: सच्चिदानंद सिन्हा
0: जी। सच्चिदानंद सिन्हा, बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। और अगला सवाल है आपके लिए, भारत के यूपीआई को अपनाने वाला पहला ऐसा कैरिबियन देश कौन सा बना है?
1: जमैका
0: जी। नहीं,
1: ट्रिनिडाद एंड टोबैगो
0: जी। ट्रिनिडाद और टोबैगो जो है ये पहले ऐसे कैरिबियन देश बने हैं। और अगला प्रश्न जो आपको आज के इस कार्यक्रम का पहला ही जीनियस बनाएगा, 1930 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किस व्यक्ति को प्रदान किया गया था? भौतिकी क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 1930 में किस व्यक्ति को प्रदान किया गया था?
1: थैंक यू, नहीं पता।
0: कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े और आपने दो प्रश्नों के सही उत्तर दिए हैं, आपको बहुत बहुत शुक्रिया।
2: हेलो,
0: हेलो,
2: नमस्ते मैम, राहुल बात कर रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट झुंझुनू राजस्थान से।
0: जी राहुल, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सवाल आपके लिए है, 1930 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किस व्यक्ति को प्रदान किया गया था?
2: दोबारा बताना मैम।
0: वर्ष 1930 में भौतिकी क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किस व्यक्ति को, किस भारतीय को प्रदान किया गया था?
2: भारत के, तो ये भारत के बताना है
0: जी, भारतीय व्यक्ति बताने हैं आपको।
2: सीवी रमन
0: जी। सीवी रमन, बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। और अगला सवाल है आपके लिए, भारतीय न्यायपालिका के डिजिटल आधुनिकरण के लिए एआई आधारित चैटबॉट जिसका नाम है सुसहायक, ये किसने लॉन्च किया है?
2: व्यक्ति का नाम बताना है संस्था
0: जी। बिल्कुल, सुसहायक एक चैटबॉट है, एआई आधारित है ये, किसके द्वारा इसे लॉन्च किया गया है?
2: कोई हिंट है मैम?
0: जी, ये हमारी न्यायपालिका को डिजिटल करेगा और इससे जो है वो डिजिटल रूप से तकनीक आने के माध्यम से जो है सहायता होगी। सुसहायक इस पोर्टल का नाम है, माफ कीजिएगा, इस चैटबॉट का नाम है।
2: ओके मैम, ध्यान नहीं आ रहा, धन्यवाद।
0: कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। हेलो,
3: हेलो,
0: नमस्कार जी, नाम नाम बताइए।
3: रवि बोल रहा हूँ।
0: जी रवि, आपका बहुत बहुत स्वागत है। भारतीय न्यायपालिका के डिजिटल आधुनिकरण के लिए एआई आधारित चैटबॉट सुसहायक किस व्यक्ति ने लॉन्च किया है?
3: सूर्यकांत ने किया जी, मुख्य न्यायाधीश।
0: मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने इसको लॉन्च किया है। और अगला सवाल है आपके लिए, ऐसे दो ग्रहों का नाम बताएं जिनके पास शून्य प्राकृतिक उपग्रह हैं। प्राकृतिक उपग्रह जी। हेलो,
3: बृहस्पति
0: जी। नहीं, ऐसे ग्रहों का नाम आपको बताना है
3: जिन,
0: माफ कीजिए, जवाब दोहराए।
3: मंगल और बुध
0: जी। बुध ग्रह बिल्कुल सही है, लेकिन मंगल ग्रह सही जवाब नहीं है। एक और प्रयास आपकी ओर से।
3: शुक्र
0: जी। शुक्र ग्रह और बुध ग्रह यानी कि वीनस प्लैनेट और मरकरी प्लैनेट एक ऐसे प्लैनेट्स हैं, एकमात्र ऐसे दो प्लैनेट हैं जो जिनके शून्य प्राकृतिक उपग्रह हैं। और एक और प्रश्न आपके लिए जो आपको जीनियस बना सकता है, भारत के नए नौसेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?
3: नौसेना
0: जी, नौसेना प्रमुख का नाम बताना है, हाल ही में अभी नियुक्ति की गई है।
3: ठीक
0: है, कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। हेलो,
4: नमस्कार मैम।
0: नमस्कार जी, रामधारी बात कर रहे हैं?
4: जी रामधारी बात कर रहे हैं।
0: जी रामधारी जी,
4: वर्तमान ये नौसेना प्रमुख अभी चेंज हुए 31 मई को,
0: जी
4: एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन को बनाया गया।
0: जी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है, कृष्णा स्वामीनाथन जी जो है उन्हें नौसेना प्रमुख के लिए नियुक्त किया गया है। और अगला सवाल है आपके लिए, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं, यानी कि शेड्यूल्स की संख्या बतानी है?
4: अनुसूचियाँ 12।
0: जी बिल्कुल सही है ये जवाब। और अधिक जानकारी अपने साथियों को दे देते हैं, 1935 के भारत सरकार अधिनियम में जो थी उस समय कुल 10 अनुसूचियाँ थी, लेकिन आज के समय में कुल 12 अनुसूचियाँ हैं। और अगला प्रश्न है जो आपको जीनियस बना सकता है एक बार फिर से, कि पोषण युक्त खेती और स्वस्थ भोजन को बढ़ावा देने के लिए किस राष्ट्रीय पहल को शुरू किया गया है? हेलो
4: जी,
0: जी
4: पोषण मिशन?
0: जी नहीं।
4: थैंक यू मैम,
0: कार्यक्रम में जुड़ने के लिए शुक्रिया। सवाल एक बार फिर दोहराते हैं आपके लिए, पोषण युक्त खेती करने के लिए और स्वस्थ भोजन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने किस राष्ट्रीय पहल की शुरुआत की है? हेलो हेलो
5: हेलो,
0: नमस्कार जी, नाम बताएं।
5: केशव चक्रवर्ती, त्रिपुरा अगरतला से।
0: केशव जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपको बताना है कि केंद्र सरकार द्वारा किस राष्ट्रीय पहल की शुरुआत की गई है पोषण युक्त खेती को बढ़ावा देने के लिए।
5: हाँ हाँ मैडम, पोषण अभियान भारत के कौन राज्य प्रथम चालू है?
0: जी आप मिशन, ये जो पहल है उसका नाम बताए।
5: पोषण अभियान?
0: जी नहीं, ये सही जवाब नहीं है, एक और प्रयास आपकी ओर से।
5: ये मध्य प्रदेश है आई थिंक।
0: जी नहीं, ये सही उत्तर नहीं है, कार्यक्रम में हमारे साथ
5: राजस्थान।
0: जी नहीं, कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नियमों के मुताबिक दोस्तों दो साथी हमारे साथ यहाँ जुड़े इस प्रश्न को लेकर और सही जवाब वो नहीं दे पाए हैं, तो हम आपको बता देते हैं, सेहत मिशन एक प्रकार की राष्ट्रीय पहल है ताकि पोषण युक्त खेती हो सके और हमें स्वस्थ भोजन मिल सके। और अब बढ़ते हैं आगे, अगला सवाल आप सभी के लिए है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? हेलो
4: हेलो
0: जी, रामधारी जी।
4: जी नमस्कार मैम।
0: नमस्कार जी, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है?
4: 8 राज्यों से।
0: जी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है ये। वहीं अगला सवाल आपके लिए है कि किस राष्ट्रीय आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है?
4: अगस्त क्रांति आई थिंक ये था भारत छोड़ो आंदोलन।
0: जी भारत छोड़ो आंदोलन, यानी कि क्विट इंडिया मूवमेंट के नाम से हम जानते हैं अगस्त क्रांति को। और अगला सवाल है, गंगम्मा जतारा महोत्सव किस राज्य में मनाया गया?
4: गंगम्मा जतारा ये हाल ही का है, ओडिशा?
0: जी नहीं, कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हैं बहुत बहुत शुक्रिया। गंगम्मा जतारा महोत्सव जो है वो किस राज्य में मनाया गया है?
6: हेलो
0: हेलो
6: जी, नमस्कार।
0: नमस्कार जी, नाम बताइए।
6: जी अविनाश बोल रहा हूँ त्रिपुरा से।
0: अविनाश जी आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में, सवाल आपके लिए है कि गंगम्मा जतारा महोत्सव किस राज्य में अभी मनाया गया है?
6: जी गंगा जतारा ये उत्सव मनाया गया था असम में।
0: जी असम तो सही जवाब नहीं है।
6: अच्छा तो फिर गुजरात?
0: जी नहीं, गुजरात भी सही जवाब नहीं है, एक और प्रयास।
6: ठीक है, तो जी दूसरे सवाल पर आते
0: हैं। जी बिल्कुल, दूसरे सवाल पर हमारे साथ जुड़िएगा और यहीं इस प्रश्न का सही उत्तर हम बता देते हैं आपको। ये आंध्र प्रदेश से जुड़ा हुआ एक महोत्सव है जो कि अभी हाल ही में मनाया गया है। अगला प्रश्न आप सभी के लिए है, मैकमोहन रेखा जो है वो भारत को किस देश से अलग करती है। हेलो,
7: नमस्ते मैडम, गुड आफ्टरनून
0: जी।
7: मैं केशव चक्रवर्ती त्रिपुरा से।
0: केशव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार। और सवाल आपके लिए है, मैकमोहन रेखा भारत और किस देश की जो सीमा है उसको
7: पर।
0: बिल्कुल सही जवाब है ये आपका। और अगला सवाल है, रेड क्लिफ रेखा किन देशों के बीच की सीमा को परिभाषित करती है।
7: हाँ हाँ, ये भारत और पाकिस्तान।
0: बिल्कुल सही उत्तर है। और एक और प्रश्न जो आपको जीनियस बना सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस कब मनाया गया, यानी कि
7: क्या मैडम आवाज़ को मारा है? नौ सेना दिवस
0: जी नहीं, अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग दिवस कब मनाया गया।
7: नर्सिंग मींस मतलब क्या मैडम
0: जी?
7: आई कुड नॉट अंडरस्टैंड नर्सिंग मींस।
0: जी, डॉक्टर्स के लिए जो नर्सिंग स्टाफ होता है उसका अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया?
7: आंतर्जातिक नाइटिंगेल दिवस कब पालित है
0: जी? आप तारीख बताएं।
7: तारीख बताए ना मैडम
0: जी?
7: हाँ, ये तो नाइटिंगेल बर्थडे आई थिंक 12 में।
0: 12 में, बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। 12 मई को हम ये दिवस मनाते हैं। और तीन सवालों के आपने केशव जी सही उत्तर दिए हैं। आप बनते
7: का तो भैया मैडम, ये नाथ तो ये हमारा मणि दुनिया का एक महान व्यक्ति थी फ्लोरेंस नाइटिंगेल।
0: बिल्कुल, उनके उनकी याद में ये दिवस मनाया जाता है। और इसी के साथ आप बनते हैं आज के इस कार्यक्रम के पहले जीनियस। आपको बहुत बहुत बधाई केशव जी।
7: धन्यवाद मैडम,
0: शुक्रिया। तो अब बढ़ते हैं आगे। और अगला सवाल है, भारत का पहला लो एमिशन जोन किस शहर में स्थापित किया गया है? हेलो हेलो, भारत का पहला लो एमिशन जोन किस शहर में स्थापित किया जाएगा? हेलो
8: हेलो, मैं राहुल बात कर रहा हूँ।
0: जी राहुल, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। सवाल आपके लिए है कि भारत का पहला लो एमिशन जोन किस शहर में स्थापित किया जाएगा?
8: भारत का पहला
0: लो एमिशन जोन, यानी कि जिससे एमिशंस की जो स्तर है वो कम हो सके।
8: जमशेदपुर
0: जी नहीं।
8: कोई वो हिंट है मैम?
0: जी, इंडस्ट्रीज के हिसाब से देखें तो हम एक काफ़ी जो है इंडस्ट्रीज इस शहर में पाई जाती हैं।
8: औद्योगिक
0: से जुड़ा
8: देहरादून?
0: जी नहीं,
8: नहीं आता मैम।
0: कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। और यही सवाल बढ़ते हैं अगले श्रोता की ओर।
9: हेलो
0: हेलो
9: जी मैम, मैं संदीप बोल रहा हूँ राजस्थान से।
0: जी संदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सवाल आपके लिए है कि भारत का पहला लो एमिशन जोन किस शहर में स्थापित किया जाएगा?
9: पुणे महाराष्ट्र में।
0: बिल्कुल सही जवाब है आपका। और अगला सवाल है, लाफिंग गैस के रूप में हम किस गैस को जानते हैं?
9: कौन सी गैस मैम?
0: लाफिंग गैस के रूप में किसे जाना जाता है?
9: N2O।
0: जी, पूरा नाम बताएं इसका।
9: हेलो, नाइट्रस ऑक्साइड जो इसको बोलते हैं ना।
0: जी बिल्कुल सही जवाब है ये। और अगला प्रश्न जो आपको जीनियस बना सकता है, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस हाल ही में अभी कब मनाया गया है?
9: प्रकाश दिवस मैम 15 मई को।
0: जी आप आसपास हैं, प्रयास करें।
9: तो फिर मैम 16 मई को।
0: जी 16 मई, बिल्कुल सही दिन जो है आपने बताया है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस हम मनाते हैं। और संदीप जी, आप बनते हैं आज के इस कार्यक्रम के दूसरे जीनियस। आपको बहुत बहुत बधाई।
9: शुक्रिया मैम।
0: तो इसी उम्मीद के साथ हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल आपके लिए लेकर हम जो आए हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि जो श्रोता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, वो भी जीनियस बनेंगे। और अगला सवाल है आपके लिए, हाल ही में औद्योगिक पार्क विकसित करने के लिए किस योजना को मंजूरी दी गई है?
9: हेलो
0: हेलो
9: जी, मैं
0: माफ़ कीजिए, जवाब दोहराए, माफ़ कीजिए, अपना नाम बताइएगा।
6: जी अविनाश बोल रहा हूँ त्रिपुरा से।
0: अच्छा जी अविनाश बात कर रहे हैं हमारे साथ और सवाल आपके लिए है अविनाश कि हाल ही में औद्योगिक पार्क विकसित करने के लिए किस योजना को मंजूरी दी गई है?
6: जी औद्योगिक पार्क विकसित करने के लिए किस योजना को विकसित की गई है?
0: जी कौन सी योजना को मंजूरी दी गई है?
6: अच्छा जी औद्योगिक पार्क जो होता है ना
0: जी आप योजना का नाम बताएं।
6: इस योजना का नाम भव्य
0: जी भव्य स्कीम जो है इसका पूरा नाम है भारत औद्योगिक विकास योजना। इसके तहत जो प्लग एंड प्ले मॉडल के तहत औद्योगिक पार्क विकसित किए जाएंगे। और अगला सवाल है आपके लिए भारत के नेतृत्व में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस का 26वां सदस्य देश बना है?
6: जी क्या भारत का
0: हाल ही में अभी कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस का 26वां सदस्य देश बना है?
6: ये कनाडा
0: जी नहीं।
6: फिर आप ये सवाल
0: कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हेलो
10: हेलो

0: भारत के राष्ट्रपति के द्वारा।
1: बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। अगला सवाल जो जीनियस बना सकता है आपको, भारत का पहला एल्गी ट्री कहाँ पर स्थापित किया गया है?
0: पहला
1: एल्गी ट्री कहाँ पर स्थापित किया गया है? इसका जो कार्य रहेगा कि वो पर्यावरण से कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है उसे एब्जॉर्ब करेगा। एल्गी ट्रीज को नाम दिया गया है, कहाँ पर ये स्थापित है?
0: ये स्टेट का नाम बताना है,
1: जी आप स्टेट बताएं, शहर बताएं।
0: केरल?
1: जी नहीं, साउथ में तो नहीं है।
0: नहीं पता जी इसका।
1: हमारे से जुड़ने के लिए शुक्रिया। एल्गी ट्री से जुड़ा हुआ प्रश्न है, पर्यावरण से CO2 की मात्रा को ये एब्जॉर्ब करेगा। हेलो
0: हेलो
1: जी, नमस्कार, नाम बताइए।
0: जी, मैं अभिनंदन बोल रहा हूँ
1: अविनय
0: जी। भारत का पहला एलजी ट्री कहाँ पर स्थापित किया गया है, यही
1: जी
0: सवाल है
1: बिल्कुल
0: ना?
1: यही सवाल है।
0: अच्छा, एलजी ट्री मतलब कि ये हाल ही में जो स्थापित।
1: जी बिल्कुल
0: जी जवाब मुंबई में।
1: जी नहीं, ये सही जवाब नहीं है। एक और प्रयास आपकी ओर से। तो चलिए, यहाँ दो साथी हमारे साथ जुड़े जो इस प्रश्न का सही जवाब नहीं दे पाए हैं। भोपाल मध्य प्रदेश में इसकी स्थापना की गई है, एल्गी ट्रीज का नाम रखा गया है। और अब बढ़ते हैं आगे, भारत के योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? हेलो,
0: हेलो, नमस्कार मैम।
1: नमस्कार जी, रामधारी जी। योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे?
0: श्री अरविंद पनगड़िया,
1: जी नहीं, योजना आयोग की बात की गई है, प्लानिंग
0: योजना
1: कमीशन।
0: आयोग के? अच्छा,
1: जी
0: मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं।
1: माफ कीजिए, उपाध्यक्ष पूछे गए हैं आपसे। योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे?
0: उपाध्यक्ष और
1: 1950
0: सर
1: में
0: जी
1: इसकी स्थापना हुई
0: जी
1: थी।
0: गुलजारी लाल नंदा।
1: जी, गुलजारी लाल नंदा जो है वो योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष थे। और अगला सवाल है, प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी की जो आत्मकथा है, किस नाम से उसे जानते हैं हम?
0: अग्नि के पंख, विंग्स ऑफ फायर।
1: जी, विंग्स ऑफ फायर, बिल्कुल सही उत्तर है ये आपका। और कंप्यूटर की तरफ बढ़ते हैं, और कंप्यूटर के संदर्भ में बाइनरी भाषा में कुल कितने अंक होते हैं?
0: बाइनरी डिजिट में दो थे, 0 और 1।
1: 0 और 1, बिल्कुल सही जवाब है। 3 सवाल सही जवाब और बनते हैं। रामधारी जी, आप आज के इस कार्यक्रम के जीनियस, आपको बहुत बहुत बधाई,
0: धन्यवाद।
1: धन्यवाद। 3 जीनियस इस कार्यक्रम में अभी तक हमें मिल चुके हैं और उम्मीद तो कायम है। इसी उम्मीद के साथ अगला सवाल है, भारत के किस राज्य में हड़प्पा स्थलों की संख्या सबसे अधिक है? भारत के किस राज्य में हड़प्पा स्थलों की संख्या सबसे अधिक है?
0: हेलो,
1: हेलो
0: राहुल बात कर रहा हूँ मैं।
1: जी राहुल, सवाल है कि भारत के किस राज्य में हड़प्पा स्थलों की संख्या सबसे अधिक है?
0: क्या मैम दोबारा बताना?
1: हड़प्पा स्थलों की संख्या किस राज्य में सबसे ज़्यादा है?
0: मतलब राज्य बताना है क्या मैम?
1: जी, कौन से राज्य में ये संख्या ज़्यादा है?
0: राजस्थान,
1: जी नहीं,
0: हरियाणा,
1: जी नहीं,
0: गुजरात।
1: गुजरात में पाई जाती है। हड़प्पा स्थलों की सबसे ज़्यादा संख्या वहाँ पर देखने को मिलती है। और बढ़ते हैं अब आगे, सिंधु घाटी सभ्यता में डोकयार्ड के अवशेष हमें कहाँ मिले हैं? डोकयार्ड यानी कि गोदीबाड़ा।
0: हरियाणा, फतेहाबाद।
1: जी नहीं, गुजरात में ही है ये, पर आप स्थान का नाम बताएं।
0: गुजरात में बालाघाट।
1: जी नहीं, आगे बढ़ते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में डोकयार्ड के अवशेष कहाँ पर मिले हैं? हेलो
0: हेलो
1: जी, नाम बताइए।
0: जी जी अविनाश
1: जी, नाम बताएं।
0: बोला।
1: अच्छा जी, अविनाश जी, सिंधु घाटी सभ्यता में डोकयार्ड के अवशेष कहाँ मिले हैं?
0: जी, सिंधु घाटी सभ्यता में जो कैट के अंश कहाँ मिले हैं?
1: जी
0: जी तो पंजाब में।
1: जी नहीं,
0: गुजरात

0: एक प्रयास और आपकी ओर से।
1: फिर महाराष्ट्र में।
0: जी नहीं, ये सही जवाब नहीं है। कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। और नियमों के मुताबिक दो साथी यहाँ हो चुके हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में जो डोकियाड़ यानी कि गोदी बाड़ा है, सबसे अधिक अवशेष हमें उसके लोथल गुजरात में देखने को मिलते हैं। और किस वेद में सबसे प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में जानकारी है? हेलो
1: हेलो,
0: जी,
1: हाँ राहुल बात कर रहा
0: जी
1: हूँ मैं।
0: राहुल, किस वेद में सबसे प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में जानकारी है? हेलो,
1: हेलो
0: जी
1: जी, नमस्कार मैडम, उमेश बात कर रहा हूँ।
0: जी उमेश जी, सवाल है कि किस वेद में वैदिक युग की संस्कृति के बारे में जानकारी है?
1: ऋग्वेद।
0: ऋग्वेद। हाल ही में समान नागरिक संहिता विधेयक पारित करने वाला देश का तीसरा राज्य कौन सा बना है?
1: गुजरात।
0: जी नहीं, ये सही जवाब नहीं है। और इसका सही उत्तर दोस्तों असम है। प्रश्न और उत्तर का सिलसिला यहीं पर अब हम संपन्न करते हैं। और आज के जो कार्यक्रम के जीनियस बने संदीप, रामधारी और केशव, उन्हें हम बधाई देते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए सभी साथियों का शुक्रिया। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे युवाओं का दैनिक कार्यक्रम युवा संसार। आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। इस समय शाम के 6 बजने को हैं। थोड़ी ही देर बाद आप हिंदी समाचार सुनेंगे, जिन्हें आकाशवाणी दिल्ली से रिले किया जाएगा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन ने आज व्यापार और आर्थिक, रक्षा, सुरक्षा तथा सीमा प्रबंधन सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने नई दिल्ली में बताया कि दोनों पक्षों ने लोगों के बीच संपर्क के लिए कनेक्टिविटी के महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना को यथाशीघ्र पूरा करने पर सहमति व्यक्त की। विदेश सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने म्यांमा की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत के समर्थन की पुष्टि की।
1: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
2: ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी इन द रीजन।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता आज से लागू हो गया है। समझौते पर 6 महीने पहले हस्ताक्षर किए गए थे। श्री गोयल ने नई दिल्ली में बताया कि इस समझौते के लागू होने से भारत के कामगारों, लघु तथा मध्यम उद्यमों और कपड़ा, खेल वस्त्र, कृषि उत्पाद, फार्मा तथा चिकित्सा उपकरण जैसे विभिन्न क्षेत्रों के निर्यातकों को ओमान के बाजार में प्रतिस्पर्धियों के मुकाबले प्राथमिकता मिलेगी।
3: I am confident that this comprehensive agreement
4: हमें विश्वास है कि व्यापक समझौता ओमान के साथ हमारे संबंधों को नई गति प्रदान करेगा। पहले दिन से ही भारत को ओमान की 98% उत्पाद श्रेणियों में शुल्क मुक्त पहुंच प्राप्त होगी और इससे भारत के ओमान को होने वाले 99% से अधिक निर्यात को लाभ मिलेगा। व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA हमारे साझा भविष्य की रूपरेखा है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर श्री गोयल का एक लेख साझा किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि यह समझौता रोजगार सृजन को बढ़ावा

0: मोदी ने किसानों के हितों की रक्षा करने और दोनों देशों के बीच साझा समृद्धि को बढ़ावा देने का अवसर प्रदान करता है। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र, मुक्त, शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने में क्षेत्रीय साझेदारों के साथ सहयोग बढ़ाने के महत्व की पुष्टि की है। नई दिल्ली में दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों के बीच दूसरी बैठक में निर्बाध व्यापार, नौवहन तथा हवाई उड़ान की स्वतंत्रता के महत्व पर बल दिया गया। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री तथा रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स ने की। सरकार ने कहा है कि पूरे देश में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार है। पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर आज नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सभी तेल विपणन कंपनियां पेट्रोल और डीजल की सक्रिय रूप से आपूर्ति कर रही हैं। एलपीजी आपूर्ति के संबंध में उन्होंने बताया कि पिछले 3 दिन में 1,21,00,000 से अधिक बुकिंग प्राप्त हुई, जबकि 1,22,00,000 से अधिक सिलेंडरों की डिलीवरी की गई। पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिपरिषद का विस्तार किया गया। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के लोकभवन में 35 मंत्रियों को शपथ दिलाई। नवनियुक्त मंत्रियों को विभागों का आवंटन बाद में किया जाएगा। शपथ लेने वाले सदस्यों में स्वपन दास गुप्ता, अर्जुन सिंह, तापस रॉय, शंकर घोष और अन्य शामिल हैं। इस बीच तृणमूल कांग्रेस ने 2 विधायकों संदीपन साहा और ऋतिव्रत बनर्जी को पार्टी विरोधी गतिविधियों, महत्वपूर्ण बैठकों में अनुपस्थित रहने और सार्वजनिक रूप से पार्टी नेतृत्व की आलोचना करने के आरोप में निष्कासित कर दिया है। उच्चतम न्यायालय ने नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा को मौजूदा पेन और पेपर प्रारूप के स्थान पर कंप्यूटर आधारित परीक्षा आयोजित करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। न्यायालय ने कहा कि कंप्यूटर आधारित पुनर्परीक्षा आयोजित करने का कोई सवाल नहीं है, क्योंकि परीक्षा रद्द होने के बाद से राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी पहले से ही चुनौतियों का सामना कर रही है। अगली सुनवाई 27 जुलाई को होगी। प्रख्यात पार्श्व गायिका सुमन कल्याणपुर का अंतिम संस्कार आज मुंबई में पूरे राजकीय सम्मान के साथ कर दिया गया। उनका निधन कल रात मुंबई में हुआ था। हांगकांग में 22वीं एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने 10 स्वर्ण, 5 रजत और 4 कांस्य पदक सहित कुल 19 पदक जीते हैं। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। श्रोताओं, लीजिए अब सुनिए हमारे केंद्र से आज और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। सबसे पहले आज के शेष कार्यक्रम। सरकार के 12 वर्ष विषय पर समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रसारित विशेष श्रृंखला गरीब कल्याण पर बातचीत, ये कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा शाम 7:10 पर। पब्लिक स्पीक, ये कार्यक्रम सुनिएगा रात 9:30 पर। ये दोनों ही कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे। शाम 7 आप सुन सकेंगे कार्यक्रम ग्रामीण संसार और शाम 6:20 पर हम आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम कृषि जगत। शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में रात 10 सुनिएगा अमजद अली खां का गायन। सुगम संगीत कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा रात 8:25 पर। कार्यक्रम फिल्म संगीत प्रसारित किया जाएगा शाम 7:45 पर। एक फिल्म से फिल्म संगीत का एक कार्यक्रम सुनिएगा रात 9:15 पर। फिल्म संगीत का फरमाइशी कार्यक्रम मन चाहेगी आप सुन सकेंगे रात 10:30 पर। ये थे आज के शेष कार्यक्रम और अब कल के मुख्य आकर्षण। सरकार के 12 वर्ष विषय पर समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रसारित एक वार्ता सुनिएगा कल शाम 7:10 पर। वार्ताकार होंगे शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय कृषि एवं कल्याण मंत्री। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से रिले किया जाएगा। विविधा कार्यक्रम में कल सुबह 7:15 पर ज्योति की बातचीत का विषय रहेगा गर्मियों की छुट्टियों का सदुपयोग सुबह सवेरे। ये कार्यक्रम सुनिएगा सुबह 7:25 पर। युवाओं का दैनिक कार्यक्रम युवा संसार प्रसारित किया जाएगा शाम 5:30 पर। कल दोपहर 2:30 पर खेत खलिहान कार्यक्रम में चर्चा का विषय रहेगा कपास फसल की देखभाल और कल शाम 6:20 पर कृषि जगत कार्यक्रम में डॉक्टर राजेश की बातचीत का विषय रहेगा कपास फसल की कीड़ों से रक्षा। कल शाम 7 बजे ग्रामीण संसार कार्यक्रम में डॉक्टर आरएस यादव की बातचीत का विषय रहेगा पर्यावरण संरक्षण आज के संदर्भ में। लोक संगीत कार्यक्रम में कल सुबह 8:30 पर कलाकार होंगे सतपाल रोधकिया। हरियाणवी लोकगीतों के फरमाइशी कार्यक्रम में थारी पसंद प्रसारित किया जाएगा कल रात 9:30 पर। फिल्म संगीत कार्यक्रम सुनेगा कल सुबह 9 बजे और कल शाम 7:45 पर। फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट संगीत प्रसारित किया जाएगा दोपहर 1:10 पर। एक फिल्म से ये कार्यक्रम सुनिएगा कल रात 9:15 पर। फिल्म संगीत का फरमाइशी कार्यक्रम मन चाहे गीत हम आपको सुनाएंगे कल रात 10:30 पर। तो श्रोताओं, ये थे हमारे केंद्र से आज और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। अब आपको कुछ खोए व्यक्तियों संबंधी सूचना दे दें। आप हैं आशा, आपके पिता का नाम है कृष्ण जो कि गांव रजाना कला जींद की रहने वाली हैं। 23 जनवरी 2026 से अपने घर से लापता हैं। कद 5 फुट 2 इंच है। इनके बारे में यदि आपको सूचना देना चाहते हैं तो थाना पीलूखेड़ा में दे सकते हैं। दूरभाष नंबर है 8814011518। ये हैं अभियंका, इनके पति का नाम है विकास कुमार जो कि गांव ठाडरथ जिला जींद की रहने वाली हैं। 15 मई 2026 से अपने घर से लापता हैं। इनकी उम्र 20 साल है। कद 5 फुट 2 इंच, रंग सांवला। इनके बारे में यदि आप कोई सूचना देना चाहते हैं तो आप थाना पीलूखेड़ा में दे सकते हैं। दूरभाष नंबर है 8814011518। सूचना समाप्त हुई। आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज़ पर। 6:10 होने को हैं। थोड़ी ही देर बाद आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे जिन्हें आकाशवाणी चंडीगढ़ से रिले किया जाएगा।
2: ये कहानी है एक नर्स और उसके अंतर्मन की।
3: आ गया सैलरी?
4: हाँ।
3: आ? नहीं झुमके? ना। पहले बचत।
4: पहले झुमके।
3: सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री।
4: लेकिन झुमकों का क्या?
3: जाते हो कि लगाओ इंजेक्शन।
5: आरबीआई कहता है
6: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप सुकीर्ति से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुग्राम से हरियाणा पुलिस के लिए 312 इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल को झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री ने कहा, ये वाहन आपात स्थिति में लोगों तक शीघ्र सहायता पहुंचाने में अहम भूमिका निभाएंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह ने मेक इन हरियाणा नीति जारी की, AI सैंडबॉक्स और स्मार्ट निवेश सुविधा पोर्टल का लोकार्पण भी किया। मुख्यमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में राज्यव्यापी योग अभ्यास अभियान का शुभारंभ किया। अंबाला शहर के नजदीक गांव मंडोर में गद्दा फैक्ट्री में लगी भीषण आग पर काबू पाया गया, किसी के हताहत होने की सूचना नहीं। और कुरुक्षेत्र के लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल में नाबालिग से यौन उत्पीड़न मामले के आरोपी डॉक्टर को 2 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया। अब समाचार विस्तार से। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज गुरुग्राम के लेजर वैली पार्क में राज्य पुलिस के लिए 312 इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल्स ERV को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इन वाहनों में 310 मोटरसाइकिल और 2 गाड़ियां शामिल हैं, जिन्हें होंडा इंडिया फाउंडेशन ने कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत करीब 5 करोड़ रूपये की लागत से उपलब्ध कराया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पहल प्रदेश में जन सुरक्षा को और मजबूत बनाने के साथ साथ आपात स्थिति में लोगों को तक शीघ्र सहायता पहुंचाने में अहम भूमिका निभाएगी।
1: जब भी कोई महिला संकट में होगी, EVR पहले पहुंचेगी। जब किसी नागरिक को तत्काल सहायता की आवश्यकता होगी तो EVR सबसे पहले पहुंचेगी। हमने इसको 112 से जोड़ा है। हमारी 112 की गाड़ी है, तुरंत पहुंचती है। कई स्थान ऐसे है वो गाड़ी वहां नहीं पहुंच पाती थी, तो अब वहां पर ये EVR समयबद्ध तरीके पर उनके पास पहुंचेगी और उनको एक सुरक्षा देने का काम करेगी।
0: मुख्यमंत्री ने बताया कि गुरुग्राम को 60 मोटरसाइकिल और 1 गाड़ी, फरीदाबाद को 40 मोटरसाइकिलें और 1 गाड़ी उपलब्ध करवाई गई है। इसके अतिरिक्त प्रदेश के अन्य जिलों को 210 मोटरसाइकिल दी गई हैं। इन वाहनों को विभिन्न संवेदनशील और प्रमुख क्षेत्रों में तैनात किया जाएगा, ताकि आवश्यकता पड़ने पर पुलिस सहायता कम से कम समय में उपलब्ध हो सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश में पुलिस का औसत प्रतिक्रिया समय लगभग 18 मिनट है, जबकि हरियाणा पुलिस ने इसे हटाकर मात्र 7 मिनट 3 सेकंड तक पहुंचा दिया है। यह उपलब्धि पुलिस विभाग की प्रतिबद्धता, बेहतर प्रबंधन और आधुनिक कार्यप्रणाली का परिणाम है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज गुरुग्राम में AI सैंडबॉक्स का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि AI टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म शासन, विकास व नवाचार की यात्रा में मील का पत्थर साबित होगा। मुख्यमंत्री ने गुरुग्राम में मेक इन हरियाणा औद्योगिक नीति भी जारी की। प्रदेश में 5 लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य लेकर जारी की गई इस नीति के पहले ही दिन 1,10,000 करोड़ रूपये के निवेश प्रस्तावों के AOU हुए। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री ने 9 नई सेक्टोरल नीतियों और 1 स्मार्ट निवेश सुविधा पोर्टल भी जारी किया। इस अवसर पर उद्योगपतियों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा,
2: पिछले कुछ घंटों में मेक इन हरियाणा पॉलिसी की 9 नई सेक्टोरल नीतियों को, 1 स्मार्ट निवेश सुविधा पोर्टल और लगभग 1,10,000 करोड़ रुपए के MOU और हैपनिंग हरियाणा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लोगो का आज उद्घाटन हुआ। सिंगल विंडो सिस्टम की किसी व्यक्ति को क्लीयरेंस लेने में कोई समस्या न आए, उसे ऑफिस के चक्कर न काटने पड़े, हमने इस बात को सुनिश्चित किया है और आज उस पोर्टल को लॉन्च किया है।
0: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुग्राम के महाराणा प्रताप स्वर्ण जयंती पार्क में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में राज्यव्यापी योग अभ्यास अभियान का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि 21 जून तक हर स्तर पर योग अभ्यास शिविर आयोजित किए जाएंगे।
1: बड़े स्तर के ऊपर योग को मनाने के लिए इस पखवाड़े में हर जिला, ब्लॉक, पंचायत, गांव, वार्ड, हर स्तर के ऊपर योग को हर रोज अपने जीवन का दैनिक हिस्सा बनाएंगे। योग की जो थीम रखी गई है वो वृद्धावस्था से योग, और हमने हरियाणा के अंदर योग युक्त हरियाणा, नशा मुक्त हरियाणा थीम की है। युवाओं में योग के साथ जुड़ करके एक नई ऊर्जा का संचार, शरीर में स्फूर्ति आती है और शरीर ज्यादा काम करने के लिए तैयार होता है।
0: मुख्यमंत्री ने कहा कि योग ने हजारों वर्षों से मानवता को संतुलित स्वस्थ और आध्यात्मिक जीवन की राह दिखाई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने योग को विश्व पटल पर स्थापित किया और आज पूरी दुनिया इसे अपना रही है। मुख्यमंत्री ने युवाओं से योग को अपनाने और नशे से दूर रहने का आह्वान भी किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज गुरुग्राम में शिकायत निवारण समिति की बैठक में रखे गए 16 मामलों में से 13 का मौके पर समाधान किया। मुख्यमंत्री ने बताया,
3: टोटल 16 मामले थे, 16 में से 13 का समाधान हुआ है, 3 को पेंडिंग रखा गया। इसी प्रकार सेक्टर 4 से संबंधित वहां पर कई समस्याएं थी, सड़कों की स्थिति की रिपोर्ट ली गई है, अगर कहीं कोई सड़क टूटी हुई है तो उसका टेंडर लगा हुआ है और जल्दी ही उसके ऊपर काम शुरू हो जाएगा। कुछ लोगों ने डायरेक्ट भी एप्लीकेशन दी है, उन एप्लीकेशन की विभाग से भेज करके जिसकी भी जो समस्या है उसका समाधान किया जाएगा।
0: प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताजा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध है। आज सुबह अंबाला शहर के नजदीक गांव मंडोर स्थित एक गत्ता फैक्ट्री में भीषण आग लग गई, जिसमें लाखों रुपयों का सामान जलकर राख हो गया। 7 दमकल गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया गया। दमकल विभाग के कर्मचारी सतीश ने बताया कि आग लगने की सूचना मिलने के बाद दमकल विभाग की टीमें तुरंत मौके पर पहुंची।
4: अभी इन्होंने काम चालू करा ही था, 10:09 के बाद हमारे पास कॉल आती है कि हमारी जो नया प्लांट है उसमें आग लगी है। तो हम तभी अंबाला सिटी से 3 गाड़ियां लेके निकले, 2 गाड़ियां हमने अंबाला कैंट से मंगवाई, उसके बाद आग ज्यादा होने की वजह से 1 गाड़ी और अंबाला कैंट से मंगवाई, 1 गाड़ी अंबाला सिटी से, और 7 गाड़ियां लेके हम यहाँ मौके पर पहुंचे हैं। आग अभी नियंत्रण में है।
0: उप पुलिस अधीक्षक ने बताया कि फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है, इस हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है।
5: हमें सुबह पता चला 10 के अराउंड की भी मंडोर में फैक्ट्री में आग लगी है। हम यहाँ पर पहुंचे, फायर ब्रिगेड को फोन करके दमकल की गाड़ियां बुलाई गई, इसमें एक पूरा शेड खत्म हो गया, लेकिन कोई कैजुअलिटी अभी तक रिपोर्ट हुई नहीं है। अब आग बुझ गई है, देखा जाएगा अभी कितना नुकसान हुआ है। जो फैक्ट्री के सारे वर्कर्स उनकी लिस्ट चेक करा कि सब बाहर है। प्रिलिमिनरी इंक्वायरी पे ये लग रहा है शॉर्ट सर्किट हुआ है। जब आग बुझी है तब अब डिपार्टमेंट चेक करेगा भी इसका मेन रीजन क्या था।
0: कुरुक्षेत्र के लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल में नाबालिग से कथित यौन उत्पीड़न मामले के आरोपी कंसल्टेंट डॉक्टर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कंसल्टेंट डॉक्टर पर आरोप है कि इसी डॉक्टर ने नाबालिग के साथ अपने ओपीडी के कमरे में कई बार दुष्कर्म किया। कुरुक्षेत्र थाना प्रभारी सुरेंद्र सिद्धू ने बताया कि आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है।
6: तो उसके फादर साहब ने हमें दरखास्त दी, उस दरखास्त के 6 और 10 पॉक्सो एक्ट में FIR दर्ज की गई है और SSP साहब के दिशा निर्देश में हमने इसमें बड़ी त्वरित कार्रवाई करते हुए उस डॉक्टर सैली जो कि सिविल हॉस्पिटल कैथल से एक CMO रिटायर्ड है उसको हमने गिरफ्तार कर ली। इन्वेस्टिगेशन हम इस कर रहे हैं और इसे पूछताछ भी की है। एक बात और सामने आई है कि 2017 में भी इसके खिलाफ एक FIR रेप की रजिस्टर है और अभी उसमें भी हम देख रहे हैं मामला किस स्टेज पे है। इस मामले में SSP साहब के दिशा निर्देश अनुसार इस गहन से जांच की जाएगी। मामला तो 29 तारीख का, किसी भी डॉक्टर ने या किसी भी स्टाफ ने भी इस मामले को दबाया है या छुपाया है उसके खिलाफ भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
0: पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश कर 2 दिन के रिमांड पर लिया है। हरियाणा महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया ने कुरुक्षेत्र के अस्पताल में नाबालिग लड़की के उत्पीड़न का कड़ा संज्ञान लिया है। उन्होंने अधिकारियों से गहन जांच के आदेश दिए हैं।
7: व्यक्ति पहले भी इस तरह के पाप करके घटिया हरकतें करके जेल जा चुका है, फिर दोबारा लगाया गया है। मैंने यही संज्ञान लेने के लिए हमारी हरियाणा की एक बहुत ही काबिल अफसर सुमिता मिश्रा सिंह ACSL को एक पत्र लिखा है जिसमें वो पूरा गहराई से संज्ञान लें कि किसने इस व्यक्ति को दोबारा लगाया, क्यों लगाया, किसकी अप्रोच से लगा, जो व्यक्ति इस तरह की हैवानियत पहले भी कर चुका है उसको क्यों मौका दिया गया और वो कौन व्यक्ति था जो इसके पास विमेन पेशेंट भेजता था। ये तो इनके अपने डिपार्टमेंट के व्यक्ति ने कल मैं मीडिया में देख रही थी बयान दिया। तो ये बहुत सीरियस मैटर है, इसको हल्काई से ना लिया जाए।
0: मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुग्राम से हरियाणा पुलिस के लिए 312 इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल को झंडी दिखाकर रवाना किया। इसी के साथ ही प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।
8: दीदी नौकरी लग गई।
9: अरे वाह, बधाई हो।
8: तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग।
9: हाँ दी, नया मोबाइल।
8: अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे।
9: इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है।
8: पहले बजट बनाना सीखो फिर खर्च करो।
9: पर दीप,
8: देखो कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम।
9: हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा।
8: अच्छा।
10: आरबीआई कहता है,
11: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
12: आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है, प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि जगत।

0: जब व्यापार के प्रचार की हो बात तो अपनाएं आकाशवाणी का साथ। हर दिल, हर घर और हर जन, हर वर्ग को जोड़ने का है साधन। विश्वसनीय, असरदार और हम सब का हम सफर आकाशवाणी रोहतक है सदा तत्पर। हमारी आवाज आपका प्रचार, हो जाएं समृद्ध होने को तैयार। अपने ब्रांड को विज्ञापन के जरिए जन जन पहुंचाने के लिए आज ही संपर्क करें आकाशवाणी रोहतक।
1: कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सारे बण भाइयों ने अशोक भाई राम राम। भाई गर्मी बहुत तेज पड़ना रही है, तो दो तीन दिन तो बस चलो रात से मिल रही है और मतलब कुछ ठंडक सी मिल रही है। कहने मतलब ये है कि वह जो गर्मी है, गर्मी से तो हमने इसमें बचाव तो चलो होया दो तीन दिन खातिर, लेकिन हमने इसमें और भी देखना है कि वह गर्मी तो और भी ज़्यादा पड़ सके और भी बढ़ेगा तापमान, तो उसमें अपना भी, खुद का भी, अपने पशुओं का भी और अपनी फसलों का भी ध्यान रखना है। और क्योंकि भाई आज 1 जून है, तो आज हमारा एक विषय रहेगा इस माह के कृषि कार्य, जो इस महीने में हमने के कृषि कार्य करना है और के किन किन फसलों की बुवाई करनी है और किन किन की हमने देखभाल करनी है, ये सारी चीज़ें इसमें यानी पूरा महीने का लेखा जोखा हमने तैयार करना है। तो बात करा इसमें कपास की, कपास फसल की बात यह है जो इसको पहला पानी है वह उस दिन से पहले हमने उसकी गोड्डी जरूर कर दी, यानी निराई गुड़ाई जरूर कर ले, इससे एक तो घास फूस नष्ट हो जाएंगे और दूसरा खेत में नमी भी इसमें बनी रहेगी। और जहाँ तक हो उसके तो उसमें जितना देर तो हो ना, पहला पानी तो कपास में तो देर से देर में ज़्यादा लगाओ, क्योंकि इसकी जड़ें इतनी देर ज़्यादा नीचे तक चली जाएँ और पानी नीचे तक लेने लग जाए। और फसल की छटाई भी है, जो फालतू पौधे हैं उन लाइना में तो निकाले भी जा सके हैं। और पौधे की दूरी कम से कम 30 सेंटीमीटर है और जो शंकर कपास है उसमें 60 सेंटीमीटर, यानी जो शंकर किस्म में तो हमने रखनी है 2 फिट का और दूसरी किस्म में हमने 1 फिट का फासला रखना पौधा दूरी। और जिस तरह कपास में भाई आप देखोगे पहला पानी देर तक लगाओ, जेकर करा भाई 45 से 50 दिन हो जाए उस टाइम पर लगानी है। और सूखी गुड़ाई कर दें तो और भी बढ़िया, जो स्टॉम्प है या 1.25 लीटर प्रति एकड़ का हिसाब से हमने 200-250 लीटर पानी में इसका घोल बना करने और उपचार के पश्चात हमने इसमें कर देना है, सिंचाई के टाइम पे ये लगा देना है। हाँ, इसमें एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है, जो 2,4-D है ना दवाई या बहुत नुकसानदायक है इसके लिए, तो इससे तो हमने बचना है भाई। और यहाँ तक ये बात है, अगर मान लिया पिछली फसल में आपने रबी की फसल में उसमें टंकी थे जो 2,4-D का इस्तेमाल करा था, छिड़काव करा था, अगर वो टंकी भी इसमें इस्तेमाल कर दी तो उसमें भी नुकसान ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए उसका ध्यान रखना है भाई आपने। तो 2,4-D तो जितना बचा जाए उतना उससे बढ़िया रहेगा, टंकियाँ तो हमने उसमें बचाना है अभी इसमें। हाँ, इसमें एक चूड़ा या थ्रिप्स कह दें उसका भी काफ़ी प्रकोप है और उसने रोकने खातिर हमने क्या करना है, 250 मिलीलीटर रोगो रही है 30% ताकत की दवाई है, 150 लीटर पानी में इसका घोल बना करने और छिड़काव कर देना है। कोणदार दबों से बचाव खातिर भी हमने अपना इसके लिए इंतजाम करना, इसके लिए 6 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन है या फिर 600 ग्राम इसमें कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है और 150 लीटर पानी में इसका घोल बनाकर हमने छिड़काव कर देना है। मीली बगते भी बचाव करना है, इसके लिए नदी नालों सड़कों जो मेड है अपने पे नाली है उन पे हमने किनारे पर जो खरपतवार हो गए हैं या खासकर कांग्रेस घास उसको तो हमने नष्ट कर देना है, तो जो मिली बग है इसके पीछा छूट जाएगा। तो ये तो इस तरह कपास का यानी पहला पानी हमने निराई गुड़ाई कर लिया और जब ये 45-50 दिन की हमारी फसल हो जाए कपास की उस टाइम पर लगाना, और 2,4-D के जिन यंत्रण में हमने उसका प्रयोग कर रखा है उससे अपने आप को बचाना है भाई। बात इसमें गन्ने ही करा तो समय समय पर इसकी सिंचाई करते रहे और खरपतवार इसमें निकालते रहे। और एक बात का इसमें यह देखना है, ध्यान देना, जो नाइट्रोजन की तीसरी मात्रा ना इस महीने का आखिरता ही हमने दे देनी है, क्योंकि अगर फिर बरसात का मौसम शुरू हो जाए खरपतवार हो जाएंगे, ज़्यादा उगने लग जाएंगे और जितना भी हम खाद देंगे सारे खरपतवार लग जाएगा, हमारी फसल का नहीं लगेगा, तो ये ध्यान रखना है। इसमें हमने 45 किलो यूरिया है उसका छिड़काव कर देना है भाई, या फिर न्यू कर ले भाई अपना पानी दे करने और फिर उसके बाद जब बत्तर आ जाए फिर अपना उसमें यूरिया का छिड़काव करके ना फिर उसकी एक निराई गुड़ाई कर दें, या फिर पहले निराई गुड़ाई कर लें और फिर छिड़काव कर दें उसके बाद फिर उसमें पानी लगा दें भाई। कांगियारी का प्रकोप उसका इसमें तो इसमें क्या करें, उसने पौधन के एक तो पॉलीथीन ऊपर ढक कर जब उसको उखाड़े और फिर पौधन जड़ते उखाड़ के ना कि दूर ले जाकर उसने जला दें भाई। और इसमें एक ये देखे हुए जो मोटी फसल है, मोटी फसल में इसमें कंसुआ है उसका प्रकोप ज़्यादा हो चुका है। इसमें 2.5 लीटर है क्लोरोपायरीफास है 20% ताकत के प्रति एकड़ फसल में सिंचाई के टाइम पर देनी है। काली कीड़ी आक्रमण भी इसमें हो चुका है, इसमें 400 मिलीलीटर क्लोरोपायरीफास है 20% ताकत की दवाई है, 400 लीटर पानी में इसका घोल बनाकर छिड़काव कर देंगे। परजीव या पायरला है इसकी भी रोकथाम करना बहुत जरूरी है, इसको लिए 400 मिलीलीटर मेलाथियान 50% ताकत की दवाई और पानी की मात्रा यह रहेगी 400 लीटर पानी रहेगा इसका छिड़काव। और हाँ एक चीज़ और हो जाए, इसके परजीवी भी आ सके, तो परजीव ले आकर इसमें खेत में जगह जगह पर छोड़ दे जाए, तो इसमें जिस तरह ये करनाल है शुगर मिल में हमने ये मिल जाए वहाँ से ले आकर ने और इसका वो छोड़ दिया जाए तो इसमें पायरलन या अड़करन वो अपने आप ख़त्म कर देंगे। माइट या अष्टपदी है इसमें, इसकी रोकथाम खतर 600 मिलीलीटर रोग और है 30% ताकत और 250 लीटर पानी में इसका घोल बना करके उन्हें एक एकड़ में छिड़कना है। ध्यान ये रखें पानी पूरा ले 250 लीटर ही नहीं दें। और ये कुछ अक्षेत्र हम ये देखा हुआ चोटी बेदक है टॉप बोरर जिसने काफ़ी नुकसान कर दिया, इसके लिए जून के आखिर में हमने ये करना है 13 किलोग्राम को कार्बोफ्यूरान है या 3G का नाम तो जाना उसने कीटनाशक इसने एक एकड़ के हिसाब से इसने छिड़काव हमने

कर देना है, 13 किलो एक एकड़ के हिसाब से उसमें लेनी है। और एक बात इसमें बैसाखी मूंग की करा तो भाइयों, इसमें जो 70-80% है जो हमने बैसाखी मूंग की बिजाई करी थी, 70-80% उसमें फलियां आ गई होंगी तोड़ के ने, और अपनी फसल ने फिर उसकी कटाई करने में। और कटाई का ये है कि वह जो हरी खाद का इसमें प्रयोग कर लेंगे तो सबसे बढ़िया रहेगा। और ये देख लेना है कि वह जो हरी खाद के तौर पर अपने कर लेना है और उसमें अपने इसके इस्तेमाल कर लेंगे। बात इसकी बाजरे ही करा, बाजरे की बात भी ये है भाई, इसका सही टाइम आ गया। उन्नत किस्म इसमें HH 50B 50 60 67 ये संशोधित हैं, HH B 94 है, 117 है वह, HH B 140 197 216 223 226 234 272 299 311 ये है। और मिश्रित में है 10 व 20 के बीज को आप इसमें ले सको। शंकर बाजरे का बीज ये हर साल हमने नया लेना है, वो पुराना नहीं लेना है इसमें। और 1 जुलाई से ले 15 जुलाई तक हम इसके बाजरे की बिजाई कर सका है इसमें देश का। और भाइयों आज सोमवार है, जिस तरह आपने पता है कि वह साप्ताहिक समाचार समीक्षा होगी और उसका प्रसारण चंडीगढ़ के अंदर से रिले कराया जाएगा भाई, तो उसमें ये समय उसका भी हो गया है, तो उसमें साप्ताहिक समाचार समीक्षा का इंतज़ार करें तो वो सुन लें भाई।

0: हरियाणा राज्य की साप्ताहिक समाचार समीक्षा। लेखक हैं वरिष्ठ पत्रकार संजीव शर्मा, वाचिका सुकीर्ति। भारतीय राजनीति में पिछले 12 वर्ष नए आयाम स्थापित करने वाले रहे हैं। भारत ने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक व अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी नई पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार के कार्यकाल में 12 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इन वर्षों में प्रत्येक भारतवासी ने आए दिन नए भारत की तस्वीर को देखा व महसूस किया है। 26 मई 2014 को नरेंद्र मोदी ने भारत के 14वें प्रधानमंत्री के रूप में पद व गोपनीयता की शपथ ग्रहण की। शपथ लेने के बाद कार्यभार संभालते समय पहले दिन ही खुद को प्रधानमंत्री की जगह प्रधान सेवक कहा और पिछले 12 साल मोदी ने खुद अपने काफिले का प्रोटोकॉल तोड़ा ताकि किसी एम्बुलेंस को रास्ता मिल सके। विदेशी राष्ट्राध्यक्षों के भारत आने पर वे उन्हें दिल्ली के बंद कमरों से निकालकर देश के अलग अलग राज्यों में ले गए, जिससे दिल्ली केंद्रित वीआईपी डिप्लोमेसी का अंत हुआ। इन 12 वर्षों में विश्व के कई देशों ने विभिन्न मोर्चों पर भारत से सहयोग की धर्म निभाया। इस अवधि के दौरान सबसे बड़ा कार्य बेटियों के सम्मान तथा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कार्य हुआ है।
1: केंद्र सरकार का फोकस केवल महिला विकास नहीं बल्कि महिलाओं के नेतृत्व वाला विकास रहा है। गांव की रसोई से लेकर संसद तक, बैंक खाते से लेकर डिजिटल भुगतान तक और सामाजिक अधिकारों से लेकर राजनीतिक प्रतिनिधित्व तक पिछले 12 वर्षों में महिलाओं के जीवन में कई बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना मोदी सरकार की सबसे चर्चित महिला केंद्रित योजनाओं में रही। अब तक 10 करोड़ से अधिक गरीब महिलाओं को मुफ्त LPG कनेक्शन दिया जा चुका है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत देश भर में 11 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण किया गया। ग्रामीण महिलाओं के लिए यह योजना केवल सफाई अभियान नहीं बल्कि सम्मान और सुरक्षा से जुड़ा बड़ा बदलाव साबित हुई है। पहले महिलाओं को खुले में शौच के लिए अंधेरा होने का इंतजार करना पड़ता था। अब घरों में शौचालय बनने से उनकी सुरक्षा और गरिमा दोनों बढ़ी है। मोदी सरकार ने 3 तलाक की प्रथा को कानूनन अपराध घोषित कर इसे मुस्लिम महिलाओं के अधिकार और सम्मान से जोड़कर पेश किया। पिछले 12 वर्षों में डिजिटल इंडिया अभियान ने गांवों और कस्बों में हर वर्ग को टेक्नोलॉजी से जोड़ने का काम किया है। आज बड़ी संख्या में महिलाएं दुकानदार, चाय विक्रेता, रेहड़ी फड़ी वाले मोबाइल बैंकिंग, डिजिटल भुगतान और ऑनलाइन सेवाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं। आज पूरा देश जनधन, आधार तथा मोबाइल पर केंद्रित है। मोदी सरकार ने आधार कार्ड को देश के प्रत्येक नागरिक की पहचान बनाया। वर्ष 2014 में डिजिटल इंडिया अभियान की शुरुआत हुई। आज सरकार के पास प्रत्येक किसान, महिला तथा अन्य लाभार्थी का डिजिटल ब्यौरा मौजूद है, जिसकी मदद से दिल्ली में बैठी सरकार भारत के किसी भी कोने में रहने वाले लाभार्थी के खाते में DBT के तहत धनराशि ट्रांसफर कर रही है। भारत में वर्ष 2025 तक 56 करोड़ 16 लाख जनधन खाते खुल चुके थे, जिनमें 2,60,000 करोड़ की धनराशि जमा हो चुकी है। 2014 में हमारे देश में 25 करोड़ इंटरनेट यूजर थे, जो आज 97 करोड़ तक पहुंच गए हैं। देश में रोजाना UPI से 60 करोड़ ट्रांजेक्शन हो रही है, जिसमें 86,000 करोड़ का लेन देन होता है। छोटे दुकानदार व रेहड़ी वाले QR कोड का इस्तेमाल कर रहे हैं। पिछले साल UPI के जरिए 24,162 करोड़ ट्रांजेक्शन हुए, जिसके माध्यम से 314 लाख करोड़ का लेन देन हुआ। 2016 में जब UPI को लॉन्च किया गया तो उस वर्ष केवल 7,000 करोड़ का लेन देन हुआ था। हमारे देश में उससे पहले ऐसा कोई सिस्टम नहीं था। हमारे देश में वर्ष 2016 में मात्र 500 स्टार्टअप थे। वर्ष 2025 में इनकी संख्या बढ़कर 2 लाख से अधिक हो गई है। इसके माध्यम से 22 लाख युवाओं को सीधा रोजगार मिला है। देशवासी अपनी दैनिक जरूरतों को पूरा करने के बाद शेयर बाजार तथा म्यूचुअल फंड में भी निवेश कर रहे हैं। वर्ष 2013 में भारत में DMAT खातों की संख्या 2 करोड़ थी, यह आज बढ़कर 22 करोड़ तक पहुंच चुकी है। वर्ष 2014 में हमारे देश में 91,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे थे। 2025 में यह बढ़कर 1,86,204 किलोमीटर हो गए। मोदी सरकार से पहले देश में एक दिन में 12 किलोमीटर हाईवे का निर्माण होता था, जबकि 2025 में यह 34 किलोमीटर तक पहुंच गया। 2018 में मोदी सरकार ने देश में नई स्वास्थ्य क्रांति की शुरुआत करते हुए आयुष्मान भारत योजना शुरू की। आज देश में 44,08,75,000 आयुष्मान कार्ड धारक हैं, जिनका 5,00,000 तक का मुफ्त इलाज हो रहा है। वर्ष 2014 में 15 करोड़ एलजीपी कनेक्शन थे, जो 2025 में बढ़कर 33 करोड़ तक पहुंच गए हैं। इसी के साथ ही समाचार समीक्षा समाप्त हुई। नमस्कार।
2: वही कार्यक्रम में आपका एक फिर स्वागत है। और बात कर रहे थे इस माह के कृषि कार्य, इसमें बाजरा ही बात कर रहे थे, तो इसमें एक एकड़ के लिए हमने 1.5 से 2 किलो बीज लेना है बाजरे का। बात इसमें अरहर की करा तो अरहर की समय भी एक एक कृषि का इस महीने में के आखिर के सप्ताह में हम बिजाई कर सकें, तो इसके लिए जैसे किस्में हैं, मानक है H77-216 है इसका नाम तो जाना, या UPAS-120। एक और किस्म है पारस है H82-1, यह बहुत बढ़िया किस्म है, 130-140 दिन में पकन तैयार हो जाए। और इसमें हमने पूरी कर लेनी इसमें, और 5-6 किलो बीज लगेगा एक एकड़ खातिर। इसमें हमने ये ध्यान रखना है, लाइन तो हमने खूडा में इसकी बिजाई करनी है, और खूट से खूट का फासला 50 सेंटीमीटर रखना। राइजोबियम का टीका जरूर लगा लें, क्योंकि ये दलहनी फसल है, इसमें जरूर लगा लेना चाहिए हमने। बात मूंगफली करा तो मूंगफली में भी ये है भाई, इस महीने का आखिरी सप्ताह तक हमने इसकी बिजाई कर लेनी है मूंगफली की। और जो इसकी जो मुख्य फसलें हैं, किस्में हैं, वो उनमें है MH4 और एक किस्म और है पंजाब मूंगफली नंबर 1, इनकी सिफारिश करी जाए। बुआई हमने इसके लाइना में करी है, लाइन तो लाइन का फासला हमने 30 सेंटीमीटर रखना है। और ये देख लें कि भाई इसमें कम से कम जो बीज है, बीज हमने ये लगेगा MH4 का तर तो हमने लेना है 32 किलो बीज, वो गिरी लेनी है उसकी। और पंजाब मूंगफली नंबर 1 खातिर हमने लेना 34 किलो बीज, इस पर डाला हमने लेकर ने, और इसकी बिजाई हमने कर देनी है भाई। बात इसमें तिल की करा तो तिल के लिए भी ये है भाई, अगला महीने इसके जो मानसून की जो ही आओगी भाई, उसमें बरसात आ जाए, उस टाइम पर हमने इसकी बिजाई शुरू कर दी पहली बरसात पर इसमें। और जो इसकी किस्में हैं वो है हरियाणा तिल नंबर 1 है, HT2 है, इनकी सिफारिश करी जाए, अड़की ज़मीन में है, और एक एकड़ के लिए इसमें हम 2 किलो बीज ले सकें, उसकी बिजाई करी जा सके 2 किलो बीज की। इसमें लाइन तो लाइन का फासला हमने 30 सेंटीमीटर रखना है, और पौधे तो पौधे का फासला हमने 15 सेंटीमीटर रखना है। बात इसमें मकई करा तो मकई भी किस्में बहुत बढ़िया बढ़िया किस्में, HHM-1 है, HHM-2, HHM-4, HM-5, HM-10 और HM-11 है। एक और किस्म है HQPS-5, HQPS-4 और HQPS-1, ये किस्में हैं, ये बहुत बढ़िया किस्में हैं। और एक एकड़ के लिए इसमें 8 किलो बीज लेना है हमने इसमें। हाँ, इसमें एक चीज़ का और ध्यान रखा जा सके भाई, इस टाइम पर जैसे गेहूं का बीज है, हमने बीज उसका तैयार कराया जा सकता है कि वह 8-4 घंटे हमने इसको पानी में भिगोना और फिर उसको धूप में रखना है। धूप में रखा अच्छा, धूप लागे पास इसको फिर सुखा कर, क्योंकि ये धूप का उपचार हो जाए और फिर अपने उसने कहीं सुरक्षित जगह पर रख लो और आगे बीज का काम आपका होगा ही। तो इसमें आपने अगर जिस तरह का धूप का उपचार कर लिया, तो उसके बाद आपने किसी डाल का उपचार करने की जरूरत नहीं, आपका बीज सुरक्षित हो जाएगा और सही हो जाएगा। और भैया इसमें एक सोयाबीन की बात करा तो जून और आखिर में जुलाई का आरंभ में इसकी हम बिजाई कर सके हैं। अच्छे जमाव खातर जिस तरह जमीन में पूरी नमी होनी चाहिए, 2 पड़ेवे कर लें, एक बार अच्छा पड़ेवा कर बाद फिर उसके बाद हमने उसमें फिर दोबारा तो कर लिया पड़ेवा कर दिया। 30 किलो इसमें बीज लगेगा और इसमें लाइना में बिजाई करनी है, लाइन से लाइन का फासला हमने 45 सेंटीमीटर या 1.5 फुट रखना है। और बात इसकी ज्वार की भी करा, क्योंकि हरे चारे के लिए बात आओ तो हरे चारे के हमने इसमें जरूर इस टाइम पे कर लेनी चाहिए पशुओं के लिए। इसमें किस्में हैं SSG-69-3, SC-136-173, 308, HJ-541 और HJ-513 किस्में हमने जून 25 जून से लेकर ना हम 10 जुलाई तक इसकी बिजाई कर सका। बीज इसका 20 से लेकर 24 किलो बीज लगेगा। सुडान घास है, इसके लिए हमने 12 से 14 किलो बीज लेना है हमने। इस तरह हमने इसके चारे के लिए हम कर सका है। बात इसमें हमने सब्जी फसलें भी करेंगे, लेकिन उससे पहले बात आओ थी मनोरंजन की, तो आपने रागनी सुनवा दिया, गायक कलाकार रहेंगे करमवीर मूर्खी।

भैया निरागनी सुनी गाय कलाकार थे करमबीर मुरखे, और जिक्र करे थे इसमा के कृषि कार्य, और बात फसलें कर ली थी भाई जो सब्जी फसलें हैं उनकी बात करें, टमाटर है, बैंगन है, मिर्च है या फिर कद्दू जाती वाले हैं। तो टमाटर में है जिस तरह ये देख लें जो अध पके फल हैं वह उन तोड़कर बाजार में भेज दें और इसकी लगातार अपनी सच्चाई करते रहें भाई, और ज़रूरत पड़े जब भाई इसमें कीटनाशक दवाइयाँ प्रयोग करें, ये ना करें कि भाई जल्दी जल्दी कि भाई कोई ना हो गया छिड़क दें या दवाई ले आए तो छिड़कनी ज़रूरी है। हाँ एक चीज़ और, इसमें खरीफ फसल के लिए जो टमाटर के हैं बीज के हम नर्सरी में बिजाई कर सका है, इसकी उन्नत किस्म में इशार है, अरुण इशार, ललित है, इशार लालिमा है, इनमें से कोई से एक किस्म लेकर आप उसकी बिजाई कर सका है, और 200 ग्राम बीज लगेगा एक एकड़ के लिए, और नर्सरी को लगभग हमने ये करना है 20 सेंटीमीटर थोड़ा ऊंचा कर लेना है ज़मीन पे, जाकि ज़्यादा वर्षा हो तो उसमें कोई कीड़ा डाल के हमारी नर्सरी में नुकसान ना हो। हाँ इसमें बीज का उपचार ज़रूर कर ले, जिस तरह कैप्टन है या थीराम है दवाई, कोई सी एक दवाई ले ले, और इसमें 1 ग्राम दवाई और 400 ग्राम इसमें बीज ले लेना है, और उस तरह इसका उपचार कर लेना है।

कि वह 4-5 दिन में पक जाए, वो तोड़ लें और वो बाज़ार में ले जाएँ सन। फिर उसके बाद स्प्रे कर दें। स्प्रे करने के बाद कम से कम कोई सी भी अपनी फसल है उसके फल हमने 10-12 दिन तक हमने नहीं तोड़ने, ये ज़रूर ध्यान रख लें। और इसको जो 400 मिलीलीटर दवाई बताया मेलाथियन, इसको 50% ताकत की दवाई है, या 200-250 लीटर पानी में इसका घोल बनाकर छिड़काव कर देना। फल छेदक भी कीड़ा भी है, इसमें भी काफ़ी नुकसान करते हैं तीनों फसलों में। इसके रोकथाम के लिए 75 मिलीलीटर फेनवल रेट से या 20% ताकत की दवाई रहेगी, या फिर 200 मिलीलीटर हमें डेल्टा मैथ्रीन लेशका है या 2.8% ताकत की दवाई है, या इसमें एक दवाई और लेशका साइपरमैथ्रीन 60 मिलीलीटर है, ये 25% ताकत की दवाई रहेगी। इनमें से कोई सी एक दवाई लेकर 200-250 लीटर में पानी में इसका घोल बनाकर छिड़काव कर दें। हाँ, ये ज़रूर ध्यान रख लें, जब दवाई का प्रयोग कराएँ उससे पहले ना जो ग्रसित फल है ना और या पौधा है उसने उखाड़ लें या तोड़कर एक लौ ले जाकर नष्ट कर लें। तो जो ये दवाइयाँ छिड़काव कराएँ तो जो फल छेदक कीड़ा है इससे भी छुटकारा मिल जाएगा। ये बात उसमें बैंगन में है भाई, बैंगन में भी हमने ये करना है कि जो खरीफ फसल के लिए है नर्सरी में बिजाई कर लें, उसमें जो उसकी उन्नत किस्में हैं वह BR 112 है, SR शामिल है या H8 का नाम तो जाना, SR प्रगति है और SR बार है। इसमें हमने 200 ग्राम बीज लेना है एक एकड़ के लिए, और ध्यान ये रखें वे इसका बीज का उपचार जरूर कर लें, थायराम या कैप्टन दवाई थे कौन सी एक दवाई थी इसका जरूर कर लें भाई। और फिर इसमें मिर्च की बात करा तो भाई मिर्च में भी ये बात है कि वह फसल ने अपने दाऊ जो तैयार हो रही है तोड़ाई करें और ले जाकर अपने उसने बिजाई कर बेचा। साथ में इसमें हमने जब मान लिया जो थ्रिप्स वगैरह तो 400 मिलीलीटर जिस तरह हमने इसमें बताया था टमाटर में बताया था वो इसमें तो मेलाथियन की दवाई है इसका प्रयोग कर लें, यानी हल्की दवाई करें उसमें, ज़्यादा उसमें ना करें। और जो किस्में ही हम इसमें बिजाई कर सके हैं वो जो बढ़िया किस्में NP 40A है, PanC 1 है और पूसा ज्वाला है, 400 ग्राम बीज लगेगा एक एकड़ के लिए, और बीज का उपचार इसमें ज़रूर कर लें भाई, नहीं तो फिर क्या है आगे जाकर कई चीज़ों की इसमें समस्याएँ आ जाएंगे, इसमें ये ध्यान रख लें। और बात है तरबूज और खरबूजा एक रहा तो इसमें भी जो फल पाक रहे उन्हें तोड़ कर और बाजार में ले जाए, और सारी फसल हम ये देख लें कि वह जो अपने नमी जरूर बनाए रखें कि ऐसा ना हो कि वह मान लिया कति सूखा हो जाए तो क्या होगा जो फल हैं वो गिर जाएंगे इसमें। और फिर इसमें फल की जो जिस तरह बताया वह सिंचाई जरूर कर दें, और जितना जल्दी हो सके अपना उसका मीठापन है बरसात से पहले पहले होगा, उसके बाद क्या होगा मीठापन इसमें नहीं रहेगा, ये देख लें। कद्दू जाति वर्गों में भी ये चीज़ है कि वह जो अपनी फसल में एक तो सिंचाई देते रहें यानी नमी बनाए रखें, जो फल पक रहे हैं उन्हें तोड़ लें, और मेलाथियन जिस तरह बताया हल्की दवाई का इसमें प्रयोग करें, ज़्यादा उसका ना करें। और भाइयों ये तो थी भाई, चलो इस मास के कृषि करिए, और ई बा अपने बता दें हमें कुछ इस महीने के बारे में अपने बाजार भाव भी आ रहे हैं, तो बाजार भाव के बारे में भी बता दें। इसमें गेहूं का भाव यो जिस तरह रोहतक में रहा है 2500, सोनीपत में 2530, पानीपत में 2525 रुपये क्विंटल, गुड़गांव में रहा है 2580 रुपये क्विंटल, नरवाना में 2520 और फरीदाबाद में 2600 रुपये क्विंटल। चने का भाव रोहतक में रहा है 6300 रुपये, सोनीपत में 6500 रुपये, पानीपत में इसका भाव रहा 7000 रुपये, गुड़गांव में 6900 रुपये, नरवाना में 6800 और फरीदाबाद में 7160 रुपये क्विंटल चने का भाव रहा। जौ का भाव है रोहतक में 2310, सोनीपत में 2400, पानीपत में 2500, गुड़गांव में 2500 और फरीदाबाद में 2300 रुपये क्विंटल रहा है। सरसों का भाव रोहतक में रहा है 7150, सोनीपत में 6165 और फरीदाबाद में इसका 6300 भाव रहा है। मूंग का भाव रहा है 9800 रुपये रोहतक में, 9500 रुपये सोनीपत में और पानीपत में इसका भाव रहा 9600 रुपये, गुड़गांव में 9900 रुपये, नरवाना में 9800 और फरीदाबाद में मूंग का भाव 9000 रुपये। मसर का भाव रोहतक में रहा है 7900 रुपये फी क्विंटल, सोनीपत में 7800, पानीपत में भी 7800, गुड़गांव में 8050, नरवाना में 8000 और फरीदाबाद में भी इसका भाव 8000 रहा। अरहर का भाव रहा है 10090 रोहतक में, 10400 सोनीपत में, 10250 पानीपत में,

और गुड़गांव में 11,000 रुपये इसका भाव रहा है, नरवाना में 11,000 और फरीदाबाद में 10,600 रुपये क्विंटल रहा है। उड़द का भाव रोहतक में रहा है 10,040, सोनीपत में इसका भाव रहा 10,100 और पानीपत में 10,500, गुड़गांव में भी 10,100 और नरवाना में 10,600 रुपये फी क्विंटल रहा है इसका उड़द का भाव। गुड़ का भाव की बात है भाइयों, जहाँ तक रोहतक में 4,500, सोनीपत में 4,300, पानीपत में 4,490 रुपये क्विंटल और गुड़गांव में 4,600, नरवाना में 4,750 और फरीदाबाद में इसका भाव रहा 5,800 रुपये। चीनी का भाव रहा है रोहतक में 4,400, सोनीपत में 4,420 और पानीपत में 4,480 रुपये क्विंटल। गुड़गांव में 4,450, नरवाना में 4,500 और फरीदाबाद में 5,000 इसका भाव रहा है। प्याज का भाव रोहतक में 1,480, सोनीपत में 1,500, पानीपत में 1,600, गुड़गांव में 1,600, नरवाना में 1,500 और फरीदाबाद में इसका भाव 2,000 रहा है। आलू का भाव है रोहतक में 740 रुपये क्विंटल, सोनीपत में 800 और पानीपत में 1,000, गुड़गांव में 750 रुपये, नरवाना में भी 750 रुपये और फरीदाबाद में इसका भाव रहा है 1,200 रुपये फी क्विंटल। सरसों का तेल का भाव की बात है, 16,600 रोहतक में, 16,600 सोनीपत में और पानीपत में भी यही भाव रहा है, गुड़गांव में 16,500, नरवाना में 16,500 और फरीदाबाद में 16,000 इसका फी क्विंटल का भाव रहा है सरसों के तेल का। तो ये तो थे भाइयों बाजार भाव, और ई भाइयों कृषि जगत कार्यक्रम का तो समय हो रहा समाप्त, और ई सुनेंगे आप कार्यक्रम ग्रामीण संसार। और ग्रामीण संसार में भाइयों जिस तरह ये देखा कि वह एक गर्मी चल रही है, बहुत तेज़ गर्मी आ रही है, और जिस उस गर्मी का हमें ये कैश कहा कि वह अगर जय यूँ ही हाल रहा तो आगे आने वाले समय में बहुत ज़्यादा और दिक्कत होने लग रही है। जो हर साल आप ये देख रहे हो कितनी बढ़ रही है, इसलिए हमने क्या करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाने चाहिए। हर साल वृक्ष जितना हो सके उतने ज़्यादा से ज़्यादा लगा, जितना भी समय मिल जाए, जगह मिल जाए, थोड़ी जगह उसके मिल जाए। लेकिन एक बात और है भाइयों, जिस तरह मैं हर साल देखा है लगाऊँ खूब लगाऊँ पेड़ पौधे, लेकिन वो देखा फिर बाद में वो यूँ क्यों ज़मीन यूँ खाली पाओ। अगर हमें पौधा लगा हम उसकी देखभाल भी करा, जब तक वो छाया नहीं देने लग जाता तब तक हमने उसकी देखभाल करनी है, या फलदार है तो जब तक वो फल नहीं देना शुरू कर देता तब तक हमने उसकी देखभाल करनी, ना तो यह आवारा पशु हैं ये उन्हें खराब कर दें, ख़त्म कर दें। तो इसलिए अगर मान लिया पौधा लगाओ हाँ, तो उस पौधे की देखभाल करना भी हमारी जिम्मेवारी है, उसको बड़ा करना और उसको छायादार है या फलदार है उसको वहाँ तक ले जाना ज़रूरी है। अगर अब ये देखा हर साल, अब आप ये देखो जुलाई में भी है एक पौधा लगा और उसका फ़ोटो तरवा कर बहुत खुश रहे अपने भाई, लेकिन उसका फ़ोटो का क्या फ़ायदा है, जब एक फ़ोटो एक दूसरे को दिखाना ही दिखाना हो गया। उसकी बजाय हम उस पौधे को लगा कर ने और उसको बड़ा कर दें, क्योंकि आप ये देखो जो गाँव में देखे हमने कि भाई ये कह रहे ये फलाना वो है पौधा है, पौधा नाम उसका साथ में उसका नाम था, कारण उसका ये था जिस आदमी ने लगा रखा उसका नाम जब तक वो पौधा रहेगा उस इतने दिन तक वो उसका नाम रहेगा। तो एक बार ये फ़ोटो में लाना, फ़ोटो तरवाना और ये करना उसका वो नहीं है, सबसे बढ़िया ये है कि हम पौधा लगाएं और उसकी देखभाल करा, उसने बड़ा करा उसके साथ, तब जाकर ये पर्यावरण भी शुद्ध होगा और धरती जो हमारी जीवन शैली है वो भी बढ़िया होगी, और ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष होंगे तो उसमें हमें हर तरह से फायदा होगा। नहीं तो ये प्रदूषण इस तरह घेरण ला रहे भाइयों, देखो जिस तरह गर्मियाँ कितना लंबे समय तक और कितनी गर्मी हो जाती है, सर्दी बहुत कम रहेगी, बरसात भी बहुत कम होगी, गर्मी गर्मी बढ़ गई, अनेक बीमारियाँ फैलने लग रही हैं। उसका कारण ये है जो ये पर्यावरण है ये दूषित होने लग रहा है, इसका संतुलन नहीं रहा, और वो खुद हमने ऐसा किया, पेड़ों की कटाई ज़्यादा कर दी और लगाए नहीं। लगाने में भी ये बताया जिस तरह जिक्र कर रहे थे कि फोटो की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया और उसको बड़ा नहीं किया हमने, तो इस ओर हमने ध्यान देना है कि भाई हम उसको बड़ा करें, अगर मान लिया छायादार है तो छाया देने तक, और अगर मान लिया वो फलदार है तो फल देने तक। और तो भाई ये वे बात है कि मनोरंजन की है, आपने एक गाना सुनवा दिया फिल्म में भंवर चमेलिया, गायक कलाकार है विजय कौशिक।

भैया ने विजय कौशिक को सुनिया फिल्म बाबर चमेली में, और भाई वो ई गड़ी कहने देख लो कार्यक्रम में समय और समाप्त अशोक भाई ने जाजे दो सारे बन भैया ने राम राम।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्रामीण संसार, आकाशवाणी का ही रोहतक केंद्र है। मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज पर 7:10 होने को हैं। अगला कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से रिले किया जाएगा।

0: देने की बात करें तो?
1: ये बहुत एक महत्वपूर्ण योजना है सरकार की, जिसके तहत सबसे ज़्यादा प्रायोरिटाइज किया गया है एक हाउस होल्ड की महिला को, क्योंकि हम जानते हैं कि इतने साल हो गए हमारी इंडिपेंडेंस को, लेकिन फिर भी अभी भी इतने सारे हाउस होल्ड्स ऐसे थे रूरल एरियाज़ में, ये रूरल हाउस होल्ड्स को जोड़ने की स्कीम है ज़्यादातर, और इतने सारे हाउस होल्ड्स थे कि हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखते थे, पढ़ते थे। आज तक ऐसी खबरें छप रही थी कि 8-8, 9-9 घंटे तक लोगों को चल के जाना पड़ता है पानी लेने के लिए, या बहुत किलोमीटर्स का सफ़र तय करके दूर दराज इलाकों में लोगों को जाना पड़ता है। जो हिली टेरेन्स हैं उसमें पानी की बहुत ज़्यादा समस्या थी, जो डेजर्ट एरियाज़ हैं खासकर जैसलमेर, राजस्थान और गुजरात, कच्छ के साइड में बहुत सारे ऐसे हमें एविडेंस मिलते थे कि जहाँ पानी की समस्या इतने साल बाद भी आज़ादी के, मतलब ये एक किसी भी देश के लिए कोई अच्छी कन्वीनियंट स्थिति नहीं है,
0: जी
1: कन्वीनियंट पिक्चर नहीं है
0: जी
1: कि आप एक बेसिक सुविधा, जैसे आप पावर की बात कर लीजिए, इलेक्ट्रिसिटी की बात कर लीजिए, या पानी की बात कर लीजिए, टॉयलेट्स की बात कर लीजिए, ये बड़ी बेसिक चीज़ें हैं जो आम तौर पर अभी तक हो जानी चाहिए थी, लेकिन किसी वजह से जो नहीं हो पाई। और आपने सही कहा कि अगर आप स्वास्थ्य लाभ भी देखें इस योजना से, तो बहुत ज़्यादा लाभ होता है, और इस पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनिसेफ, बहुत लोगों ने बहुत सारे रिसर्च और एविडेंस बेस्ड पेपर्स भी निकाले हैं, जिससे ये भी कहा है कि इससे जल जीवन मिशन की वजह से बीमारियों में बहुत कमी आ रही है, चाइल्ड हेल्थ इंडिकेटर्स इम्प्रूव हो रहे हैं, महिलाओं की स्वास्थ्य स्थिति इम्प्रूव हो रही है, और सबसे इम्पोर्टेंट गर्भवती महिला के लिए ये एक बून की तरह आया है, क्योंकि बहुत सारी वाटर बोर्न डिजीजेस गर्भवती महिला को गंदे पानी की वजह से बहुत कुछ सहना पड़ता था,
0: जी
1: और जल जीवन मिशन से क्या हुआ है, ना सिर्फ पेयजल घर तक गया है, बल्कि बहुत सारी, मतलब प्रोडक्टिव टाइम जो महिला का पानी इकट्ठा करने में जाता था, वो अब और चीज़ों में वो व्यस्त हो सकती है, वो सेल्फ हेल्प ग्रुप की मेंबर बन सकती है, वो लखपति दीदी योजना का लाभ उठा सकती
0: जी
1: है,
0: जी
1: क्योंकि उसके
0: जी
1: पास अब वक्त है, घर में पानी आ रहा है। ये सुनने में बहुत छोटी बात लगती है,
0: जी जी
1: लेकिन
0: जी
1: बहुत बड़ा प्रभावी कदम है।
0: जी जी जी अदिति, और इसी क्रम में हम आगे बढ़ें। शुभ, मैं सैनिटेशन की अगर बात करें, स्वच्छ भारत मिशन ये एक फ्लैगशिप मिशन जिसे कहें, और जब भी इसे इम्प्लीमेंट किया गया था उसके पहले शायद, पता नहीं, इस तरह की योजना कभी सुनने को नहीं मिली थी। सैनिटेशन की बात करें, स्वच्छ भारत मिशन जिसे ओपन डेफिकेशन एलिमिनेट ऑलमोस्ट कर दिया गया, मास कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस होल्ड एंड कम्युनिटी टॉयलेट्स, ये कोई छोटी बात नहीं है। शुभ, मैं क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में?
2: हाँ, ये वाला चीज जो आप देखेंगे कि
0: जी
2: पानी का सप्लाई, स्वच्छ भारत मिशन, इन सभी चीजों से जो बदलाव अभी दिख रहा है वो है काफी सिग्निफिकेंट। आप इसके पहले एक आम बात थी कि बहुत सारी जगहों पे ओपन डिफिकेशन और उससे चलते जितने सारे तरह की बीमारियां, उनका खासकर मानसून में फैल जाना, बाकी समय में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स, ये सब चीजें एक आम सरफ चीज था कि भाई होता है, क्या किया जाए। इसमें जो भी जो नेशनल हेल्थ सर्वे के आप डेटा देखेंगे तो सबसे बड़ी बदलाव आप उस डेटा से देख सकते हैं कि ये एक से कहते हैं आपका एक एक मेजरमेंट आ गया है कि कितना और कितना प्रभावी ये सारे बदलाव हुए हैं। अभी आप, मैं आग्रह करूंगा कि कोई आकाशवाणी के जो लिसनर्स हैं, कभी अगर वो ट्रेन का सफर करे, दूर दराज के रास्ते में चलते हुए एक जो कॉमन साइट था ओपन डेफिकेशन का, वो करीब एकदम वैनिश हो गया, और ये बहुत ही बड़ा बदलाव है। इसमें टाइम लगा, इसमें करने में शुरुआत में बहुत सारे हिचक आए, बहुत सारे बिहेवियरल चेंजेस करने पड़े लोगों को, बहुत सारी हिदायतों के साथ साथ बहुत सारे आग्रह का भी इंटरेस्ट चीजें दिया गया, इधर उधर की जैसे कहते हैं शॉर्टकमिंग्स भी आई, लेकिन इतने साल के बाद अब जाके उनका इफेक्ट लोगों के जिंदगी के ऊपर अभी दिख रहा है, और ये एक मैं समझता हूँ कि बहुत ही सिग्निफिकेंट चेंज इसलिए है कि ये एक सॉर्ट ऑफ एक सिविक चेंज आ गया है हमारे देश में बहुत सारे इलाकों में। अब जिन सारी चीजों की बात करें, जैसे ओपन डेफिकेशन, स्वच्छ भारत मिशन, जल जीवन के साथ उज्ज्वला, या उसके पहले जब जैम ट्रिनिटी, इन सब के चलते लोगों में जो एक नया वार्तालाप का एक सिस्टम आ गया, एक नया जैसे कहते हैं आइडियाज का एक कॉम्बिनेशन बन गया है कि ये सारी चीजें तो जिंदगी में होनी चाहिए, इनका ना होना ही आज आश्चर्य की बात लगता है बहुत काफी जगहों पे। ये जिसे कहते हैं सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट, एक बहुत बड़ा चीज है डेमोक्रेसी के लिए, बहुत बड़ा चीज है लोगों में अपना भरोसा बनाने के लिए, अपना कॉन्फिडेंस बनाने के लिए कि हम इससे आगे चल सकते हैं, ये सारी चीजों के लिए हमें दिल्ली का जो लड़ाई है वो जूझना नहीं पड़ेगा। हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ ये सब हमारे लिए ये सारी सुविधाएं उपलब्ध होंगी और वो उपलब्ध रहेंगी।
0: Absolutely, Shubham. Aditi, talking of social security and safety nets, of course, Shubham also mentioned about, the health aspect. Now, health is one thing which just cannot be ignored, that is one. And of course, the importance of it cannot be overstated. If you look at the Western countries, the more advanced economies, they have their own safety nets, they have their own social healthcare schemes and so on and so forth. In India, if you talk of, maybe let's say 10, 12 years or 15 years back or even more, probably there was not much to offer by any of the governments, if I may say, over the years, over the decades, in fact, that they could offer something like that to the common man, especially the poor or maybe the lower middle income group, that kind of. Now, with the Ayushman Bharat scheme coming in, it again revolutionized, the kind of safety net which was so very much required for the common man. Now, this, in fact, has turned out to be the world's largest government-funded health insurance scheme, offering up to 5 lakh rupees per family. Now, how important this is? How significant is this?
1: See, this is extremely significant in the sense that it has helped in very deep penetration of cutting-edge health services across the country. Earlier, what was happening is that for even a very small procedure or a small facility visit, people had to come all the way to AIIMS, New Delhi, or in the north part of the country, they had to go to PGI, Chandigarh. In south, they used to throng Jipmer, Puducherry. These are institutes of excellence in health. Mm. Everybody would have to rush to these institutions because there was no healthcare available next door. See, the concept of healthcare delivery becomes important and successful if you take healthcare services where people are living. So the entire infrastructure under the Ayushman Bharat scheme was conceived around these pillars. The first thing was that you set up health and wellness centers, which are now known by the name of Arogya Mandir. Mm. Different states of the country have it. Some states which did not have it, for instance, West Bengal, where election has just ensured that BJP has won. So they are now going to roll out the Ayushman Bharat landscape there also. Mm. So there are two main pillars of the scheme that you mentioned. First is that you have the community health service through Arogya Mandirs, where you provide basic screening facilities for the community dwellers. Villagers will come there, and they will be able to screen themselves for even some of the major cancers. For example, the most common ones, you can get screenings for cancer of the cervix, for breast cancer, for these kind of cancers. You can get screening and basic facilities. Now, if a referral is found at that level and you are found to be in need of better healthcare delivery, so then you are referred to a higher facility, which could either be a district hospital, a community health center, or if there is a more complicated procedure to be done, then to an even better hospital. And as we know, under Ayushman Bharat, so many private hospitals, not only government hospitals, which are in the government system, have been empaneled. Mm. So now empanelment is being institutionalized. It is not something that can happen overnight. These institutional mechanisms will take years to get working smoothly. But at least a beginning has been made, and there is a lot of evidence available in the Ayushman system, which tells us that major surgeries, for example, knee transplants are happening, cancer care is happening, stents are being provided at a much lower cost. Then you also have a structure of Jan Aushadhi Kendras, where you have, subsidized medicines available for the poor. So the attempt that the government is making is to ensure affordable healthcare delivery, quality healthcare delivery. Why was it done? It was done because there was a lot of study and research that indicated that people who have managed to beat poverty and come out of the poverty line are being pulled back in because of hefty expenditure, out-of-pocket expenditure on health costs. We all know, how costly health can get. God forbid if a certain family has a cancer patient or two patients, we all know that the entire life savings of that person can go in that one treatment. Then you see kidney dialysis centers have been set up across the country. Free dialysis are being provided in government health system. So there's a whole infrastructure being laid down to ensure that the poor are not feeling challenged or debilitated because they have to pay so much from their pocket for health.
0: Correct. Aditi, health, of course, food. जैसा कि हम सभी जानते हैं, एक कहावत जो है, रोटी कपड़ा और मकान. नाउ द नीड फॉर हाउसिंग, अगेन दिस इज अनदर वन थिंग विच अगेन कैन नॉट बी ओवरस्टेटेड. नाउ प्रधानमंत्री आवास योजना PMAY, बोथ द रूरल एंड द अर्बन, द अर्बन पुअर एज वेल, Now, this is another big thing which has really

0: kind of, you know, the entire, you know, the idea, you know, of the government, of the welfare schemes rather, is to instill a sense of security, you know, within citizens, especially when we talk of the rural people and the urban poor as well, rather across the spectrum. Now, PMAY, both rural and urban, how do you see this kind of revolutionizing, especially when we talk of PMAY Urban 2 also now launched, 2.0 also now launched. Now, this is something which is really phenomenal.
1: Yeah, I think like we discussed earlier, you know, the overall policy impetus of the government is basically to create a landscape where the poor not only come out of poverty, but they have a means of dignified living. For dignified living, housing is very important. You know, people are being helped to get access to affordable housing. Like you said, Pradhan Mantri Awas Yojana Grameen is particularly remarkable in the scale that it seeks to achieve. If you look at the sheer numbers, I think Grameen Yojana targets around 5 crore houses by the year 2029. And so far, the data suggests that almost, 3.90 crore houses have been sanctioned and nearly 3 crore have actually been completed and are being distributed through the state system. What is even more important is that these houses are going to people who do not own any immovable assets, like who do not own any property or any land or any house at all. And the system also now is artificial intelligence driven. There are a number of monitoring tools that have been deployed to ensure that the anomalies get detected in time, that only the very genuine beneficiaries get houses, and there's Aadhaar face authentication happening. And what is most important is geotagging of the structures is happening, structures that are being created. Everything is digitally driven. So what is important also is that there is seamless coverage being provided to the beneficiaries of PM Awas Yojana with other schemes of the government. Whoever comes into the system of PM Awas Yojana will automatically get linked to Swachh Bharat Mission, Grameen, Jal Jeevan Mission, Ujjwala Yojana, Surya Ghar Mission and Muft Bijli Yojana.
0: Correct.
1: So there's a seamless coordination and integration of the government system. All that has happened only because of the digital platforms that have been created for the purposes. There are portals where people can apply. Aadhaar is already there, like we discussed, the Jam Trinity is there.
0: Yes.
1: So everything is in place and now the foundation has been laid and now building blocks are being created.
0: True. Shubha, agar hum baat kare Pradhan Mantri ye Mudra Yojana ki, Mudra Yojana ek aisi yojana hai jahan ki humne dekha hai ki lagbhag abhi tak 57 crore se jyada लोन ये डिसबर्स किए जा चुके हैं और ये खास करके महिलाओं के लिए एक बहुत बहुत ही बड़ा एक सहारे का काम कर रहा है, उन्हें अपने पैरों पे खड़ा होने का मौका दे रहा है. वी ऑल नो दैट नो कंट्री, नो इकोनॉमी और नो सोसाइटी रादर कैन यू नो एडवांस विदाउट टेकिंग इनटू द लूप द अदर 50% ऑफ द पॉपुलेशन. नाउ मुद्रा योजना, जैसा कि हमने अभी चर्चा की, 57 करोड़ प्लस लोन अभी तक डिसबर्स किया है, कितना इंपॉर्टेंट है, कितना सिग्निफिकेंट है, खास करके महिलाओं के लिए अगर हम बात करें.
2: द इफेक्ट दैट इज हैपनिंग इज यू नो अगेन समथिंग व्हिच इज समथिंग व्हिच वी डिडंट एक्सपेक्ट अर्लियर. सो द वे टू पुट इट इन इज दैट दिस इज समथिंग, दिस वाज समथिंग दैट वाज एक्सपेक्टेड अगेन टू हैपन एट अ लेटर लेवल ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी. दैट has begun to happen now. Why? Because Mudra Yojana essentially says that somebody who is able to take a loan for self, for entrepreneurship, should have the financial literacy to be able to carry that sort of a enterprise. Now, typically, somebody who's poor and who's doing an enterprise because she or he has been forced to do it is different from somebody who's doing a financial enterprise out of sheer, out of because he wants or she wants to do it. There's a difference. That difference, Posh, because of the fact that an ecosystem of support, partially again through the Jam Trinity, has come in where people are confident that they can run a financial enterprise seamlessly. You know, because otherwise, what has been happening is that there are several types of interventions to create entrepreneurship which had been tried, which had not worked, primarily because people lack the confidence that whether the back end of an enterprise will be something that they can sustain. It's actually a very big thing because unlike a salaried person who gets some money at the end of the month, does the work and is all, assured and comfortable that you'll get a salary. And so that's about it. Here, a person is daily selling his ware, services, manufactured products, whatever it is, and earning income and keeping a track of it. And then also being able to sustain it and being able to pay, repay loans. And then, because the mudra loan, as we can see, is of three stages. Shishu, then Kishore, and then Tarun. So there are three stages in which, so you graduate from one to another. To be able to do that sort of a thing, you need a considerable amount of financial, what I should say, architecture in place. And that is a very interesting innovation that has been created. Obviously, compared to, say, Ujwala or Sakshat Mission or missions like the Swachh Bharat Mission, this is relatively more recent. So it'll start showing its effect later. But already you can see from the PLFS survey, the Periodic Labor Force survey, that about 50% of Indians are now reporting self-employment. And that self-employment is not distress employment. It is employment, self-employment that is being made possible for a large number of percentage of them because they are confident that they can take on these enterprises and can take on capacity building, capacity, I mean, expansion of their products and services, which wasn't possible earlier. How it will pan out is a very big thing. Remember, we are talking about a population base, which is the largest population base in the world. To be able to create self-employment in that sort of a large population, with being able to support themselves, being able to support their families, being able to carry on the business for long length of time, not being drawn into the race for getting a job. Here, there we are talking of plenty of changes, which is not very easy to think of as just, you know, suddenly that we've done it and it's one-time support. It's not a one-time support. It's something which is actually a result of series of interventions, which brings a scheme like Mudra into being a success that it is being envisaged.
0: Right, Shubham. Diti, abhi Shubham ne self-employment ke baat ki, stand-up India scheme bhi ek aisi scheme hai, jiske tahat 15,000 प्लस करोड़ लोन अभी तक डिसबर्स किए जा चुके हैं. इस बारे में भी थोड़ा हमें बताएं. और पीएम स्वनिधि योजना जो कि एक बहुत ही, जिसे कह सकते हैं, एक फ्लैगशिप स्कीम जिसे कहते हैं, ये भी एक बहुत बड़े पैमाने पर लोगों को ये लाभान्वित कर रहा है. कैसे देखते हैं आप इसे?
1: देखिए, ये जो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना है, ये एक बहुत कॉन्सिक्वेंशियल रिफॉर्म है. वो मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे याद है कि पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के साथ साथ ही इसका आरंभ किया गया था कोविड-19 के दौरान. जून 2020 में ये शुरू की गई थी. उस वक्त मंशा ये थी कि जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, जो बहुत बुरी तरीके से हिट हुए थे, जिनकी वजह से हम और आप कोविड से लड़ पाए थे, क्योंकि वो सब्जी बेच रहे थे, वो वेयर्स बेच रहे थे, तो हम उसको खरीद रहे थे.
0: इवन अगर गिग वर्कर्स की बात करें,
1: बिल्कुल गिग वर्कर्स की भी स्वनिधि में वो भी काफी हद तक कवर होते हैं. तो उनके लिए ये स्कीम लाई गई थी कि बेसिकली आइडिया था कि वर्किंग कैपिटल जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको दी जा सके, ताकि वो ऐसा ना हो कि कोविड-19 की वजह से बिल्कुल ही त्रस्त हो जाएं. तो तब से इतनी इंपॉर्टेंट बन गई स्कीम, और इसका लाभ इतना दिखाई देने लगा फाइनेंशियल सिस्टम में कि स्ट्रीट वेंडर्स को डिग्निटी मिली, फाइनेंशियल इंक्लूजन मिला. सबसे इंपॉर्टेंट होता है वर्किंग कैपिटल हाथ में है तो आप 10 तरीके की चीज़ें कर सकते हैं. तो अब क्या किया गया है, हाल ही में 2025 में यूनियन कैबिनेट ने इस स्कीम को रिस्ट्रक्चर भी किया है, और लोन देने की जो अवधि है वो 2030 तक बढ़ा दी गई है. और ना सिर्फ ये किया गया है, 3 लेवल्स पर लोन दिया जा रहा है स्वनिधि में स्ट्रीट वेंडर्स को. पहले लेवल पर आप ये 10,000 से बढ़ाकर 15,000 कर दिया गया है, वैसे ही दूसरे लेवल पे 20,000 से 25,000 कर दिया गया है, और फाइनल लेवल जो है वो 50,000 है. और इंटरेस्ट सब्सिडी प्रोवाइड की जा रही है उन लोगों को जो टाइमली रीपेमेंट कर रहे हैं. प्लस एक बहुत महत्वपूर्ण जो इस स्कीम का बिंदु है वो ये है कि अगर आप डिजिटल ट्रांजैक्शन ज़्यादा से ज़्यादा कर पा रहे हैं, तो उस स्थिति में आपको कैशबैक इंसेंटिव भी दे रही है ये स्कीम. तो अभी तक अगर आप आंकड़े उठा के देखेंगे तो आप पाएंगे कि करीब 78 लाख स्ट्रीट वेंडर्स पूरे देश में हैं जो इसमें लाभान्वित हो चुके हैं, और करीब 17,000 करोड़ तक का जो लोन है वो दिया जा चुका है. 122 लाख लोन्स दिए जा चुके हैं करीब 17,000 करोड़ के.
0: राइट आदिति, लेट्स टॉक द वुमेन फोक लखपति दीदी अभियान. ये लगभग 2 करोड़ से ज़्यादा महिलाएं बन चुकी हैं लखपति दीदी, और 3 करोड़ ग्रामीण महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य भी है. कुछ बताएं इसके बारे में.
1: जी, एक बहुत बड़ी मुहिम है सरकार की. और किसान सम्मान निधि की जो बात हुई उसमें बस छोटी सी एक चीज़ जोड़ना चाहूँगी कि जब ये अमाउंट तय हो रहा था, तब एक स्टडी करवाई गई थी कि फार्मर्स का कॉस्ट इनपुट क्या है, उनकी कॉस्ट कवर करने का ये कवायद है
0: जी,
1: जो 6,000 की रकम तय की गई है। ऐसा पाया गया कि अगर ये दे दी जाए तो एटलीस्ट उनका जो इनपुट है वो कवर हो जाएगा, इस वजह से ये 6,000 पे तय हुई थी। पर अब जो महिलाओं की आप बात कर रहे हैं, महिलाओं को क्या किया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने बहुत सारे वक्तव्यों में ये कहा है कि विकसित भारत के 4 स्तंभ होंगे, जिसमें से पहले हम चर्चा कर चुके हैं गरीबों की, उसके बाद हम चर्चा कर चुके किसानों की, तीसरा यूथ, आपने स्टैंड अप इंडिया की बात की, और अब चौथी आप बात कर रहे हैं महिलाओं की। ये 4 स्तंभ हैं। जब तक आप इनको फाइनेंशियली एम्पावर नहीं करते, तब तक ये पॉसिबल नहीं है कि आप विकसित भारत के गोल को अचीव कर पाएं, जिसकी वजह से ये हुआ है कि एक सेल्फ हेल्प ग्रुप की मूवमेंट इस देश में चल रही है। करीब 80 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इस वक्त कार्यरत हैं। उन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में महिलाएं जो भाग ले रही हैं, लखपति दीदी योजना उसके तहत ये कोशिश कर रही है कि हर महिला 1 साल में 1 लाख रुपए अपने बलबूते पर कमा सके। उसमें तरीके तरीके के प्रावधान किए गए हैं, जैसे ड्रोन दीदी का प्रोग्राम भी उसके साथ इंटीग्रेट किया गया है। कुछ महिलाएं ड्रोन दीदी प्रोग्राम के तहत ट्रेनिंग लेकर खेतों में ड्रोन के माध्यम से मतलब पेस्टिसाइड्स छिड़काव कर रही हैं या और बहुत चीज़ें कर रही हैं। सिमिलरली कुछ लोगों को आप हॉर्टिकल्चर में इन्वॉल्व कर रहे हैं, इस तरीके से डाइवर्सिफाई किया जा रहा है। फिशरीज़ में भी इन्वॉल्व कर रहे हैं महिलाओं को। उनका फाइनेंशियल जो इक्वेशन है, फाइनेंशियल जो एम्पावरमेंट है, उसको बढ़ाने की कवायद है। और एक चीज़ की वर्ल्ड बैंक की अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आई थी, जिसको हम जिनी इंडेक्स के नाम से जानते हैं, वो देशों को मापती है इस माध्यम से कि कितनी इक्वल सोसाइटीज़ हैं और जो फ्रूट्स ऑफ पावर हैं वो कितनी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं लोगों में। ये जितना कम होता है इसका वैल्यू, उतना एक सोसाइटी को इक्वल माना जाता है। तो वहाँ मैं पढ़ रही थी कि भारत का जो वैल्यू है जिनी इंडेक्स में वर्ल्ड बैंक की, वो 25.5 है और चाइना का 35.7 है और US का 41.8 है। कहने का मतलब है कि ये जो सरकार ने एक लैंडस्केप तैयार किया है वेलफेयरिज्म का, इससे ये प्रूव हो रहा है, और ये थर्ड पार्टी ऑडिट है, दुनिया की बहुत बड़ी एजेंसी है वर्ल्ड बैंक, ये हम और आप नहीं कह रहे हैं या सरकारें नहीं कह रही हैं यहाँ बैठकर, ये एक थर्ड पार्टी ऑडिट, एक इम्पॉर्टेंट एजेंसी कह रही है कि भारत में अब धीरे धीरे वेलफेयर बेनिफिट्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने लगे हैं। और जैसा आपने अपने वक्तव्य में कुछ देर पहले कहा कि एक्सट्रीम पावर्टी, जिसका मेजर क्या है, उसका मेजर है कि $3 से कम पर प्रतिदिन कितने लोग इस देश में रहते हैं, उसकी जो संख्या है वो 16.2% 2011-12 में थी और अब घट के 5.3% रह गई है। तो धीरे धीरे एविडेंस क्रिएट हो रही है। इसी वजह से बहुत सारी एजेंसीज, जो सरकारी ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल एजेंसीज भी, अपने एविडेंस बेस्ड पेपर्स में ये कह रही है कि भारत अब उस तरफ बढ़ रहा है जहां उसको विकसित भारत बनने के लिए जो मैकेनिज्म्स चाहिए थे वो इन प्लेस हैं। विकसित भारत का क्या मतलब है? विकसित भारत का मतलब है कि प्रति व्यक्ति आय बढ़ानी है हमने अपनी।
0: जी,
1: अभी हम लो मिडिल इनकम कंट्री के कैटेगरी में हैं, हमें हाई इनकम कंट्री बनना है 2047 तक। वो बनने के लिए चर्चा की है आपने, जिन तबकों की, उनको आपको धीरे धीरे फाइनेंशियली इंक्लूसिव बनाना है, उनको एम्पावर
0: करना है। राइट राइट, थैंक यू सो वेरी मच शुभमा आदिति, बोथ ऑफ यू फॉर हैविंग जॉइंड अस एंड शेयर्ड योर व्यूज ऑन द टॉपिक। थैंक यू सो वेरी मच।
1: थैंक यू।
3: विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आप सुन रहे थे मोदी सरकार के 12 साल प्रमुख कल्याणकारी योजनाएं और उनका जमीनी असर। इसमें भाग ले रहे थे आर्थिक विश्लेषक सुभमोय भट्टाचार्य जी और वरिष्ठ पत्रकार अदिति टंडन। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे निशित कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल News on AIR Official पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या WhatsApp के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है AIR@nsdtalks@gmail.com और WhatsApp नंबर है 9289094044।
4: In the special series, you are listening to a discussion on 12 years of the Modi government, key welfare schemes and their grassroots impact. Participants were Shubhamoy Bhattacharji, economic analyst, and Aditi Tandon, senior journalist. Moderator was Nishit Kumar. This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani. You can listen to it on our mobile app, News on AIR, This program is available on our YouTube channel, News on AIR Official. You may share your feedback about this program through email at airnsdtalks@gmail.com or WhatsApp on 928-909-4044.

मीडियम वेव 262.4 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। श्रोताओं, लीजिए सुनिए कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम की शुरुआत में आपको सुनवाने जा रहे हैं सनम तेरी कसम फिल्म से आशा भोसले, आर डी बर्मन और साथियों की आवाज़ों को। गीत के बोल लिखे हैं गुलशन बावरा ने और संगीत दिया है आर डी बर्मन ने।

जमाने को दिखाना है। श्रोताओं लीजिए सुनिए इस फिल्म से शैलेंद्र सिंह की आवाज को। गीत के बोल लिखे हैं मजरूह सुल्तानपुरी ने और संगीत दिया है आर डी बर्मन ने।

श्रोताओं लीजिए अब सुनिए याराना फिल्म से किशोर कुमार और साथियों की आवाजों को। अनजान के लिखे इस गीत को स्वरबद्ध किया है राजेश रोशन ने।

श्रोताओं, फिल्म संगीत कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति आपको सुनवाने जा रहे हैं त्रिदेव फिल्म से, अलका याग्निक, मनहर उदास और साथियों की आवाज़ों में। गीत के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने और संगीत दिया है कल्याण जी आनंद जी ने।

श्रोताओं लीजिए अब सुनिए फिल्म घरोंदा से रूना लैला की आवाज़ को। गीत गुलजार का लिखा हुआ है और संगीत दिया है जयदेव ने।

एक दूजे के लिए। आइए सुनते हैं इस फिल्म से लता मंगेशकर और एसपी बालासुब्रमण्यम की आवाज़ों को। गीत आनंद बख्शी का लिखा हुआ है और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

दयावान, लीजिए सुनिए इस फिल्म से पंकज उदास और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ों को। गीत के बोल लिखे हैं अजीज़ कैसी ने और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

श्रोताओं, कार्यक्रम फिल्म संगीत की अंतिम प्रस्तुति आपको सुनवाने जा रहे हैं। धर्मात्मा फिल्म से किशोर कुमार और साथियों की आवाजों में। गीत के बोल लिखे हैं इंदीवर ने और संगीत दिया है कल्याण जी आनंद जी ने।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम फिल्म संगीत, आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। श्रोताओं लीजिए सुनिए कार्यक्रम सुगम संगीत। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन की गाई गजलें।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुगम संगीत। इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं उस्ताद अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन की गाई गज़लें।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुगम संगीत। इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे थे अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन की गाई गजलें। इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रोहतक के प्रसारण। 8:45 होने को हैं। थोड़ी ही देर बाद आप समाचार सुनेंगे, पहले हिंदी में उसके बाद अंग्रेज़ी में, जिन्हें आकाशवाणी दिल्ली से रिले किया जाएगा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन ने नई दिल्ली में वार्ता की। एक दूसरे के सुरक्षा हितों के खिलाफ अपनी भूमि के दुरुपयोग को रोकने पर बल दिया। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता लागू। भारतीय निर्यातकों को ओमान की 98% उत्पाद श्रेणियों पर शुल्क मुक्त पहुंच प्राप्त होगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया भावी प्रौद्योगिकी अनुसंधान में रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देंगे। मलेशिया 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाले देशों में शामिल। और राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में कल तक आंधी चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन ने आज व्यापार और आर्थिक, रक्षा, सुरक्षा और सीमा प्रबंधन सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने नई दिल्ली में बताया कि दोनों पक्षों ने लोगों के बीच संपर्क के लिए कनेक्टिविटी के महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने कालाधान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना को यथाशीघ्र पूरा करने पर सहमति व्यक्त की। विदेश सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने म्यांमा की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत के समर्थन की पुष्टि की है।
1: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
0: इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन का स्वागत किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमा भारत की पड़ोसी प्रथम, एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों में एक महत्वपूर्ण भागीदार है। भारत के साथ म्यांमा के महत्वपूर्ण संबंधों पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमा दक्षिण पूर्व एशिया के लिए भारत का प्रवेश द्वार है, क्योंकि ये एकमात्र आसियान देश है जो भारत के साथ भूमि सीमा साझा करता है। उन्होंने शांति और सुलह के लिए म्यांमा के प्रयासों के प्रति भारत के अटूट समर्थन का भी आश्वासन दिया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता आज से लागू हो गया है। समझौते पर 6 महीने पहले हस्ताक्षर किए गए थे। श्री गोयल ने नई दिल्ली में कहा कि इस समझौते से भारत के कामगारों, लघु तथा मध्यम उद्यमों जैसे विभिन्न क्षेत्रों के निर्यातकों को ओमान के बाजार में प्राथमिकता मिलेगी।
2: I am confident that this comprehensive agreement
3: हमें विश्वास है कि व्यापक समझौता ओमान के साथ हमारे संबंधों को नई गति प्रदान करेगा। पहले दिन से ही भारत को ओमान की 98% उत्पाद श्रेणियों में शुल्क मुक्त पहुंच प्राप्त होगी और इससे भारत के ओमान को होने वाले 99% से अधिक निर्यात को लाभ मिलेगा। व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA हमारे साझा भविष्य की रूपरेखा है।
2: of our shared future.
0: श्री गोयल ने बताया कि समझौते के लागू होने के बाद आज मुंबई, कोलकाता और चेन्नई से कई खेपें भेजी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि यह समझौता अपनी उन्नत रसद और बंदरगाह अवसंरचना के माध्यम से खाड़ी सहयोग परिषद और पूर्वी अफ्रीकी बाजारों तक पहुंचने का एक महत्वपूर्ण द्वार बनेगा। श्री गोयल ने कहा कि अमरीकी FDA, यूरोपीय औषध एजेंसी या ब्रिटेन के MHRA से अनुमोदित भारतीय जेनरिक दवाओं को अब ओमान में 90 दिन के भीतर बाजार में बिक्री की अनुमति मिल जाएगी। उन्होंने कहा कि भारत ने समझौते के तहत गैर सेवा क्षेत्रों में भारतीय श्रमिकों की सुरक्षा के लिए एक बाध्यकारी प्रतिबद्धता भी हासिल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर श्री गोयल का एक लेख साझा किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि यह समझौता रोजगार सृजन को बढ़ावा देने, किसानों के हितों की रक्षा करने और दोनों देशों के बीच साझा समृद्धि को बढ़ावा देने का अवसर प्रदान करता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र, खुले, शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने में क्षेत्रीय साझेदारों के साथ सहयोग बढ़ाने के महत्व की पुष्टि की है। नई दिल्ली में दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों के बीच दूसरी बैठक में क्षेत्र में निर्बाध व्यापार, नौवहन तथा हवाई उड़ान की स्वतंत्रता के महत्व पर बल दिया गया। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया की रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स ने की। दोनों नेताओं ने भविष्य की प्रौद्योगिकी अनुसंधान में रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा की। श्री माल्स ने भारत को ऑस्ट्रेलियाई रक्षा विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अनुसंधान शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। सरकार ने कहा है कि पूरे देश में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार है। पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सभी तेल विपणन कंपनियां पेट्रोल और डीजल की सक्रिय रूप से आपूर्ति कर रही हैं।
2: डोमेस्टिक एलपीजी घरेलू कुकिंग गैस के संबंध में पिछले 3 दिनों में 1,21,00,000 बुकिंग्स रिसीव हुई हैं, उसके अगेंस्ट 1,22,00,000 डिलीवरीज की गई हैं और 95% डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के साथ की गई हैं।
1: इस बीच सरकार ने उन फर्जी ईमेल का खंडन किया है जिनमें एलपीजी डीलरशिप और डिस्ट्रीब्यूटरशिप देने का दावा किया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि info@lpg वितरक चयन पते से भेजे गए ईमेल फर्जी हैं और इनका आधिकारिक एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप चयन प्रक्रिया से कोई संबंध नहीं है। प्रामाणिक जानकारी केवल आधिकारिक एलपीजी वितरक चयन पोर्टल पर ही उपलब्ध है। पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिपरिषद का विस्तार किया गया। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के लोकभवन में 35 मंत्रियों को शपथ दिलाई। नवनियुक्त मंत्रियों के विभागों का आवंटन बाद में किया जाएगा। इस बीच तृणमूल कांग्रेस ने 2 विधायकों संदीप अंसाहा और ऋतव्रत बनर्जी को पार्टी विरोधी गतिविधियों, महत्वपूर्ण बैठकों में अनुपस्थित रहने और सार्वजनिक रूप से पार्टी नेतृत्व की आलोचना करने के आरोप में निष्कासित कर दिया। उच्चतम न्यायालय ने नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा को मौजूदा पेन और पेपर प्रारूप के स्थान पर कंप्यूटर आधारित परीक्षा आयोजित करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। न्यायालय ने कहा कि कंप्यूटर आधारित पुनर्परीक्षा आयोजित करने का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि परीक्षा रद्द होने के बाद से राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी पहले से ही चुनौतियों का सामना कर रही है। अगली सुनवाई 27 जुलाई को होगी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा है कि लोक अदालतों और जिला विधि सेवा प्राधिकरणों को तलाक का निर्णय देने का अधिकार नहीं है और विवाह भंग करने का अधिकार केवल पारिवारिक न्यायालयों के पास है। एक याचिका की सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने कहा कि लोक अदालतों को केवल सौहार्दपूर्ण समझौते कराने का अधिकार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों से प्रेरित भारत में पिछले 12 वर्ष में अभूतपूर्व बदलाव आया है। आकाशवाणी समाचार विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष प्रस्तुति लेकर आया है। आज बात किसानों के कल्याण की दिशा में सरकार के कदमों की।
3: नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा पिछले 12 वर्षों में किसानों के कल्याण

0: जारी कर लेते हैं।
1: प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से सिंचाई व्यवस्था मजबूत हुई है और मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के माध्यम से किसानों को मिट्टी की पोषक तत्वों की जानकारी दी जा रही है। साल 2014-15 से लेकर अब तक 26 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं। वहीं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत करीब 23 करोड़ किसानों को 1,92,000 करोड़ रूपए के फसल बीमा दावों का लाभ मिला है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को 60 वर्ष की आयु के बाद हर महीने 3,000 रूपए की पेंशन सुनिश्चित की जा रही है। उत्तर प्रदेश के एक लाभार्थी गौरव त्यागी ने कहा कि यह किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है।
2: किसान मानधन योजना चल रही है, बहुत ही लाभदायक है। प्रधानमंत्री की तो जितनी भी योजनाएं रही हैं वो सारी बड़ी महत्वपूर्ण रही हैं, किसान के हित में रही हैं। और ये बुढ़ापे में जो 3,000 रूपए की इसके मिलेंगे, ये जो बहुत ही बढ़िया टाइम की जो एज के हिसाब से
1: न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों के लिए एक मजबूत सहारा बना है, जिसके तहत किसानों को उनके उत्पादन लागत का 1.5 गुना मूल्य मिल रहा है। सरकार द्वारा उठाए गए ठोस नीतियों के कारण देश का कुल खाद्यान्न उत्पादन 2013-14 के 265 मिलियन टन से बढ़कर 2024-25 में लगभग 358 मिलियन टन हो गया है। इसके अलावा भारत ने रिकॉर्ड 154 मिलियन टन से अधिक चावल का उत्पादन कर चीन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है। आज भारत का किसान केवल अन्नदाता ही नहीं बल्कि देश की आर्थिक प्रगति और विकास का एक महत्वपूर्ण आधार भी बन चुका है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
4: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
3: ये आकाशवाणी है। मलेशिया ने 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसका उद्देश्य बच्चों को हानिकारक सामग्री, साइबर बुलिंग और ऑनलाइन गतिविधियों की लत से बचाना है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया ने बच्चों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगाए हैं। देश में विनिर्माण क्षेत्र में मजबूती से औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में अप्रैल 2025 की तुलना में इस वर्ष अप्रैल में 4.9% की वृद्धि दर्ज की गई है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने बताया कि विनिर्माण क्षेत्र में इस दौरान 6.2% की वृद्धि दर्ज की गई। मौसम विभाग ने राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में कल तक के लिए आंधी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिमी बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में कल तक बिजली तथा तेज हवाएं चलने का अनुमान व्यक्त किया गया है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में लू के दौरान सुरक्षित रहें, सावधानियां, तैयारी और बचाव विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। इसमें मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर डी आर पटनायक और सफदरजंग अस्पताल के चिकित्सा विभाग की डॉक्टर रूपाली मलिक भाग लेंगी। श्रोता इस विषय से संबंधित अपने प्रश्न टेलीफोन नंबर 011-233-1481 पर प्रश्न पूछ सकते हैं। उत्तराखंड के चमोली जिले के यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल फूलों की घाटी को आज से पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। वन रेंज अधिकारी चेतना कांडपाल ने बताया कि फूलों की घाटी में वर्तमान में 300 से अधिक फूलों की प्रजातियां और वनस्पतियों की कई दुर्लभ किस्में हैं।
5: वैली 1 जून से 31 अक्टूबर तक ओपन रहती है। पहले बार इसकी डिस्कवरी फ्रैंक स्माइथ ने की थी 1931 में, जब वो कॉमेट के एक एक्सपीडिशन से लौट रहे थे। उसके बाद वो वैली दोबारा आई 1937 में और 1938 में उन्होंने एक बुक पब्लिश की जिसका नाम था वैली ऑफ फ्लावर्स। 2005 में यूनेस्को द्वारा वैली ऑफ फ्लावर्स को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया।
3: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन ने नई दिल्ली में वार्ता की। एक दूसरे के सुरक्षा हितों के खिलाफ अपनी भूमि के दुरुपयोग को रोकने पर बल दिया। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता लागू। भारतीय निर्यातकों को ओमान की 98%

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक फिल्म से। इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म आराधना के गीत। कार्यक्रम का अंतिम गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ों में।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक फिल्म से। इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे थे फिल्म आराधना के गीत। इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रोहतक के प्रसारण। रात के 9:30 होने को हैं। अगला कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से रिले किया जाएगा।

0: नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं कनकलता। श्रोताओं, गर्मी का मौसम चल रहा है। ये मौसम जहां अपने साथ रसीले आम, तरबूज, लीची, खरबूज जैसे स्वादिष्ट फल लाता है, वहीं लू का प्रकोप भी। देश के कई हिस्से इस समय लू यानी हीट वेव से जूझ रहे हैं। हालांकि बीच बीच में थोड़ी बारिश होने से गर्मी से राहत भी मिलती है। भीषण गर्मी के मौसम में लू कई बार जानलेवा भी साबित होता है। ऐसे में जरूरी है कि हम लू से बचाव के लिए सावधानियां बरतें। हमारा आज का कार्यक्रम इसी पर आधारित है। लू से बचाव के लिए क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और लू लगने की स्थिति में प्रभावित व्यक्ति की सहायता किस प्रकार करनी चाहिए, इन्हीं सब बातों पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग में वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर डी आर पटनायक और सफदरजंग अस्पताल में मेडिसिन विभाग में प्रोफेसर डॉक्टर रूपाली मलिक। स्टूडियो में आप दोनों का स्वागत है। श्रोताओं, स्टूडियो की फोन लाइंस खुली हुई हैं। नंबर है 2331-0481, 2371-7117, 2371-7106 और 2331-4444। दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले 011 लगाना ना भूलें। व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। आप इस पर भी प्रश्न भेज सकते हैं। आप हमारे @iirnewsalerts पर भी #askiir के जरिए अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन iir और दूरदर्शन की DTH सेवा पर भी उपलब्ध है। कार्यक्रम की शुरुआत में हमारे साथ जुड़ चुके हैं रमाशंकर वाजपेयी रायबरेली से। जी रमाशंकर जी।
1: जी नमस्कार। नमस्कार। पूछना चाहता था कि लू से बड़ी पुरानी सुनते आए हैं, लू में प्याज बहुत ही बचाव करता है और अन्य कोई भी साधन जिस तरह से लू से बचा जा सके वो कृपया बताएं।
2: रूपाली जी। जी बिल्कुल, जैसा आपने कहा कि लू के समय में प्याज से बहुत बहुत ही बचाव मिलता है, तो इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस मेरे पास है ऐसा तो मैं नहीं कहूँगी, बट फिर भी जो हम पुराने समय से ये जो धारणाएं चलती आ रही हैं इनमें कहीं ना कहीं कुछ सच्चाई है। तो आप प्याज जैसी चीज़ों का सेवन कर सकते हैं, बट उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप अपना फ्लूइड इनटेक यानी कि पीने की जो तरल पदार्थ जो होते हैं उनका सेवन आपको बढ़ाना है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी लू के समय में बचने के लिए है एक एडिक्वेट फ्लूइड इनटेक यानी कि तरल पदार्थ का सही मात्रा में आपको आपको लेना है। और इसके अलावा आपको गर्म जगह से बचना है, मतलब अगर घर से बाहर जितना हो सके उन चीज़ों को आपको अवॉइड करना है, घर जितना हो सके घर के अंदर रहना है, तो ये चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी हैं। खाने पीने में आपको जो भी आपको अभी मौसमी फल जो मैडम ने अभी बताए तरबूज लीची आम इनका सेवन करना है और तरल पदार्थ का आपको पर्याप्त मात्रा में सेवन करना, ये सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज है।
0: डॉक्टर रूपाली, आपने कहा कि पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थ लिक्विड लेना चाहिए, तो किस तरह के तरल पदार्थों को लेना ठीक रहेगा ताकि जो शुगर का जो लेवल है वो बॉडी में वो कंट्रोल्ड रहे?
2: आप नारियल पानी ले सकते हैं, आप आम रस, आम पन्ना जो कि बहुत गर्मी के समय में बहुत ही एक कॉमन एक कूल ड्रिंक माना जाता है, बेल का रस, इस तरह के जो नेचुरल ड्रिंक्स हैं आप उनको प्रिपेयर कीजिए, आप उनको लीजिए और आप नॉर्मल अपना पानी लीजिए। और अगर आपको डिहाइड्रेशन क्रैम्प्स जैसी अगर फीलिंग आती है तब आप ORS का जो मेडिकल ORS जो अवेलेबल है उसका सेवन भी कर सकते हैं।
0: श्रीकांत झागड़े हैं महाराष्ट्र से। श्रीकांत जी क्या पूछना चाहते हैं आप?
3: हेलो
0: जी
3: नमस्कार।
0: नमस्कार।
3: मैं श्रीपाद जाफरा बोल रहा हूँ पूरे महाराष्ट्र से। मेरे दो सवाल है। ये बहुत अधिक गर्मी में जैसे थकान है, चिड़चिड़ापन है, बेचैनी लगती है, तो उसी स्थिति में क्या करना चाहिए? और दूसरा ये था कि ऐसे में मतलब ब्लड प्रेशर वाले ने क्या सावधानियां रखनी चाहिए, खासकर हाई बीपी वाले ने?
2: हाँ जी, देखिए ये भी बहुत इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन आपने पूछा है, क्योंकि जो हाई बीपी के जो मरीज़ होते हैं वो बहुत समय इस तरह की कुछ दवाइयों पे होते हैं जैसे कि बीटा ब्लॉकर्स, एंड वो जो लोग होते हैं दे आर प्री डिस्पोज टू हैव हीट स्ट्रोक, मतलब उन को हीट स्ट्रोक की कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं. तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको कोई भी कोमॉर्बिडिटी है या कोई और आपको बीमारी से अगर आप ग्रस्त हैं, कोई भी क्रॉनिक आपको डिजीज है, COPD, एस्थमा, ब्लड प्रेशर की बीमारी, शुगर की बीमारी, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने आप को धूप से, गर्मी से बचा कर रखें, क्योंकि इसमें आपका जो कार्डियो रेगुलेटरी जो मैकेनिज्म्स हैं वो सब कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाते हैं. तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस तरह के मरीज को खास ध्यान रखना है.
0: डॉक्टर पटनायक, आपसे हम ये जानना चाहेंगे सबसे पहले कि हीट वेव यानी लू क्या है.
4: देखिए, ये हीट वेव जो लू बोलते हैं बहुत भाषा में, तो हमारा जो समर टाइम में जो ज़्यादातर कि अप्रैल में, जून, थोड़ा सा जुलाई पार्ट में भी, तो क्या टेम्परेचर जो तापमान है, ये तापमान है उसका साधारणतः नॉर्मल से कभी कभी ज़्यादा हो जाता है, नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है. तो ये तो गर्मी का महीना है, गर्मी का महीना है तो टेम्परेचर साधारणतः ज़्यादा रहता है. लेकिन जो नॉर्मल होता है हमारा जो क्लाइमेटोलॉजी 30 साल का एवरेज जो उसको नॉर्मल बोलते हैं, उससे भी थोड़ा ज़्यादा होता है, कंटिन्यूसली कुछ दिन के लिए प्रिवेल करता है. तो वो हम उसको एक हीट वेव डिफाइन करते हैं. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम डेफिनेशन अगर हम करेंगे तो 40 डिग्री से अगर ज़्यादा टेम्परेचर है तो एंड उसका जो नॉर्मल से 4.5 से 6.4 तक अगर हो गया तो हीट वेव हम बोलेंगे. अगर उस 6.4 से भी ज़्यादा डिपार्चर जो कि नॉर्मल से ज़्यादा इतना हो गया तो सीवियर हीट वेव बोलेंगे. तो ये एक डेफिनेशन के हिसाब में हम जैसा कि नॉर्मल से अगर इतना दायरा तो करते हैं. और एक डेफिनेशन ये भी है कि अगर 45 डिग्री हो गया तो हम उसको हीट वेव कर देंगे.
0: लेकिन क्या ये अलग अलग इलाकों के लिए अलग अलग होता है? जैसे कोस्टल एरियाज के लिए अलग होगा, प्लेन्स के लिए अलग होगा.
4: हाँ, कोस्टल एरिया के लिए थोड़ा सा है कि कोस्टल एरिया में 37 डिग्री होने के बाद भी हमने हीट वेव करते हैं, क्योंकि कोस्टल एरिया में जो ह्यूमिडिटी का थोड़ा प्रभाव रहता है ना, तो इससे कारण ज़्यादा हानिकारक हो जाता है. तो अगर तापमान बहुत ज़्यादा भी नहीं है लेकिन जो ह्यूमिडिटी जो होता, जो एयर का ह्यूमिडिटी होता है कोस्टल एरिया में उसको मिलता है, इसलिए हमने उसको थोड़ा सा कोस्टल जो 37 डिग्री से ज़्यादा होना वो कोस्टल एरिया है.
0: और प्लेन्स के लिए?
4: प्लेन्स के लिए 40 डिग्री से ज़्यादा होना.
0: एक और श्रोता है हमारे साथ, राजू लवानिया, आगरा, उत्तर प्रदेश से. राजू जी.
5: जी, मेरा नमस्कार डॉक्टर साहब को, दीदी आपको भी
0: नमस्कार.
4: नमस्कार
5: डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाह रहा था, जैसे घरेलू नुस्खों में तो खैर जैसे आम का पना है, बेल का शरबत है या नींबू पानी है, ये तो खैर पुराने जो नुस्खे हैं वो तो है ही, लेकिन मेडिकल साइंस में हीट वेव का परमानेंट ट्रीटमेंट और इम्पोर्टेंट ट्रीटमेंट क्या है?
2: कि देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट है कि आप जो गर्मी वाली जगह है उससे दूर रहें. तो अगर कोई किसी को भी इस तरह के लक्षण अगर आते हैं तो सबसे पहले हमें उस व्यक्ति को फटाफट से गर्मी वाली जगह से दूर मूव करना है. उसके बाद हमें उनको ठंडे पानी की पट्टी करनी है और साथ में अगर पॉसिबल है तो एक पंखा करना है. आप थोड़ा पानी स्प्रिंकल करके और पंखा करें. पंखा करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि उससे इवेपोरेशन से जब हीट उड़ती है तो उससे और ज़्यादा आपका हीट लॉस होता है, ज़्यादा देर की अगर आप खाली उस पर ठंडा कुछ रख देंगे. उसके अलावा आपको पंखा भी ऊपर से करना है, तो पंखे के आगे थोड़ा थोड़ा पानी छिड़क के थोड़ी ठंडी पट्टी करना. तो ये जो है सबसे इम्पॉर्टेंट इलाज है जो कहीं भी किया जा सकता है.
0: लू लगने पर क्या लक्षण दिखते हैं?
2: देखिए, लू के लक्षण बहुत तरह के हो सकते हैं. माइल्ड लक्षण हो सकते हैं जिसमें कि आपको हीट क्रैम्प्स हो सकते हैं, स्किन रैश हो सकते हैं जिसको कि नॉर्मल भाषा में हम प्रिकली हीट बोलते हैं या घमोरियाँ बोलते हैं. तो उसमें आपको आपको थोड़ा पाउडर डाल लेना है, कुछ एंटी एलर्जिक एंटी हिस्टामिनिक दवाई जैसे कि सिट्रोजीन वगैरह है उसका आप यूज़ कर सकते हैं. और पानी आपको अच्छे से पीना और ढीले ढाले कपड़े पहनने हैं और हल्के रंग के हल्के कपड़े, ढीले ढाले कपड़े वो आपको पहनने हैं. तो ये हुआ हीट रैश के लिए. हीट क्रैम्प्स में आपको हो सकता है कि थोड़ा अकड़न जकड़न महसूस हो, आपको हाथ पैर सीधा करने में दिक्कत लगे, मांसपेशियों में आपको जकड़न महसूस हो. तो इस स्थिति में आपको फ्लूइड्स का ध्यान रखना, ये डिसइलेक्ट्रोलीमिया जो हो जाता है, इलेक्ट्रोलाइट्स का इम्बैलेंस जो हो जाता है हीट के वजह से, वो उससे होता है। तो उस समय आपको मेडिकल जो ORS है, आप ना केवल जो बाकी तरल पदार्थ जो कि हम रूटीनली लेते हैं, उसके अलावा आप मेडिकली जो ORS मिलते हैं, मेडिकल ORS, आप उनका सेवन करें अगर आपको हीट क्रैम्प जैसा सिस्टम हो।
0: गंभीर लक्षण क्या होते हैं?
2: गंभीर लक्षण हो सकते हैं आपको हीट एग्जॉशन या फिर हीट स्ट्रोक। हीट स्ट्रोक सबसे सीवियर वैरायटी है, जिसमें कि आपको बेहोशी, आपका एक तो जो कोर बॉडी टेम्परेचर है वो 40 डिग्री कोर बॉडी टेम्परेचर, जो कि आपका रेक्टल टेम्परेचर आइडली होना चाहिए, ना कि सरफेस सतह वाला नहीं, कोर बॉडी जिसमें कि रेक्टल टेम्परेचर आइडियल माना जाता है, वो 40 डिग्री से ज़्यादा अगर आपका है तो वो, प्लस आपको कुछ भी बेहोशी का लक्षण, ऑल्टर्ड सेंसोरियम जिसको बोलते हैं, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, इस तरह का कोई भी लक्षण है, तो ये आप सबसे सीवियर फॉर्म जो होता है हीट स्ट्रोक का, उसमें गिना
0: तो
2: जाता है।
0: अगर ऐसी स्थिति हो तो हॉस्पिटल ले जाने से पहले तुरंत बिल्कुल, क्या सहायता उपलब्ध कराई जा सकती है?
2: फटाफट आप उनको ठंडी जगह, तो हल्के कपड़े, ढीले कपड़े और गीला करके, कपड़ा गीला करके पंखा उसके ऊपर करना है, यही सबसे इम्पोर्टेंट है। इवन अस्पताल में भी जो सबसे पहला ट्रीटमेंट दिया जाएगा यही दिया जाएगा। हीट स्ट्रोक दो तरह का होता है, क्लासिकल और एक्सर्शनल। तो क्लासिकल में आपको यही सबसे इम्पोर्टेंट और इफेक्टिव मेथड है। जो एक्सर्शनल होता है उसमें बहुत बार हम इमर्शन भी बोलते हैं, कि आप उसको ठंडे पानी में इमर्स कर दो, कि कपड़े सब हटा के किसी ठंडे पानी के टब में लिटाना, वो एक्सर्शनल हीट स्ट्रोक में होता है। बट जो आजकल जो मिलता है उसमें क्लासिकल हीट स्ट्रोक है, और कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। अगर कोई बाहर हैवी वर्क कोई कर रहा है तो उसमें क्लासिकल और एक्सर्शनल दोनों तरह का हीट स्ट्रोक हो सकता है।
0: चौधरी महेंद्र सिंह मथुरा उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हैं। जी महेंद्र जी।
6: जी कनक जी नमस्कार।
0: नमस्ते।
6: आकाशवाणी स्टूडियो में आमंत्रित दोनों विशेषज्ञों का बहुत बहुत स्वागत और नमस्कार।
2: धन्यवाद
6: जी। मैं चाहता हूँ कि एक स्वस्थ व्यक्ति दिन में कितना पानी पिए और कितना पानी जरूरी है। दूसरा सवाल मेरा ये है कि जैसे अच्छा एक स्वस्थ व्यक्ति पानी की पूर्ति हेतु बोतल लगवाता है, यानी डिस्टिल वाटर कहें या कुछ भी कहें उसे, तो आवश्यक है या नहीं?
2: ये देखिए, एक किसी भी अडल्ट व्यक्ति की जो बॉडी होती है उसका 70-80% जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो पानी है, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर जो अडल्ट व्यक्ति है, कम से कम उसको 8-10 ग्लास पानी डेली पीना है। ये नॉर्मल सिचुएशन की बात है, लगभग एटलीस्ट कम से कम आपको 8 ग्लास पानी पीना है, क्योंकि आपका 70-80% जो आपका बॉडी का वेट है वो उसमें वाटर है, तो उसका जो रिप्लेनिश करने के लिए आपको कम से कम 2 लीटर आपको पानी पीना है। बट अगर हम आज के समय की बात करें, जब हम लू लगने की बात कर रहे हैं, तो उस समय आपको थोड़ा सा अतिरिक्त पानी की आवश्यकता होती है। कम से कम 2-3 लीटर आपको पीना ही है। इसके अलावा डिपेंडिंग कि आप क्या काम कर रहे हैं, आप कहाँ हैं, वहाँ कितनी गर्मी है, अगर आपको लगता है बहुत पसीना आ रहा है, बहुत वाटर लॉस है, तो आप इसके अतिरिक्त भी पानी पी सकते हैं। बट नॉर्मल स्थिति में 3-3.5 लीटर से ज्यादा पानी पीने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वरना उसके भी साइड इफेक्ट हो सकते हैं।
0: और ये भी ध्यान रखना होगा कि हम पानी पीने के नाम पर या लस्सी पीने के नाम पर बहुत ज्यादा मीठी चीजें
2: बिल्कुल मीठा तो अतिरिक्त बिल्कुल ना लें, और पैक्ड इसलिए जूसेस जो हैं वो अवॉइड करें। नेचुरल अगर आप लें वो फिर भी
0: जो हमारे पुराने लस्सी, छाछ, बेल का शरबत, ऐसी चीजें ज्यादा अच्छी होती। नींबू पानी
2: बिल्कुल।
0: डॉक्टर पटनायक, कई बार वार्म नाइट और वेरी वार्म नाइट की भी चेतावनी जारी की जाती है, तो ये कब किया जाता है और इसका मतलब क्या होता है?
4: देखिए ज्यादातर क्या होता है, तो दिन का तापमान तो हमेशा समर में हाई रहता ही है, तो उससे जो हम हीट वेव का डेफिनेशन करते हैं, दिन का मैक्सिमम टेम्परेचर जो होता है उसके ऊपर। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि दिन के साथ मैक्सिमम टेम्परेचर हो गया, हीट वेव हुआ, उसके बाद नाइट जब आता है तो नाइट में भी क्या होता है, जो नाइट का टेम्परेचर तापमान है वो भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो वो ज़्यादा हानिकारक होता है। क्योंकि बहुत सारे लोग जो बाहर में रहते हैं, ये दिन का भी गर्मी झेल लिया, उसके बाद जब नाइट का भी टेम्परेचर, अगर उनके पास एसी नहीं है, जो यूज नहीं करते, तो उसको हम वार्म नाइट कहते हैं। तो उसमें तो मिनिमम टेम्परेचर जो है आपका नाइट का टेम्परेचर, वो भी अगर 4.5-6.4 हो गया तो उसमें वार्म नाइट कर दे। तो वार्म नाइट जो है नाइट टेम्परेचर में, समर के टाइम में, लेकिन नाइट टेम्परेचर में अगर अधिक हो गया तो उसको वार्म नाइट कहें।
0: और वो भी खतरनाक
4: होता है, वो भी खतरनाक होता है।
0: धर्मवीर लाइन पर है हमारे साथ दिल्ली से। जी धर्मवीर जी।
7: हेलो नमस्कार जी, मैं धर्मवीर गांधीनगर दिल्ली से बात कर रहा हूँ। हमारे एक्सपर्ट को भी नमस्कार। मैं ये पूछना चाहूंगा, जैसे हम गांधीनगर मार्केट में रहते हैं और दुकान हर प्रत्येक दुकान में एसी चलते हैं, एक एक दो दो, तो एक तो उनकी भी हीट निकलती है। मार्केट में निकलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हम किसी बस्ती से गुजर रहे हैं, तो ऐसे में हम लोग सावधानी क्या बरते हैं, जाना भी जरूरी होता है। और दूसरा मेरा ये पूछना है कि डायबिटीज मरीजों को सिकंजी और ओआर का घोल लेना ठीक है कि नहीं। और तीसरा एक और पुरानी एक बात याद आती है, बुजुर्ग कहते थे, जैसे कहते थे कि लोहा लोहे को काटता है, ऐसे जो गर्मी गर्मी को मारती है, बैलेंस बराबर करती है। अगर जितनी ज्यादा गर्मी हो आप चाय पी ले कॉफी पी ले तो बैलेंस बना रहता है। कोल्ड ड्रिंक लेना ठीक रहता है कि नहीं, कृपा करके।
2: हाँ जी, देखिए कोल्ड ड्रिंक लेना तो नहीं ठीक है ना, बट जो आप नेचुरल जो चीजें हैं जो आपको वैसे ठंडक प्रदान करती हैं, जैसा कि हम डिस्कस कर रहे हैं कि आप बेल रस पी सकते हैं या फिर आप नींबू पानी ले सकते हैं, तो जो नेचुरल चीज़ें, कोकोनट वाटर ले सकते हैं, तो जो तरल चीज़ें हैं उनका सेवन आपको बढ़ाना है। इसका मतलब कोल्ड ठंडा लेने से आपको कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी है, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक लेने से आपकी शरीर को कुछ फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो कोल्ड ड्रिंक जैसी चीज़ें नहीं अवॉइड करनी है, नहीं लेनी है, वो अवॉइड करनी है। और जो आपने कहा शुगरी ड्रिंक, क्या डायबिटीज़ के मरीज़ को हम दे सकते हैं? नहीं, वो अवॉइड करनी है। नींबू पानी अगर आप देंगे उनको तो आप बिना चीनी के दीजिए, नमक वाला नींबू पानी दे सकते हैं, सॉल्टेड नींबू पानी दे सकते हैं, या आप उनको लस्सी दीजिए, छाछ वाली जो होती है, जो कि नमकीन लस्सी होती है, तो उनको उस कोकोनट वाटर आप दे सकते हैं।
0: जो श्रोता अभी अभी हमसे जुड़े हैं उन्हें हम बता दें कि आप सुन रहे हैं कार्यक्रम पब्लिक स्पीक। आज हम लू से सुरक्षा और सावधानियों पर चर्चा कर रहे हैं। आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग में वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर डी आर पटनायक और सफदरजंग अस्पताल में मेडिसिन विभाग में प्रोफेसर डॉक्टर रूपाली मलिक। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और दूरदर्शन की DTH सेवा पर भी उपलब्ध है। और अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं अमित उपाध्याय बिहार से। अमित जी आप हमें सुन पा रहे हैं? जी
8: हाँ हाँ जी जी मैं सुन पा रहा हूँ। मैं सासाराम बिहार से बोल रहा हूँ, अमित उपाध्याय। मैं मेरा ये सवाल था कि जैसे कि पिछले हम लोग देख रहे हैं तुलना करें और पिछले साल के और हर एक साल से तुलना करें तो गर्मी का जो टेम्परेचर है वो लगातार बढ़ते जा रहा है। तो जैसे कि पहले टेम्परेचर हाई, अभी जैसे मई में ही टेम्परेचर इतना 45 प्लस जा रहा है, 48 तक आ जा रहा है। तो हम ये मेरा ये प्रश्न है कि स्वस्थ शरीर जो जिसका शरीर में कुछ नहीं है जांच करने पर भी, वो भी चलते चलते कभी कभी गिर जाते हैं अचानक से, उनका भी बेहोशी कुछ वैसे हो जाता है। तो हम लोग इसमें क्या और ऐड कर सकते हैं, जैसे कि खूब पानी पीना जो भी डॉक्टर साहब बताते हैं वो सब हम लोग करते हैं, इसमें और क्या हम लोग ऐड कर सकते हैं ताकि हम लोग स्वस्थ रह सके? जी
2: कि जब भी आप बाहर निकलें कुछ एक आप छतरी लें या कपड़ा लें, गमछा जैसा कि कहा जाता है, गीला करके लें तो और भी अच्छा है। तो आपको उन चीज़ों का ध्यान रखना। देखिए नॉर्मल व्यक्ति में भी ये चीज़ हो सकती है, जिसको पहले से कोई बीमारी है वो ज़्यादा प्रीडिस्पोज्ड है क्योंकि उसके रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। एंड स्पेशली जैसे कि कोई एंटीसाइकोटिक ड्रग्स जो लेते हैं खास तौर से, वो लोग बहुत ही प्रीडिस्पोज्ड होते हैं इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस के लिए, हीट स्ट्रोक के लिए, क्योंकि उसमें पूरा टेम्परेचर रेगुलेशन उनका हो जाता है। तो वो लोग खास ध्यान रखें। और जो नॉर्मल व्यक्ति है तो बाहर निकलते समय ये सब प्रिकॉशंस लें, फ्लूइड्स लें, तो इतना ही है आप कर सकते हैं। और अगर कोई सिम्टम आपको लगता है हीट एग्जॉशन का या हीट स्ट्रोक का, तो इमिडिएटली ठंडी जगह पे मूव करके गीला कपड़ा रख के आप हवा कर सकते हैं।
0: तो हीट वेव किसी को भी प्रभावित कर सकता है, पर जैसा कि आपने बताया कि जिनको शुगर है या जिन्हें हाई ब्लड प्रेशर है उन्हें इसका ज्यादा खतरा रहता है। और कौन कौन से ऐसे वर्ग है, मतलब कैटेगरी क्या क्या है जिनके लोगों को इसका खतरा?
2: किसी भी क्रॉनिक डिजीज का अगर कोई मरीज है, कोई अस्थमा है, कोई COPD है, कोई हार्ट डिजीज का पेशेंट है, कोई कैंसर कीमोथेरेपी पे है, ये सब भी प्रीडिस्पोज्ड है। बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, प्रेग्नेंट लेडीज हैं, ये सभी जो हाई रिस्क ग्रुप्स में ही आते हैं।
0: तो प्रेग्नेंट लेडीज की जो आपने बात की उसमें क्या असर पड़ता है उस पर, उसके होने वाले बच्चे पर हीट वेव का?
2: देखिए जब आप हीट, अगर आप हीट से एक्सपोज्ड है तो आपको पेरिफेरल वेज़ो डायलिटेशन होता है, यानी कि आपकी जो पेरिफ्रीज की जो वेसल्स हैं वो डायलेट हो जाती हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हीट आपके बॉडी से बाहर निकल सके। उसकी वजह से थोड़ा वॉल्यूम जो है आपका बाकी इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स की ब्लड सप्लाई, उसके लिए ब्लड कम हो जाता है, तो ऐसे में जो बच्चा है उसका ब्लड सप्लाई भी कम हो सकता है। तो इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि प्रेग्नेंट लेडीज़ को हम कोशिश करें ऐसी गर्मी की जगह से बचा कर रखें, और फ्लूइड फिर से वही बात है, तरल पदार्थ का जितना हो सके सेवन करें।
0: महाराष्ट्र से कोल्हापुर से विजय कुमार स्वामी है हमारे अगले श्रोता।
9: हाँ जी
0: जी,
9: हाँ कनक दीदी नमस्ते।
0: नमस्ते।
9: हाँ दीदी को भी नमस्ते सर। नमस्ते।
2: नमस्ते।
9: हाँ विजय कुमार स्वामी, गांव बस्तवा तहसील शिवर जिला कोल्हापुर महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ मैं।
0: जी जी।
9: हाँ मेरा सवाल यह है कि अभी दिन रात पंखे जो चालू है
0: जी,
9: इसका हमारे पर शरीर पर कुछ असर हो सकता है क्या?
0: पंखे का असर तो नहीं, गलत नहीं होगा।
2: नहीं, पंखे से फायदा है, बट अगर 40 डिग्री से ज्यादा का टेम्परेचर है तब केवल पंखा चलाने से फायदा नहीं है। तब आप एसी चला के एसी का टेम्परेचर 27 डिग्री रख के साथ में आप पंखा चलाएंगे तो उससे और आपको 4 डिग्री कम महसूस होगा। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि एसी का टेम्परेचर 15, 20, 22, 21 नहीं रखना है, 27 रखना है
0: जी,
2: ज़्यादा से ज़्यादा जो पॉसिबल। और साथ में आप थोड़ा फैन तब चलाएंगे तो वो और मदद करेगा। और जैसे कि पहले वो मैं पूछ रहे थे कि हम सब जगह एसी चल रहा है, इतना गर्म है, तो और हम क्या कर सकते हैं? आपको जितना हो सके अपने छतों पे ग्रीन प्लांटेशन करना चाहिए, उससे थोड़ा सा आपका जो है
0: घर का तापमान थोड़ा
2: तापमान जो है कंट्रोल रहेगा।
0: और घर के आसपास भी पौधे लगाने चाहिए।
2: बिल्कुल बिल्कुल, वो बहुत इंपॉर्टेंट है।
0: हमारे एक श्रोता ने व्हाट्सएप पर प्रश्न पूछा है डॉक्टर पटनायक कि आईएमडी की एडवाइजरी और मौसम संबंधी अपडेट आम लोग कहां से और कैसे प्राप्त कर सकते हैं?
4: देखिए आईएमडी जो
0: ये मयंक शेखर जी, मैं आपको नाम बता दूं, मयंक शेखर मिश्रा हैं, ये वाराणसी से उन्होंने पूछा है।
4: हाँ वाराणसी भी बहुत गर्मी जगह है और वहाँ भी बहुत लस्सी ये सब जो इसलिए भी चलता है। तो देखिए जो हम जो आईएमडी जो देता है सूचना जो हीट वेव का अर्ली वार्निंग जो बोलते हैं हम, वो बहुत सारे मेकानिज्म में हम देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल पहला तो एक है कि हम हमारा वेबसाइट में देते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग वेबसाइट नहीं करते अपडेट, मान लीजिए वेबसाइट नहीं देते। दो देन दूसरा हमारा जो ऐप वगैरह है उसमें भी हमारे इसका जानकारी देते हैं। ऐप के साथ साथ हम आजकल क्या कर रहे हैं, हर दिन एक वीडियो बनाते हैं, हम वीडियो बनाते हैं उसको अपलोड किया जाता है, तो उसमें आपका पुरका जानकारी जो यूट्यूब में अपलोड किया जाता है तो जो जो लोग उसको भी एक्सेस करते हैं उसमें से मिल रहे हैं। आपको ऐप से मिलेगा, व्हाट्सअप में मिलेगा, देन सोशल मीडिया फेसबुक आईएमडी का अगर कोई है जिनका अकाउंट अगर करेंगे तो उसमें मिलेगा। तो ये तो ऑल इंडिया लेवल में भी है, और हमारा जो रीजनल सेंटर वगैरह जैसे कि वाराणसी से उन्होंने बताया भाई साहब, तो लखनऊ में हमारा जो रीजनल मेट सेंटर्स है वहाँ से जो रीजनल और डिस्ट्रिक्ट वाइज भी इंफॉर्मेशन, उनका वेबसाइट एक अलग होता है, उनका जो डाटाबेस है जहाँ जहाँ मैसेज जाता है उनका सारा सब उन्होंने रखा है। तो हर तरह का मीडियम से हम लोगों को प्रेरित करते हैं।
0: इन्होंने ये भी पूछा है कि दिन के कुछ वो विशेष समय क्या है जब लोगों को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए इतनी भीषण गर्मी में?
4: देखिए ये दिन में जब टेम्परेचर सबसे मैक्सिमम टेम्परेचर जो होता है वो लगभग अराउंड 2:30 के आसपास, 3:30 इसी में होता है दिन का मैक्सिमम टेम्परेचर। लेकिन सुबह से गर्मी शुरू हो जाता है, गर्मी टेम्परेचर भी बढ़ता है, और दूसरी बात क्या होता है कि जब नीचे का ज़मीन भी गर्म हो जाता है वहाँ से भी टेम्परेचर ऊपर रेडिएट होता है। तो ये दोनों का जब ये होता है तब तो मैक्सिमम टेम्परेचर होता है। तो आपका इसलिए मैक्सिमम टेम्परेचर लगभग उसी टाइम में 2:30 के बाद आता है, जबकि पहला 12 बजे मैक्सिमम टेम्परेचर नहीं आता है, 2:30 के बाद 3 बजे अराउंड उसमें आता है कि जब दोनों तरफ से रेडिएशन आता है। तो इसलिए उसी टाइम में नेचुरली जब डायरेक्ट सनलाइट है 11 बजे के बाद एटलीस्ट डायरेक्ट सनलाइट ज़्यादा तेज है उस टाइम अवॉइड करना चाहिए। जब मैक्सिमम टेम्परेचर आ रहा है, जब गर्मी धरती के नीचे गर्मी हो गया, गर्म हवा भी नीचे से फेंक रहा है, तो वो भी 3-4 बजे तक, तो आपका अवॉइड करना,
0: मतलब 11 से 4 तक अवॉइड करना चाहिए जहां तक हो सके। अगला सवाल है रवि जवालिया जी का हरिद्वार से।
10: नमस्कार मैम जी।
0: नमस्कार
10: जी, मैं रवि जवालिया गढ़वीरपुर हरिद्वार से बोल रहा हूँ, और सभी सभी विशेषज्ञ को और आपको भी नमस्कार बोल रहा हूँ जी, और आप सभी को और मेरे सभी

0: सिर के आसपास लगा सकते हैं, तो वो आई थिंक आपको थोड़ा मदद करेगा। और लिक्विड चीजें लेते
1: हैं, ये तो हम आपको बार बार बता रहे हैं, डॉक्टर साहब बार बार बता रही हैं कि आपको जितना हो सके उतना तरल पदार्थ लिक्विड लेना है।
0: और आसपास कहीं पंखा है तो आप पंखा
1: बीच बीच में आप जा सकते हैं वहाँ। डॉक्टर रूपाली, बहुत छोटे बच्चे जो अभी अपनी स्थिति नहीं बता सकते हैं, ऐसे बच्चों के अभिभावक कैसे समझ पाएंगे कि बच्चे को लू लग गई है?
0: जी बिल्कुल, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि तो बच्चों को गर्मी के समय, जैसा सर ने बताया 11 से 4 के बीच में आप घर से बाहर ना भेजें, ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि उसी टाइम पे सबसे ज़्यादा लू लगने का रिस्क होता है। और बच्चों को हमें बहुत इंश्योर करना है कि वो कम से कम 8 ग्लास पानी ज़रूर पिए, क्योंकि इस समय हो सकता है बच्चा पानी कम पी रहा है, तो हमें उस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि बच्चों का फ्लूइड इनटेक ठीक रहे, 11 से 4 के समय वो बाहर ना निकले। और बाकी अगर लगता है कि बच्चा कुछ भी सुस्तीपन दिखा रहा है,
1: जैसे बहुत छोटा बच्चा, बिल्कुल बहुत का
0: बिल्कुल
1: है,
0: बिल्कुल
1: उसके लिए
0: सुस्तीपन, दूध नहीं पीना, अगर बच्चा इतना छोटा है, बिल्कुल अगर दूध नहीं पीना या बुखार होना, तो इमीडिएटली आपको किसी भी हेल्थ केयर फैसिलिटी को विजिट करना है और उनकी मदद लेनी है। और बच्चों को भी ढीले कपड़े, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, हल्के फुल्के हवादार ढीले कपड़े।
1: अगला सवाल है राकेश जी का शिमला से।
2: जी नमस्कार।
1: नमस्कार
2: जी, मेरा दो सवाल है। पहला सवाल तो ये कि जब गर्मी बढ़ती है तो लोग क्या करते हैं, फ्रिज का पानी पीते हैं, वो कितना घातक है? और दूसरा सवाल मेरा ये कि जैसे कि अब हिमाचल प्रदेश में पहाड़ी क्षेत्र में गर्मी भी बढ़ रही है, तो इसमें मैदानी क्षेत्र में क्या असर पड़ेगा? ये मेरे दोनों सवाल है।
1: जब हिल स्टेशन पे गर्मी बढ़ने लगी है तो प्लेन्स पे और भी गर्मी होगी, इनका ये पूछना है कि क्या असर पड़ेगा प्लेन्स पे?
3: देखिए, जैसा कि हिल स्टेशन में थोड़ा सा हमारा ये है कि हिल स्टेशन में थोड़ा तापमान प्लेन स्टेशन से थोड़ा कम रहता है, ठीक है, तो इसलिए जैसा कि प्लेन स्टेशन से भी लोग जाते रहते हैं, तो बट आजकल क्या होता है, क्लाइमेट चेंज है, तो हिल एरिया में भी जो जैसे कि पहला इतना गर्मी नहीं होता था, आजकल हिल एरिया में भी गर्मी महसूस कर रहे हैं, तो इसलिए तो हिल स्टेशन के लिए तो गर्मी आपका धीरे धीरे भी हो रहा है, पहले जो इतना नहीं हो रहा था इसलिए, लेकिन प्लेन एरिया में तो आपका उससे ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि प्लेन एरिया में तो थोड़ा गर्मी का ज़्यादा पड़ेगा, क्योंकि वहाँ नॉर्मल टेम्परेचर जो है वो ऑलवेज थोड़ा सा ज़्यादा है हिल स्टेशन के ऊपर, तो इसलिए हिल स्टेशन में जब हो रहा है तो उसका प्रभाव प्लेन में नहीं है, लेकिन उसका प्लेन में भी रहेगा, जब हिल में हो रहा है तो प्लेन में भी रहेगा।
1: डॉक्टर पटनायक, हीट एक्शन प्लान्स क्या है?
3: हाँ, हीट एक्शन प्लान क्या होता है कि पहला क्या हो रहा था, जब ये एक्शन प्लान नहीं होता था तो हीट क्या धीरे धीरे धीरे धीरे किल करता है, तो हीट वेव के कारण भी धीरे धीरे ग्रेजुअली डेथ जो है, नंबर ऑफ डेथ बढ़ता गया, तो गुजरात साइड में पहला ये महसूस हुआ कि बहुत सारे जो हीट रिलेटेड डेथ बढ़ रहा है, तो देखा गया कि जब टेम्परेचर बढ़ रहा है बहुत अनजान के कारण लोग क्या करना है क्या नहीं करना है ये नहीं जानते थे, इसलिए बहुत एक्सपोजर होता था, क्या लेना है उनको पता नहीं था, तो इसलिए लोग थोड़ा डेथ 2010-12 में ऐसा हुआ, तो उसमें हीट एक्शन प्लान जब स्टार्ट हुआ उसमें क्या होता है, एक जो जो भी इस राज्य में जहां हीट रिलेटेड ये सब इफेक्ट रहता है, तो उन्होंने वन बाय वन थोड़ा हीट एक्शन प्लान शुरू किया, तो पहला मान लो गुजरात में हीट एक्शन प्लान शुरू किया, तो हीट एक्शन प्लान में क्या होता है, ये बहुत सारे म्यूनसिपल लोग जो होते हैं, हेल्थ प्रोफेशनल होते हैं, IMD के जो वार्निंग अर्ली वार्निंग देते हैं, और ये बाकी जो जो जो एडवाइजरी इशू करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पानी, ये सारे जो है एक तरीके से रहता है, तो पहला उनको क्या होता है, एक हमारे डिपार्टमेंट से अगले 5 दिन अगले 7 दिन के लिए तापमान कैसा रहेगा वो एक पहला इन्फॉर्मेशन हो गया, तो वो इन्फॉर्मेशन के बाद फिर म्यूनसिपल जो होते हैं वो अपना काम करते हैं, अगर पानी डिस्ट्रीब्यूट करना होता पानी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, अगर ज़्यादा लोग एंटिसिपेट कर रहे हैं कि ज़्यादा लोग हो जाएंगे तो उनको फिर मेडिकल अटेंशन देना जाता है।
1: डॉक्टर पटनायक, अब समय हो रहा है कार्यक्रम को समाप्त करने का, हम अपने उन सभी श्रोताओं का आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने फोन लाइन्स और डिजिटल माध्यम से इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। भारत मौसम विज्ञान विभाग में वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर DR पटनायक और सफदरजंग अस्पताल में मेडिसिन विभाग में प्रोफेसर डॉक्टर रूपाली मलिक, आप दोनों का स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ ही पब्लिक स्पीक का ये अंक यहीं समाप्त होता है, अगले सप्ताह हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए कनकलता को आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
4: मीडियम वेव 262.47 मीटर।

1143 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत। कलाकार हैं अमजद अली खान, राग मारू बिहाग।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे थे अमजद अली खां का सितार वादन, राग मारू बिहाग, आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम मन चाहे गीत।

कार्यक्रम मंच है गीत सुनने वाले आप सभी श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आप सभी इस कार्यक्रम में अपने मनपसंद गीत सुनने के लिए हमें पत्र लिखते हैं और हमारी कोशिश भी यही रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा पत्रों को इस कार्यक्रम में हम शामिल करें। जो श्रोता हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं उनकी जानकारी के लिए बता दें कि आप भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं, आप भी हमें पत्र लिख सकते हैं। कृपया हमारा पता नोट कीजिए, कार्यक्रम मंच है गीत द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी रोहतक, रोहतक का पिन कोड 124001 लगाना ना भूलें। कार्यक्रम की शुरुआत में आपको सुनवाने जा रहे हैं फिल्म प्यार झुकता नहीं से लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाज़ों को। गीत के बोल लिखे हैं एसएच बिहारी ने और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। और इस गीत को सुनने के लिए फरमाइश भेजिए आप सभी ने। आप हैं प्रोमिलागंज आलोट रतलाम मध्य प्रदेश से बलवंत कुमार वर्मा, राजू बाई, माया वर्मा, शोभा वर्मा, राहुल, ज्योति, अतुल, पायल वर्मा, प्रियांश वर्मा, ऋषि वर्मा। मॉडल टाउन करनाल से आप हैं सुधीर नूतन, नरेंद्र तनेजा, संदीप गुगनानी, सुनीता जैन, सुनीता शर्मा। मुक्तसर पंजाब से आप हैं बाबू सिंह धीमान, बलजिंद्र कौर धीमान, रवनीत, निशु। गोलाबाजार बक्सर से अभियानंद आर्य, श्रद्धानंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज, प्रमोद, रोहित और मोहित।

आप हैं डोंगरगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका गजभिये, अनिष्का गजभिये, तन्मय गजभिये, भाटापारा दत्रेंगी छत्तीसगढ़ से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, जावेंद्र कुमार वर्मा, सोमनाथ जालना से नामदेव भूतेकर, अभिषेक भूतेकर, गणेश भूतेकर, कार्तिक भूतेकर, अश्वनी, वैष्णवी, वैभव, मेघराज, युवराज, दतरेंगी से भगवतदयाल शर्मा, मलोट कैंप पंजाब से आप हैं सतीश मिगलानी, सीमा, अनमोल, धर्मपाल, वीर सिंह लाठी, लखविंदर संधु, महावीर संधु, गुरुचरण ग्रोवर और रमेश मिगलानी। आप सभी सुनना चाहते हैं फिल्म मुकद्दर का सिकंदर से लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ों को। अनजान के लिखे इस गीत को स्वरबद्ध किया है कल्याण जी आनंद जी ने।

आपने गांव बलियाली ज़िला भिवानी से दर्शन लाल बंसल, सुदेश बंसल, प्रवीण बंसल, ममता बंसल, कमल बंसल, गर्विश बंसल, तमन्ना बंसल, औरंगाबाद से प्रकाश बोरगांवकर, सुषमा, प्राजक्ता, प्रांजलि, सोहम बोरगांवकर, आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, सौरभ शर्मा, शाइना शर्मा, निवान शर्मा, धामनी मानेरा से तुलसीराम डेरे, माया डेरे, संदेश डेरे, प्रांजल डेरे, राजनगर मधुबनी से आप हैं कुशेश्वर प्रसाद गुप्ता, शारदा गुप्ता, मौसम गुप्ता, संगीता गुप्ता, रुद्र गुप्ता, रिद्धि गुप्ता, लखनऊ से मुकेश गुप्ता, रानी गुप्ता, कुसुम गुप्ता, पलक गुप्ता, पंखुरी गुप्ता, और कांति निकेतन से मंजीत गुप्ता, सोनाली गुप्ता, सूर्यांशी गुप्ता, कोमल गुप्ता, मेनका गुप्ता, माधवी, साध्वी, तन्मय और गुनगुन। आप सभी सुनना चाहते हैं हीरो फिल्म से रेशमा की आवाज़ को। गीत के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

श्रोताओं लीजिए सुनिए फिल्म 20 साल बाद से अनुराधा पौडवाल और मोहम्मद अजीज की आवाजों को। गीत आनंद बख्शी का है और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। और इस गीत को सुनने के लिए फरमाइश भेजिए आप सभी ने। आप हैं सनावद से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश खत्री, रमेश गोड़, मोहम्मद शादाब खत्री, पटेल नगर मलोट पंजाब से रमेश कुमार जाजोरिया, गीता जाजोरिया, गगनदीप आरजू जाजोरिया, अलीका डब्बाली से बसंत सिंह, चंद राजकुमार, सुनीता, कुलदीप गांधी, फ्रेंड्स कॉलोनी करनाल से गुरविंदर सिंह पांगा, इंद्रजीत कौर, मनवीत, मनविंदर सिंह पांगा, और बेरड़ी से आप हैं हुकुम करमरकर, सुनीता करमरकर, हार्दिक करमरकर, प्राची करमरकर और तनु करमरकर।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का फरमाइशी कार्यक्रम मन चाहे गीत, आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। इस समय रात के 11 बजने को हैं। थोड़ी ही देर बाद आप समाचार सुनेंगे, पहले हिंदी में उसके बाद अंग्रेजी में, जिन्हें आकाशवाणी दिल्ली से रिले किया जाएगा।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउंग लाइन ने आज व्यापार और आर्थिक, रक्षा, सुरक्षा और सीमा प्रबंधन सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने नई दिल्ली में बताया कि दोनों पक्षों ने लोगों के बीच संपर्क के लिए कनेक्टिविटी के महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना को यथाशीघ्र पूरा करने पर सहमति व्यक्त की। विदेश सचिव ने कहा

0: कि प्रधानमंत्री ने म्यांमार की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत के समर्थन की पुष्टि की है।
1: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
0: इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउन लाइन का स्वागत किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमार भारत की पड़ोसी प्रथम एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों में एक महत्वपूर्ण भागीदार है। भारत के साथ म्यांमार के महत्वपूर्ण संबंधों पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमार दक्षिण पूर्व एशिया के लिए भारत का प्रवेश द्वार है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता आज से लागू हो गया है। समझौते पर 6 महीने पहले हस्ताक्षर किए गए थे। श्री गोयल ने नई दिल्ली में कहा कि इस समझौते से भारत के कामगारों, लघु तथा मध्यम उद्योगों जैसे विभिन्न क्षेत्रों के निर्यातकों को ओमान के बाजार में प्राथमिकता मिलेगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र, खुले, शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने में क्षेत्रीय साझेदारों के साथ सहयोग बढ़ाने के महत्व की पुष्टि की है। नई दिल्ली में बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स ने की। दोनों नेताओं ने भविष्य की प्रौद्योगिकी अनुसंधान में रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा की। श्री माल्स ने भारत को ऑस्ट्रेलियाई रक्षा विज्ञान प्रौद्योगिकी और अनुसंधान शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। पश्चिम एशिया में बदलती परिस्थितियों के बावजूद सरकार ने आज नागरिकों को आश्वस्त किया है कि ईंधन, खाद्यान्न, उर्वरक और अन्य आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया के हालिया घटनाक्रमों पर आयोजित अंतर मंत्रालयी बैठक को संबोधित करते हुए उपभोक्ता मामलों के विभाग में अपर सचिव अनुपम मिश्रा ने कहा कि भारत खाद्य सुरक्षा के मामले में मजबूत स्थिति में है। वहीं पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि सभी तेल विपणन कंपनियां सुचारू आपूर्ति बनाए रखने के लिए सभी खुदरा दुकानों पर पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति में सक्रिय रूप से लगी हुई हैं। वित्तीय सेवा विभाग के संयुक्त सचिव मनोज मुत्तथिल अयप्पन ने बताया कि सरकार ने पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष से प्रभावित व्यवसायों को सहायता प्रदान करने के लिए आपातकालीन ऋण गारंटी योजना को मंजूरी दे दी है। इस बीच सरकार ने उन फर्जी ईमेल का खंडन किया है जिसमें एलपीजी डीलरशिप और डिस्ट्रीब्यूटरशिप देने का दावा किया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि info@lpgvitarakchayan.in पते से भेजे गए ईमेल फर्जी हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज नई दिल्ली में पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में पार्टी प्रवक्ता डॉ. संबित पात्रा ने बताया कि बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने, संगठन के विस्तार और समाज के विभिन्न वर्गों तक पार्टी की पहुँच बढ़ाने के लिए भविष्य की योजनाओं पर चर्चा की गई। पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिपरिषद का विस्तार किया गया। राज्यपाल आर.एन. रवि ने कोलकाता के लोकभवन में 35 मंत्रियों को शपथ दिलाई। गृहमंत्री अमित शाह ने मंत्रिमंडल में शामिल हुए नए मंत्रियों को बधाई दी। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में बनी डबल इंजन सरकार में नई टीम पूर्ण समर्पण, प्रतिबद्धता और जनसेवा की भावना के साथ काम करेगी। राजस्थान, गुजरात, पश्चिम मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में कल तक के लिए गरज के साथ तूफानी मौसम का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज शेड बाय अपराजिता नायर। Prime Minister Narendra Modi and President of Myanmar, U Min Aung Hlaing, held detailed talks on the entire gamut of bilateral issues in New Delhi today. The discussions covered trade, defence, border management, culture, among other areas of interest. Briefing media after the talks, Foreign Secretary Vikram Misri said both sides expressed interest in forging closer cooperation, particularly in the areas of trade and investment, development, cooperation, health, education and energy. Foreign Secretary said Prime Minister reaffirmed India's support for the sovereignty and territorial integrity of Myanmar, and both sides underscored the importance of preventing the misuse of territory for activities inimical to their security interests.
3: Both sides underscored the importance of preventing the misuse of sovereign territory for activities inimical to their security interests. Overall, this visit by the President has once again reaffirmed the shared commitment of both sides to deepen their long-standing partnership and to work together for mutual benefit, growth and prosperity in the region.
2: Mr. Misri said both sides underlined the importance of connectivity and agreed to work as quickly as possible towards the completion of Kaladan Multimodal Transit Transport Project. President Draupadi Murmu has said Myanmar is an important partner in India's Neighbourhood First Act East and Mahasagar policies. Welcoming Myanmar President U Minong Lian at Rashtrapati Bhavan today, President Murmu said both the countries share deep cultural, civilizational and spiritual ties that go back to centuries. The President said Myanmar is India's gateway to Southeast Asia, as it is the only ASEAN country that shares a land border with India. Congratulating President Liang on assuming office as the President of Myanmar, President Murmu said that India looks forward to working closely with the new government to strengthen the bilateral partnership further. The India-Oman Comprehensive Economic Partnership Agreement has come into force today. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal said the CIPA will deepen the economic and strategic ties between the two nations. Addressing media in New Delhi, Mr. Goyal said that this partnership agreement is not simply a trade agreement, it is a statement of civilizational trust. The Union Minister informed that from day one, India will secure duty-free access on 98% of Oman's tariff lines, covering over 99% of India's export to Oman. Mr. Goyal informed that multiple consignments are being shipped today from Mumbai, Kolkata and Chennai to mark the operationalization of the agreement. Prime Minister Narendra Modi today shared an article written by Mr. Goyal on the India-Oman Comprehensive Economic Partnership Agreement. The Prime Minister said the article emphasizes that the government's efforts to sign trade agreements with developed countries help improve the lives of every Indian. India and Australia today affirmed the importance of enhancing cooperation with regional partners to help maintain a free, open, peaceful, stable and prosperous Indo-Pacific. During the second edition of India-Australia Defence Ministers' Dialogue in New Delhi, both the countries agreed to enhance defence industrial collaboration in futuristic technology research. The meeting was co-chaired by Defence Minister Rajnath Singh and Australian Deputy Prime Minister and Minister for Defence Richard Marles. BJP National President Nitin Naveen today held a meeting with senior party office bearers and workers in New Delhi. Talking to media, party MP and spokesperson Dr. Sambit Patra shared key details, highlighting discussions on Narendra Modi government's 12 years of service, organizational expansion and future initiatives aimed at broadening the party's outreach across various sections of society. He said that the government is completing 12 years in office and everyone has witnessed how India has progressed under the leadership of Prime Minister Narendra Modi ji, with advancement taking place across every sector. Mr. Patra said, today, the Bharatiya Janata Party and the NDA have been given the opportunity to serve in government in 22 states. The Supreme Court today refused to entertain a plea seeking that the NEET UG 2026 retest be conducted in computer-based test mode instead of the existing pen and paper format. The India Meteorological Department has issued an orange alert for thunder squalls conditions over Rajasthan, Gujarat, West Madhya Pradesh, Odisha and coastal Andhra Pradesh till tomorrow. And that is the end of this news bulletin.
4: मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी कैरो तक केंद्र है। इस समय रात के 11:10 और 5 सेकंड हुए हैं। अब हमारी आज की तीसरी व अंतिम सभा के प्रसारण संपन्न होते हैं। कल सुबह 5:55 पर आपकी सेवा में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय हिंद।